0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। 5:05 हो चुके हैं और आज ये ठंडी हवा ने और कहते हैं ना सुबह की प्यारी सी बारिश ने आज बहुत ही मॉर्निंग को सुहाना सा बना दिया है। और ऐसे मौसम में अगर साथ चलें पुराने गाने तो क्या बात होगी। तो जहां भी आराम से जुड़े रहिए, आप सुन रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती पर राइज एंड शाइन और मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कीजिए अपने पुराने गाने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बहुत शुक्रिया।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:16 हो चुके हैं दोस्तों, और प्यारा सा मंगलवार आ गया भाई, ट्यूसडे, और 7 जुलाई भाई, ऐसे टाइम निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और मैं तो इस वक्त कहूँगी जो हमारे दोस्त हैं इस वक्त जो खेतों में हैं और जो सब्जियां रख रहे हैं ट्रक में, तोड़ रहे हैं या चेक कर रहे हैं कि सब्जियां ठीक से बन रही हैं, पनप रही हैं या नहीं है, और उनको पानी को दे रहे हैं उन फसलों को जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, तो मैं तो कहूँगी भाई आपकी जो मेहनत है ना हर घर तक पहुँचती है, आप सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारे बिना सब्जियों के तो हम नहीं रह सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी खेतों में इस समय काम कर रहे हैं। तो भाई आपको भी कोई मैसेज करना है बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर। तब तक इंजॉय करते हैं ये गाना जो कि स्पेशली हमारे फार्मर्स के लिए है। इंजॉय कीजिए ये गाना।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:27 हो चुके हैं और हम सभी को कहेंगे वेलकम राइज एंड शाइन में। भाई आपका बहुत बहुत जो आपका प्यार मिलता है मैसेजेस के थ्रू वो भी दिल करता है पढ़ने का। तो भाई जो इस समय हमें सुन रहे हैं ड्राइव करते हुए, शायद किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ लोग जा रहे हो और आराम से सुनते जा रहे हो, ड्राइवर ने गाने लगाए हों, तो बस हम आपको यही कहेंगे इन्जॉय करते रहें अपने गानों को। और अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप भेज सकते हैं 5499-1294 पर। तब तक साथ साथ जुड़ जाते हैं एक दो मैसेजेस के साथ। इस समय हमारे साथ साथ दे रही हैं चांदनी जी, जो कि सभी को कह रही हैं गुड मॉर्निंग। सेतुल जी भी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इन गानों को। जैशन हरदयाल जी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और कह रहे हैं भाई मॉर्निंग सबकी बहुत बढ़िया हो और ये गाने जब चलते हैं दिल खुश होता है। थैंक यू सो मच। कमल दीप जी साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में इंजॉय भी कर रही हैं और साथ में सभी आरजीज को जो भी सुबह से लेकर रात तक है उन सबको कह रही हैं भाई अपना ख्याल रखिएगा, आपकी वजह से हमारा दिन बनता है। थैंक यू सो मच। अगला गाना जाएगा अब्दुल एंड सायरा बानो के लिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा कपल है और अब्दुल तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं सायरा से बहुत प्यार करता हूँ। तो भाई आपका प्यार भगवान अल्लाह ऐसे ही बनाता रहे। खुश रहें, इंजॉय कीजिए अपने गाने। प्रिशा आपादू सबको गुड मॉर्निंग विश कर रही हैं और साथ में ये कह रही हैं कि भाई गानों के साथ में जो मज़ा आ रहा है वो नॉर्मली नहीं मिलता है। तो चलिए भाई हमें अच्छा लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है। सुमारू जी भी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि साथ में ऐसे गाने हों जो मॉर्निंग को खूबसूरत बना दें, उसके लिए थैंक यू सो मच। सुमारू जी आप साथ जुड़े रहिए और इंजॉय कीजिए ये आपका गाना।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:40 हो चुके हैं और इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनके गानों के साथ चाहे रेडियो हो चाहे टेलीविजन हो हमारे साथ कहीं ना कहीं एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और जब ये हिस्सा बन ही चुके हैं तो इनके गाने और स्पेशली अगर बात करें मोहम्मद रफ़ी साहब की, किशोर दा की या लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर या पूरी ऐसी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं उनके बात ही कुछ निराली है। हर मूड पर एक गाना और हर तरह से हमें इंजॉय कराने के लिए उन्होंने इतने गाने बनाया और दिल से बनाया है भाई, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे गाने हर वक्त चलते रहने चाहिए और ये मूड जो है ना बिल्कुल अलग सा बना देते हैं। चलिए भाई दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। ललित जी साथ जुड़े हुए हैं यूएसए से अपने दोस्तों के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, राइज एंड शाइन को, कह रहे हैं भाई मॉर्निंग के लिए थैंक यू। चलिए भाई हम तो क्या मॉर्निंग बनाएंगे, ये तो बस ईश्वर बनाता है, आप बस इन्जॉय कीजिए। टोनी जी इन्जॉय कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग को भी और साथ में गानों को भी, थैंक यू सो मच। ललिता जीतन जी जुड़ी हुई हैं और जॉगिंग कर रही हैं इस समय और सभी को हैं भैया मॉर्निंग बनानी है तो आपको पार्क में तो आना ही पड़ेगा, राइज एंड शाइन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा और हेल्थ तो बनानी ही पड़ेगी। तो सही बात है, हेल्थ बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उठो भाई मॉर्निंग मॉर्निंग है और अपनी हेल्थ को बनाओ और बाहर का जो वेदर है ना क्या सुहाना और क्या, उसको भी इंजॉय कीजिए। इस समय सुया बिहारी जी भी साथ दे रही हैं और वो कह रही हैं आई रिस्पेक्ट कि मैं एक फार्मर हूँ और मैं कुछ स्पेशल आज प्लांट करने जा रही हूँ और स्पेशली मैं अपने पति लाल देव को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया, थैंक यू सो मच आपके जुड़ने का। मैम प्रमीला जी जो कि अपने हस्बैंड रंजीत जी को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और सभी फैमिली मेंबर्स को और कह रही हैं थैंक यू इस मॉर्निंग को खास बनाने के लिए, बट जब मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि गाने जब चलते हैं ना मेरा दिल खुश होता है तो मैं तो उनको देख रही होती हूँ और बोलती हूँ अरे भैया इनका मूड ठीक रहे और बस पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है, हस्बैंड का या वाइफ का मूड ठीक रहे तो अच्छी बात है। डैरन श्वेता रवि शैन प्रिशा भी साथ जुड़े हुए हैं, इन्जॉय कीजिए अपने गानों को।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ पूनम। नई सुबह, नई जोश और नया मौका आपका इंतजार कर रहा है। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले
2: एरीज, मेष राशि।
1: आज खुद पर भरोसा रखिए, प्यार से की गई बात आपका काम आसान कर देगी। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 9।
2: टॉरस, वृषभ राशि।
1: आज अपनों की केयर करना खुशी देगा, मन शांत रहेगा और दिन अच्छा बीतेगा। अपने फैसलों पर भरोसा रखिए, लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी, मिथुन राशि।
1: आज आपकी मुस्कान सबका दिल जीत सकती है, नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर, कर्क राशि।
1: आज परिवार का प्यार आपको ताकत देगा, दिल से किया गया सफल काम हमेशा होता है, इसीलिए अगर आपको दिल से अपने काम पर फोकस करेंगे तो दिल से जुड़े रहिए, पॉजिटिव सोच बनाए रखिए। लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो, सिंह राशि।
1: आज आपका कॉन्फिडेंस चमकेगा, लोग आपकी बातों की सराहना करेंगे, खुद पर विश्वास बनाए रखें। लकी कलर है सुनहरा, यानी कि गोल्डन, लकी नंबर है व्हाइट।
2: वर्गो, कन्या राशि।
1: आज खुद का भी ख्याल रखिए, छोटी खुशियों का आनंद लीजिए, दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
2: लिब्रा, तुला राशि।
1: आज रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, आपकी मुस्कान खुशी फैलाएगी, दिल से हर काम कीजिए, बस आपको अपने खुद से दिल से जुड़ना है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
2: स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।
1: आज अपने दिल की बात सुनिए, अपने आप से इतना बस कहिए कि आज आप जो काम करेंगे वो आपके लिए भी फायदेमंद होना है और आपके परिवार के लिए भी, और आपके दोस्तों और आपके सामने वाला जो भी पक्ष में खड़ा है उसके साथ में जो भी आप काम करेंगे अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए, लकी कलर बनेगा आपका मेहरून, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस, धनु राशि।
1: आज नई शुरुआत के लिए अच्छा दिन है, अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाइए, अच्छी खबर मिल सकती है। जिस काम के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वही काम आज आपको बहुत से फायदे देने वाला है। लकी कलर बनेगा बैंगनी, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न, मकर राशि।
1: आज मेहनत का फल मिलने के योग है, अपनों का साथ समय मिलेगा और आप उनके साथ समय बिताइए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। लकी कलर बनेगा क्रीम, लकी नंबर है 10।
2: एक्वेरियस, कुंभ राशि।
1: आज आपके नए आइडियाज सबको पसंद आएंगे, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, खुलकर अपनी बात को रखिए सामने, पॉजिटिव रहिए, अच्छा दिन रहेगा। लकी कलर है नीला, लकी नंबर है 11।
2: पाइसेस, मीन राशि।
1: आज खुद से प्यार करना बिल्कुल मत भूलिए, मन शांत रहेगा, हर पल को मुस्कुरा कर जिए। लकी कलर बनेगा सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो दोस्तों, प्यार बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं थी आपके साथ पूनम। ये जो प्रोग्राम है ये आपको इससे सिर्फ ये बताता है कि मॉर्निंग में आपने अपने दिन को कैसे बिताना है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। राइज एंड शाइन।

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। आज राष्ट्रसभा के कार्य लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को संबोधित सत्र। 17 सवालों में से एक, सुब्रमण्यम कृष्णन की मौत से मुतालिक की जा रही जांच के सिलसिले में होगा। मोंटाई ब्लांश ग्रांड रिवियर सुडेस के सांसद चेतन बाबूलाल जानना चाहेंगे कि कतर में महारत हासिल विदेशी जांचकर्ताओं की तहकीकात अब तक कहां पहुंची है। याद रहे स्कॉटलैंड यार्ड से बरतानी जांचकर्ता जून 2025 में सीसीआईडी की मदद करने के लिए मॉरिशस आए थे। कृष्णन परिवार के वकील रामा वालाइडेन अफसोस जताते हैं कि कुछ पहलुओं को मद्देनजर नहीं रखा गया है, जिनमें दो एफिडेविट शामिल। संसदीय कार्यों के दौरान दूसरे मुद्दों पर भी बहसें की जाएंगी। त्यापूज में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से जुड़े 114 मिलियन रुपए की प्राप्ति, पेंशन सुधार, एमरशस पर क्रोर रिपोर्ट वगैरह पर प्रश्न निर्धारित हैं। एसएमई चैम्बर और छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को एक खत भेजेंगे। एसएमई चैम्बर की अध्यक्षा जयबी देसी के मुताबिक एसएमईज की कई सिफारिशों को बजट 2026-2027 में शामिल नहीं किया गया, जैसे कोविड-19 के दौरान डीबीएम से लिए गए कर्जों के सिलसिले में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के लिए एक मैकेनिज्म की स्थापना ताकि वो कर्ज ले सकें, वो एक हल की तलाश कर रहे हैं। विदेश में 59 देशों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाए गए वैश्विक क्रैकडाउन में 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरपोल, ऑपरेशन ग्लोबल चेन और अन्य साझेदारों की मदद से ये कार्रवाई चलाई गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस में आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक, यानी कल 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है और जोरदार हवाएं भी चलने का अनुमान है। मस्करिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादल घिराएंगे। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में हल्की बारिश होगी। दोपहर बाद पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में हल्की वर्षाएं होती रहेंगी। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बरसातें होंगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के, यानी हवा 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही ख़राब रहेगा, ऊंची लहरें उठेंगी 4 मीटर वाली। इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरख्वास्त की जा रही है और सभी लोगों से सावधानियां बरतने की मांग है। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 17 से 20, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:43 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब। शुभ दिन आप सभी को।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Wake up with the sun and the sound of fun.
4: RM2
3: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:11 हो चुके हैं और हम तो आपको अपडेट करते रहते हैं आपके गानों के साथ, न्यूज़ के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, आपके मैसेजेस के साथ. बट ये जो मैसेज होता है ना, ये बहुत ही खास होता है, क्योंकि भाई ये मैसेज जुड़ा होता है उन लोगों का जिनका है भाई आज बर्थडे. तो चलिए भाई, ये प्यारा सा मैसेज आया है सत्यम जीवक जी का, जो कि कह रहे हैं आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का बर्थडे है और उनको विश करना चाहता हूँ, भैया खुश रहो और मुझे पार्टी पे ज़रूर बुला लेना. तो मैं यही कहूँगी भाई, आपने नाम तो नहीं बताया दोस्तों का, पर हम उन सबको विश करते हैं कि ये दिन आज आपका है, इन्जॉय कीजिए. साथ में आज है बर्थडे अमीशा भिखारी जी का, जिनकी मॉम फिया, पापा बॉबी, अनीश नानी, बसंती, मामू रवि एंड सनी उन्हें विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत ही प्यारी बच्ची हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहो, ये साल अपना इन्जॉय करना, हम तुम्हारे साथ हैं. हर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर तुम्हें हमारी ज़रूरत हो, हम तुम्हें कहीं ही छोड़ कर नहीं जाएंगे. क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज. और हम भी आपको यही कहेंगे बर्थडे आपका है, इन्जॉय कीजिएगा. साथ में हमारी एक और दोस्त जुड़ चुकी हैं. यस, कौन है? राखी जी हैं, जिनका आज जन्मदिन है. मामा बसंती, काली मलीना, दारियान एंड साहिन उन्हें विश कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं भैया बहुत ही हैप्पी बर्थडे, बट बहुत ही प्यारा जो गाना है उनके लिए चलाइएगा, स्पेशली क्योंकि वो हमारी जान है. तो भैया हम आपकी जान के लिए बहुत ही प्यारा सा गाना चलाएंगे. क्या कहते हैं कि चाहे दोस्त हो चाहे परिवार हो, ये गाना सबके ऊपर फिट होता है. तो चलिए इन्जॉय करते हैं. और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को, जिनका भी बर्थडे है, जिन्होंने मैसेज किया या नहीं किया, पर हम तो ये कहेंगे आप सबको यस.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:26 हो चुके हैं दोस्तों, ये बात सच है। सुबह सुबह सब कमाने निकल पड़े हैं, कोई ऑफिस जा रहा है तो कोई शॉप पे काम करने के लिए। बस एक चीज़ मत भूलिएगा घर पर, वो है आपकी स्माइल। हमेशा अपनी स्माइल को अपने साथ लेके जाइए, चाहे दूसरे भी आपकी स्माइल को देख के एनर्जी फील कर सके, आपके कॉन्फिडेंस को देखे और आपके काम आसानी से हो सके। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नसरीन ढिल्लों जी और इन्जॉय कर रही हैं कुणाल जी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज़ एक कुमार सानू जी का गाना चला दीजिए, थोड़ा सा इन्जॉय हो जाए। क्या बात है, बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। पुरुषी प्रिधि प्रथमी प्रिया निशिका नितिन विशाल यानिश के लिए भी एक गाना चलाने जा रहे हैं हम लोग और उन्हें कह रहे हैं हैव अ नाइस डे आपकी पूरी फैमिली की तरफ से। सुरेश शर्मा साजदा जी भी जुड़े हैं और एंजॉय कर रहे हैं प्यारे से मॉर्निंग राइज एंड शाइन प्रोग्राम को। कुमार देवी चिरंजी भी साथ जुड़े हुए हैं और साथ दे रहे हैं अपने पापा के साथ इस समय। और सोनम भोला जी जो कह रही हैं मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। बस आप ऐसे ही अपना साथ देते रहें, थोड़ी देर में सुन पाएंगे आप विस्तार से समाचार।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

आदाब, 6:30 बजे हैं। जुलाई 2026 की सुर्खियां सुनिए। आज राष्ट्रसभा के कार्य निर्धारित प्रधानमंत्री को पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक, सुब्रमण्य किसनन की मौत की जांच पर आधारित परिवार के वकील रामा वालाइडन की प्रतिक्रिया इस बुलेटिन में। एसएमई चैंबर और दूसरे संगठन प्रधान एवं वित्त मंत्री को एक खत भेजेंगे। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बजट में

0: कर्ज से जुड़ी सुविधाओं की कमी के चलते वो बातचीत करना चाहते हैं। आलू के खेतीहरों को एक टन बीज पीछे 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि बेचे गए बीज अच्छे नहीं थे जिनसे खेतीहरों का बहुत नुकसान हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाए गए वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 1,000 लोगों को गिरफ्तार। नमस्कार, आदाब। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को संबोधित 17 सवालों में से एक सुपामान्य किसनैन की मौत से मुतालिक की जा रही जांच के सिलसिले में होगा मोताय ब्लॉश। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट के सांसद चेतन बाबूलाल जानना चाहेंगे कि कत्ल में महारत हासिल विदेशी जांचकर्ताओं की तहकीकात अब तक कहां पहुंची हैं। याद रहे, स्कॉटलैंड यार्ड से बरतानी जांचकर्ता जून 2025 में सेंट्रल सीआईडी की मदद करने के लिए मॉरिशस आए थे। किसनैन परिवार के वकील रामा वालाइडन अफसोस जताते हैं कि कुछ पहलुओं को मद्देनजर नहीं रखा गया है, जिनमें दो एफिडेविट शामिल हैं। लुविना सूफी ने रामा वालाइडन से बात की।
1: दो
0: अलग अलग लोगों के एफिडेविट हैं जिनमें बहुत सारी जानकारियां हैं, बावजूद ये कि व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न है। मेरी राय है कि अगर हम इन दो एफिडेविट की तह तक जाएंगे तो हमें और जानकारियां मिलेंगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार किसनैन की हत्या पर कोई हल पाना ही नहीं चाहती।
2: संसदीय
0: कार्यों के दौरान दूसरे मुद्दों पर भी बहस की जाएंगी। त्यागूज में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से जुड़े 114 मिलियन रुपए की प्राप्ति, पेंशन सुधार, एमोरशस पर क्रोल रिपोर्ट वगैरह पर प्रश्न निर्धारित हैं। लुविना सूफी की रिपोर्ट पर ये विवरण। रिविये दे जोंगी सुयाक के सांसद रोशन चमन प्रधानमंत्री से ये पूछेंगे कि सन 2024 से लेकर आज तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कितनी जांच कार्रवाइयां चलाई हैं और कितनी पूरी हो गई हैं, तथा कितनों को सलाह के लिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया और उनका क्या हुआ। सांसद रवि राजबिचुक मोशन पासपोर्ट के सिलसिले में जानकारियां चाहते हैं। वे जानना चाहेंगे कि गए 5 सालों में मॉरिशस में जाली पासपोर्ट के कितने मामले दर्ज हुए और हर मामले में कौन से मूल के लोग रहे हैं। विपक्ष व्हिप एड्रियन जुवाल पेंशन सुधार के लिए कार्यरत माहिर आयोग पर प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर मेंबरों की नियुक्ति वापस ली जाएगी या नहीं, क्योंकि बजट 2026-2027 की पेशकश से पहले पायलट कमेटी की आखिरी रिपोर्ट को सुपुर्द नहीं किया गया था, वो भी क्यों। ये जाने कि मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल को आज पहली पढ़त पर पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मकसद मॉरिशस में एक हाइड्रोग्राफिक सर्विस की स्थापना है जो संरक्षण नियमितता और राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक मालूमात के संचालन के अलावा मॉरिशस के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री मैप बनाने के लिए जिम्मेदार होगी। घरेलू हिंसा करने वालों को रोकना और उन्हें समझाना, ये डोमेस्टिक अब्यूज बिल का हिस्सा है। राष्ट्रसभा में इस विधेयक के सभी पहलुओं पर बहसें की जा रही हैं। शिकार लोगों की हिफाजत को बढ़ाना और घरेलू हिंसा को और मायने देना, इस बिल के जरिए घरेलू हिंसा करने वालों के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाने का भी मकसद है। इससे उनके बर्ताव के पीछे वजह को गहराई से समझने की कोशिश की जाएगी ताकि बदलाव लाया जा सके। फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधान एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में इकोनॉमी कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक के एक दिन पहले वित्तीय क्षेत्र अपनी उम्मीद जाहिर कर रहा है। मॉरिशस फाइनेंस की अध्यक्षा रुबीना तुजू के मुताबिक सबसे पहले अब तक के सफर को सराहना चाहिए, खासतौर पर एक नियमित ढांचे के आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन, भारत और अफ्रीका के लिए मॉरिशस का बतौर पुल की हैसियत रखना आदि। निवेशक इन सभी पहलुओं को सकारात्मक नजरिए और जायजे से देखते हैं, कहा रुबीना तुजू ने। शालिनी अबन ने उनसे बात की, उन्हें सुनते हैं।
3: Dans un espace aussi concurrentiel que celui des centres financiers internationaux, le coût et la facilité de faire des affaires restent.

0: क्षय वित्तीय केंद्रों के बीच बहुत मुकाबले हैं, इसलिए कारोबार को चलाने के दामों और सुविधाओं में निर्णायक चुनौतियां हैं।
1: हालिया
0: दिशा पर गौर करना जरूरी है। मुर्शसिक नियमित क्रेडिबिलिटी के सिलसिले में तरक्की कर रहा है। असल सवाल ये है कि क्या इन कदमों पर गौर करना चाहिए? छोटी अवधि वाले टैक्स फायदों की क्या कीमत है जो लंबी अवधि वाले मुकाबलों की लागत से ज्यादा है? एसएमई चेंबर और छोटे व मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन प्रधान एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को एक खत भेजेंगे। एसएमई चेंबर के अध्यक्ष अजय बिदेसी के मुताबिक एसएमईज की कई सिफारिशों को राष्ट्रीय बजट में शामिल नहीं किया गया, जैसे कोविड-19 के दौरान डीबीएम से लिए गए कर्जों के सिलसिले में छोटे व मध्यम उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के वास्ते एक मेकानिज्म की स्थापना करना ताकि वो कर्ज ले सकें। एसएमई चेंबर हल ढूंढने के लिए बातचीत करना चाहता है। शान कुंदुमाल मामले में नया विकास है। उनके कानूनी सलाहकारों ने पुष्टि की है कि दुबई में ऑफिस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नतीजे पर पहुंचा है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और मामले को बगैर किसी शर्त से खारिज कर दिया। वकीलों ने ये बात भी झुठलाई है कि शान कुंदुमाल को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और कि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। ये भी उल्लेख हुआ कि ऑरेविया वेल्थ लिमिटेड का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आद्रिया वालिया की रिपोर्ट पर ये विवरण। अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम के बाद शान कुंदुमाल ने अपने वकीलों के जरिए अपना नजरिया पेश किया। उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात में उन पर लगाए गए इल्जाम झूठे, बदनीयति पर मबनी और हकीकत तथा कानून दोनों के लिहाज से बेबुनियाद है। उनके मुताबिक शान कुंदुमाल ने मुतालिक अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग किया। उनके वकीलों की तरफ से दी गई वजाहत और कानूनी दलीलों का जायजा लेने के बाद दुबई के ऑफिस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये नतीजा निकाला कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता क्योंकि कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ था। उनके वकीलों के मुताबिक शान कुंदुमाल को रिहा कर दिया गया और बाद में मामले को बगैर किसी शर्त के खत्म कर दिया गया। उन्होंने विस्तार दिया कि ये बेल पर रिहाई नहीं थी क्योंकि किसी किस्म की बेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वकीलों ने मीडिया में चलने वाली कई बातों को झुठलाया। उनका कहना है कि शान कुंदुमाल को कभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या किसी और हवाई अड्डे पर गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके अनुसार मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई में ना कोई क्रिमिनल चार्ज है यानी आपराधिक आरोप, ना ही कोई तहकीकात चल रही है जहां वो रहते हैं। वकीलों ने ये भी कहा कि डॉक्टर समीर अल अंसारी ने शान कुंदुमाल के खिलाफ ना कोई शिकायत दर्ज करवाई, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने ये भी वाजे किया कि तरिश्मा कुंदुमाल को कभी गिरफ्तार, हिरासत में, पूछताछ के लिए बुलाया या इस मामले में शामिल नहीं किया गया। ऑरेविया वेल्थ लिमिटेड के हवाले से उनका कहना है कि इस मामले की कंपनी मॉरिशस में उनकी नियमित गतिविधियों या मॉरिशस के वित्तीय क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके अनुसार शान कुंदुमाल अब कंपनी की रोजमर्रा गतिविधियों में शामिल नहीं है, हालांकि अब वो कंपनी के निदेशक हैं। वकीलों ने ये भी कहा कि ना ऑरेविया वेल्थ लिमिटेड ना ही उसके कानूनी प्रतिनिधि किसी ऐसी बात से वाकिफ हैं जो ये जाहिर करे कि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का इस मामले से कोई ताल्लुक है। कंपनी ने ये भी कहा कि अगर किसी काबिल अधिकारी की तरफ से दरख्वास्त की गई तो वो पूरा सहयोग करेगी। आखिर में शान कुंदुमाल ने मॉरिशस और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में अपने वकीलों को सलाह दी कि वो उन व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनी कार्रवाई पर गौर करेंगे जिन्होंने उनके मुताबिक बदनामी फैलाने वाले इल्जाम आम किए या उन्हें दोबारा शाय यानी प्रकाशित किया। आलू के खेतीहरों को 50,000 रुपए के बजाय 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। कृषि उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल लामारी, प्लेनसुफी, लालूगा, रिविया द्रागों वगैरह इलाकों के 64 खेतीहरों को प्रदान बीजों से प्राप्त समस्याओं के बाद ये फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से इन बीजों का आयात किया गया था जो करीब 40 दिनों के बाद सड़ने लगे थे। फागे के निरीक्षण के बाद ये पता चला कि ये बीज अच्छे नहीं थे, इसलिए सरकार ने सभी संबद्ध अधिकारियों को मुआवजा देने का फैसला लिया, उन 17 खेतीहरों को भी जिन्होंने 21 दिनों की अवधि के बाद खेती

0: करनी शुरू की थी। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के निदेशक नवीन दियापाल सिंह को सुनते हैं।
1: Mais avant de rembourser, nous devons aussi checker est-ce qu'il va me planter quand je prends la graine, je me plante within 21 days. Il ne faut pas capable de planter après 21 jours parce que si vous regardez les conditions pas correctes, la graine va finir en bâtir.
2: मुआवजा देने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या जब खेतिहरों को बीज मिले थे, क्या उन्होंने 21 दिनों के अंदर अंदर इन्हें बोया था? अगर बीजों को 21 दिनों से ज्यादा समय तक रखा जाए तो अच्छा नहीं है। 17 खेतिहरों ने इस मोहलत के बाद बीजों को बोया था। हमने मंत्री को ये बात बताई। मंत्री ने कहा कि अगर ये खेतिहर योग्य नहीं है तब भी उन्हें ये मुआवजा देना चाहिए। अगर इन 17 खेतिहरों को सहारा नहीं देते तो बेशक बाकी योग्य खेतिहरों के लिए बीघा जमीन पीछे एक ज्यादा बड़ी रकम प्रस्तावित की जा सकती थी। उन्होंने एक टन बीज 20,000 रुपए में खरीदा। जिसने 5 टन बीज खरीदे हैं हमने उसे 1,00,000 रुपए दिए हैं।
1: La graine, je vais acheter 20 000 roupies d'une, un dimanche, c'est 5 tonnes, fait 100 000, nous revenons sur 100 000 roupies. Le ministre propose 85 000 par rapport à moi, tout ça, très généreux. Maintenant, on attend les planteurs reviennent vers nous.
0: मुआवजे की इस रकम से खेतीहरों की अलग अलग राय है। लामाही के खेतीहर भारत जीतन के मुताबिक प्रस्तावित मुआवजे की कीमत काफी नहीं है क्योंकि उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि एक बीघा जमीन में आलू बोने के लिए करीब 2,25,000 रुपए लगते हैं, इसलिए खेतीहर एक हल ढूंढने के लिए अधिकारियों से बातचीत करने का इरादा रखते हैं। उन्हें सुनते हैं, शबनीस उजिया वाहिद आली ने उनसे बात की।
3: Vous allez avoir faux ou pas d'accord ça. Parce que nous faisons perdre gros l'argent, c'est-à-dire un coût de production que nous mettons.
2: हम इस मुआवजे से खुश नहीं हैं। उत्पादन दाम भी बढ़ गए हैं। एक बीघा जमीन पर आलू उगाने के लिए 2,25,000 रुपए लगते हैं। इसमें सब्सिडी भी है। अगर मैं 5 बीघा जमीन पर आलू बोऊंगा तो 1,000,000 रुपए से ज्यादा घाटा है। अब प्रति बीघा जमीन के लिए 85,000 रुपए दे रहे हैं तो खाक है।
0: मंत्रालय बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि नुकसान बहुत है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने बीजों की खरीद करने वाले खेतीहरों को मुआवजा दे दिए। कुल 161 बीघा जमीनों के लिए 230 टन बीज बेचे गए थे। एक टन की लागत 20,000 रुपए थी। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बोलेर को सुनते हैं।
4: Nous proposons une sortie de 50 000 roupies par rapport en termes de production. Nous pouvons faire les vins.
2: पहले 50,000 रुपए का प्रस्ताव था, अब 85,000 रुपए दे रहे हैं। याद रखें कि ये पैसे टैक्स पेयरों की जेब से आते हैं। हम यहाँ खेतीहरों की मदद करने और एक साथ काम करने के लिए हैं। मैं पहली प्रतिक्रियाओं को बखूबी समझता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि खेतीहर समझ जाएंगे।
0: उन 60 मुल्कों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाई गई एक वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 1,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के लिए इंटरपोल, ऑपरेशन ग्लोबल चेन वगैरह का सहयोग मिला। कुल 2,070 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बने हैं और ज़्यादातर महिलाएं रही हैं। गिरफ्तार हुए लोगों में 334 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे और 690 लोग अन्य जुर्मों में। फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सफर कल रात खत्म हुआ। स्पेन ने गोल करके पुर्तगाल को खेर से किया बाहर। अभी अभी बेल्जियम और अमेरिका का मैच पूरा हो गया है और बेल्जियम ने 4-1 से अमेरिका को जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। राउंड ऑफ 16 में आज रात अर्जेंटीना और इजिप्ट की टीमें 8 बजे मैदान में उतरेंगी।

और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में आज सुबह 4 बजे से कल दिन के 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने और जोरदार हवाएं चलने की चेतावनी है। मस्केरेंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन है जिसकी वजह से काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज सुबह बादल घिराएंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में हल्की बारिश होगी और आज दोपहर बाद पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में ये हल्की बरसातें होती रहेंगी। आज रात आमतौर पर घने

बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 डिग्री 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही खराब रहेगा, 4 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त की जा रही है और सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग है। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 17 से 20, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:43 पर।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। आज राष्ट्रसभा के कार्य निर्धारित प्रधान मंत्री को पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक सुभामान्या किसनैन की मौत की जांच पर आधारित परिवार के वकील रामा वालाइड न्यूज बुलेटिन में अपनी प्रतिक्रिया दी। एसएमई चैंबर और दूसरे संगठन प्रधान एवं वित्त मंत्री को एक खत भेजेंगे। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बजट में कर्ज से जुड़ी सुविधाओं की कमी के चलते वो बातचीत करना चाहते हैं। आलू के खेतीहरों को एक टन बीज पीछे 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है क्योंकि बेचे गए बीज अच्छे नहीं थे जिनसे खेतीहरों का बहुत नुकसान हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाए गए वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 59 देशों में 1,000 लोगों को गिरफ्तार। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी कार्या कुरादिन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार राधा। अब थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। पतुल लेन निमारियान में 55 साल के 55 years old श्री घनश्याम चिनाबंस जो डोले के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज एक बजे आज दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी विरमला चिनाबंस के घर पतुल लेन निमारियान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए निमारियान की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मार्टिनियर रोड सुरीनाम में 80 साल की 80 years old श्रीमती अहिल्या सुको पैदाइशी नाम हरदास जो अहिल्या के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज 11 बजे इनके घर मार्टिनियर रोड सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुरीनाम की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड गुडलैंड्स में 72 साल के 72 years old श्री देवानंद ईश्वरलाल बुलोराम जो बोलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल आज 12:30 बजे आज दिन के 12:30 बजे इनके घर रॉयल रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। अले बॉम्बू मोतान्योरी में 100 साल की 100 years old श्रीमती कलावती राकातू पैदाइशी नाम सालदों जो पुप्पू साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज पौने ग्यारह बजे इनके बेटे देव राकातू के घर अले बॉम्बू मोतान्योरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:45 AM। जूली स्ट्रीट 400 में 74 साल की 74 years old श्रीमती मानती राम सुहक जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज पौने एक बजे इनके भाई पुरन बली के घर जूली स्ट्रीट 400 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:45 PM। महात्मा गांधी रोड त्वा बुटीक त्रियोली में 47 साल के 47 years old श्री सच्चिदानंद परलाकी जो ऋषि एक्स प्रिजन अफसर के नाम थे से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे इनकी माँ परबावती साकोने परलाकी के घर महात्मा गांधी रोड त्वा बुटीक त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामी न्यूज त्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। डुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव में 59 साल के 59 years old श्री भवन कुमार द्विवेदी परमानंद श्री भवन कुमार

0: द्विवेदी परमानंद जो कुशन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और पूर्व पास सुपरवाइजर ऑफ एयरपोर्ट थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 11 बजे के घर दुलम स्ट्रीट न्यूकोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौडाल बेया क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 एम। रॉयल रोड लिस्पियांस ट्रिब्यूशे में 79 साल के 79 इयर्स ओल्ड श्री सुरेंद्र रंजाया जो सुरेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 10:30 बजे इनकी पत्नी सेलू रंजाया के घर रॉयल रोड लिस्पियांस ट्रिब्यूशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। शोक में डूबे परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Radio.TV
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
2: Radio Musty.

0: चलते चलते एक छोटी सी बात, मौसम में बारिश थोड़ी सी, मौसम खराब सा लग रहा है तो तेज हवा रहने वाली है, तो अपना अम्ब्रेला साथ लेके जाइएगा, एक छोटा सा टॉवल या टिश्यू पेपर साथ रखिएगा, ठंडा ज़्यादा लगे तो स्वेटर या जैकेट बिल्कुल लेके जाना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आएंगी मॉर्निंग बीट के साथ वेदिता, तो चलिए जुड़े रहिएगा RM2 रेडियो मस्ती के साथ, इंजॉय कीजिए ये गाना।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

0: चेक सुबह के 7 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
2: Morning beat. A good beat for your morning show. James.

0: A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti.
2: चिंता तो होती है आप सबकी, इसीलिए तो आते हैं। कैसे हो भाई? अब हमारी मॉर्निंग जो है आज थोड़ी लेजी मॉर्निंग लग रही है क्योंकि आज बारिश हो रही है। वैसे तो लास्ट ईयर आपको पता है जब विंटर था तो कुछ समझ भी नहीं आया, मैंने ऐसे ही बोला था ये कोई विंटर है, आपकी बारी विंटर ने बता दिया। तुझे चाहिए विंटर? दिखाता हूँ कैसा होता है विंटर। तभी जितने भी लोग हैं ना इतने सारे कपड़े के अंदर नजर भी नहीं आते, ऐसे लगते हैं जैसे अंडरकवर डॉन है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। 7:10 अभी हम लोग कुछ ऐसे गाने चला रहे हैं जिसपे मैं और अभी पूनम जो है ना हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी के इस मौसम में एक ही चीज़ रह गया है। जो लोग कहते हैं गरम गरम खाओ गरम गरम पियो, हम कहते हैं भाई एक्सरसाइज करो और खुद गर्म हो जाओ, और इससे ज़्यादा कुछ

0: की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखो। डोंट फॉरगेट विदित आपके साथ है और यहाँ पर हमारा जो मॉर्निंग बीट है ये चलेगा 9 बजे तक। आपके मैसेजेस ऑन 5499124।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हो मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर और मैं हूँ आपकी दोस्त वेदिता. वैसे आज की ठंडी ठंडी सुबह अगर आप अभी अभी रजाई से दोस्ती निभा रहे हैं तो उस दोस्ती को तोड़ने का समय आ ही गया है. चलो भाई उठो, काम पे जाना है कि नहीं जाना है. हाँ हाँ, कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, 7 बजे तक सोने का टाइम मिलता है. लेकिन कुछ लोग अभी काम पर भी पहुँच गए हैं और कुछ लोग काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. वहीं पर कुछ लोग अभी रोड पर निकल गए हैं. जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग. अभी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना नहीं है, आराम से चलाना है आपको. क्योंकि आज का मौसम, वैसे जहां तक मैं देख के आ रही हूं, बाहर थोड़ी बारिश भी है, रोड स्लिपरी भी है. तो ऐसे में गाड़ी की जो लाइट्स हैं उसको ऑन रखना और स्पीड लिमिट पे ध्यान देना. और हाँ, आपको तो पता है ना कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए. तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना और रश नहीं करना है, आराम से. भले ही आप 5-10 मिनट देर पहुंचो, लेकिन आराम से पहुंचो तो सही. चलिए भाई, वेदिता आपके साथ हैं, साथ रहेंगे हम. और गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय, आय हाय चाय, ये सुबह सुबह गर्म गर्म चाय मिल जाए ना तो लाइफ बन जाए.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलो जी सर्दी के इस मौसम में गरम गरम चाय के साथ अगर आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं थैंक यू सो मच एंड यस आपके मैसेजेस 5491294 पे मुझे मिल रहे हैं चलिए वहीं पे मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर में स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ अभी थोड़ी देर में अरविंद हाजिर होने वाले हैं वहीं पे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें बर्थडे विशेज भेज रहे हैं चलिए हम इसे भी पढ़ लेंगे लेकिन अभी मैं आपको बता दूं लोग हाइपर मार्केट की तरफ से अगर आप किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं तो नंबर आपको बता दूं इट्स 5491294 जिस पे आप उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर भेज सकते हैं तो चलिए इसी के साथ जो लोग तैयार हो रहे हैं काम पर जाने के लिए मेक श्योर कि आप लोग अपने गाड़ी में छाता ज़रूर रखें मेक श्योर कि एक जोड़ा कपड़े भी हो आपके जूते भी हो आजकल तो जितने भी लोग काम पर जाते हैं सभी गाड़ियों में ही जाते हैं है ना तो एक जोड़ा कपड़ा या जूते चप्पल रखना ये मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है हो सकता है बारिश होने लगे जैसे कि अभी हम गाड़ी में बैठे थे हम और वेट कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी कि हम जाएंगे बाहर निकलेंगे इसीलिए भुलक्कड़ मत बनना मम्मी जब याद दिलाती हैं सुबह बोलती है कि बेटा मोबाइल लिया हाँ मम्मी बेटा टिफिन लिया हाँ मम्मी बेटा छाता लिया छाते की क्या ज़रूरत है मम्मी बारिश थोड़ी ना होगी अरे मम्मी को सब पता होता है जब मम्मी ने बोल दिया तो छाता लिख के जाने का ठीक है बहस नहीं करने का वो मम्मी है हमारी माँ
0: A good beat for your morning show. Morning beat RM2
1: Radio Musty.

0: हेलो संगीता, हेलो
1: जी, हेलो।
0: हाँ संगीता, तैयार हो गई?
1: अभी तो रही।
0: क्या कर रही हो
1: अभी? मैं नहाने जाने रही हूँ। अभी
0: कहाँ जा रही हो घूमने?
1: अभी मैं पूजा करूंगी तुके माम।
0: अच्छा, शायद आपको पता है कौन बात करी आपसे?
1: हाँ,
0: देखा, पकड़ी गई। मैं फिर पकड़ी गई, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो अच्छी हूँ अभी।
0: मुझे डाउट था क्योंकि मुझे पता था कि आपकी बेटी है ना पूजा।
1: हाँ?
0: अच्छा, तो आप रोज रेडियो लगा के रोज रेडियो सुनती है।
1: हाँ?
0: तो आपको डाउट था कि आज हम फोन करने वाले हैं आपको?
1: नहीं,
0: डाउट नहीं था। फिर भी जैसे मैंने हेलो बोला, आपने पकड़ लिया। और मैंने पूरी कोशिश की कि एक भी यहाँ की जो आवाज़ है आपके कानों तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी पहचान लिया। चलो भाई, ये होते हैं हमारे रेडियो मस्ती के फैंस। तो आपको पता है हमने क्यों आपको कॉल किया?
1: नहीं।

0: from Radio Masti.
1: भाई आपको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए हमने फोन किया और साथ ही साथ ये बताने के लिए फोन किया कि आपको लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है जो आपको आज नहीं तो कल आकर अपने आईडी कार्ड के साथ कलेक्ट करना पड़ेगा और आपकी बेटी पूजा आपकी पूरी फैमिली की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. हमारे पूरे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं.
2: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: चलिए चलिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको हमें मॉर्निंग में खुश करने का मौका मिलता है. तो संगीता जी एक बार फिर जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको और लाला फैमिली की ओर से भी. और चलिए इसी के साथ मैं अगला गाना भी आपके नाम करती हूँ, ठीक है जी?
2: बहुत शुक्रिया विदिता, मैं बहुत खुश हूँ.
1: मैं भी बहुत खुश हूँ. मेरी आवाज़ तो रेडियो पे आती रहती लेकिन आज लाइव एंड डायरेक्ट बात हो गई. थैंक यू सो मच. चलिए एंजॉय करें. ओके बाय
2: बाय. Bye.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: जी हाँ, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से लेटेस्ट खबरों के साथ आ गए हमारे दोस्त अरविंद. चलिए उनका करते हैं स्वागतम. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. फुटबॉल मैदान में खेला जाता है, राजनीति के साथ नहीं. फीफा की मेहरबानी, ट्रंप की राजनीति काम न आई. USA वर्ल्ड कप से आउट. इधर नेमा के बाद रोनाल्डो ने भी रोते हुए वर्ल्ड कप को अलविदा कहा. स्पेन ने पोर्टुगल को 1-0 से हराया. इंजरी टाइम में मेरिनो का गोल काफी रहा. रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्टोरिक डिफेंस. स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अभी तक बिना कोई गोल कंसीड किए. अभी तक स्पेन के डिफेंस का कोई भी तोड़ नहीं पाया. वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार एक टीम 6 क्लीन शीट रख पाई है. कलेक्टिव वर्क, डिफेंस सॉलिडिटी, ये है कोच डेला फुएंटे का मंत्र. दूसरी ओर फुटबॉल का एक लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप कार्य पूरा हुआ. इस ट्रॉफी को छोड़कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सब कुछ जीता. वर्ल्ड कप एक अधूरी ख्वाहिश रह जाएगी. हार के बाद पोर्टुगल के बॉस रोबर्टो मार्टिनेज ने भी जाने का फैसला लिया. क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा. आज सुबह बेल्जियम ने USA को 4-1 से सुधारा और अपने वर्ल्ड कप से बाहर किया. देख के तिलारी का डबल, वानाकेन और लुकाकू का 1-1 गोल. USA के लिए तिलमान ने स्कोर किया. फीफा की मेहरबानी से बालोगन खेल पाया पर कुछ खास नहीं कर पाया. इस प्रकार क्वार्टर फाइनल तक आते आते सभी मेजबान टीमें मेक्सिको, कनाडा और USA बाहर हो गई. सो अभी तक क्वार्टर फाइनल इस प्रकार है. गुरुवार को थर्सडे मैच मिडनाइट फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फिर फ्राइडे मैच शुक्रवार को 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम, शनिवार को सैटरडे मैच 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड और आखिरी क्वार्टर फाइनल संडे सुबह 5 बजे. क्वार्टर फाइनल के आखिरी दो टिकट किसके नाम होंगे ये आज पता चलेगा, आज और कल सुबह. आज रात 8 बजे के 12 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया, इन दो मैचों पर आपको प्रीव्यूज देंगे 8:30 बजे RM3 पर, RM2 पर जरूर सुनिएगा स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन. USA तो लंगराते हुए घुटनों पर वर्ल्ड कप से बाहर हुआ पर फीफा के प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फांटिनो पर क्रिटिक्स बरस रहे हैं. USA के खिलाड़ी बालोगन के रेड कार्ड को कैंसिल करने का फैसला भारी पड़ रहा है. इस फैसले के पीछे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रही इस पर बातें हो रही है. ट्रंप ने तुरंत फीफा को थैंक यू कहा. इससे पहले फीफा ने ट्रंप को फीफा पीस प्राइज भी दिया था. ट्रंप ने खुलकर कहा, I'm the one who got them to do it. मेरे कहने पर ये फैसला लिया गया. ये बात अलग है कि उसने कहा कि वो पहले नहीं जानता था कि रेड कार्ड क्या है. जो भी हो, ट्रंप इन्फ्लुएंस फीका पर गया. USA आउट हुआ. ट्रांसफर न्यूज. टोटनहम हॉटस्पर ने अपना ट्रांसफर रिकॉर्ड तोड़ा. 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर न्यूकासल यूनाइटेड से टोनाली को साइन किया गया. द स्पर्स तिजोरी खाली कर रहे हैं टीम रिबिल्डिंग में. डिफेंडर यान पोल वान हेके पर 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, माचुस फर्नांडिस पर 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग और टोनाली के लिए 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. एंडी रॉबर्टसन, मार्को सिनेसी और मार्टिन जुब्राव का फ्री ट्रांसफर में आए हैं. अब टारगेट है बोर्नमुथ का एडी जूनियर क्रूपी, उसके लिए 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग तैयार कर रखा है टोटनहम हॉटस्पर ने. आर्सेनल एस्टन विला के मोर्गन रॉजर्स के लिए ब्रिटिश रिकॉर्ड फी देने के लिए तैयार है पर विला अपने स्टार खिलाड़ी को नहीं बेचना चाहता. टेनिस विंबलडन ओपन जारी है. कल पाउलिनी, फेरी, कोबोली, नुस्कुरा, फिर फ्रिट्स, कोस्टुक, मेर्टेंस, ये सभी लोग जीत पाए. लेहेक का वेरेव वाला मैच बीच में सस्पेंड कर दिया गया. आज क्वार्टर फाइनल पेगुला वर्सेस कोको गोफ, ओग अलियासी में जोकोविच, यानिक सीनर स्ट्रफ, ओसाका खेलेगी मुचोवा के खिलाफ. क्रिकेट. हरारे में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 25 रनों से हराया. आज इंडिया

0: और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इस बीच जिम्बाब्वे के खिलाफ आने वाले टी20 सीरीज के लिए संजू सैमसन टीम में नहीं है। पिछले तीन टी20 मैचों में सैमसन केवल 5-0 और 1 रन बना पाया था। इसी कारण उसके स्थान पर वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया में खेलने का मौका दिया गया। साइकिलिंग टू डे फ्रांस के स्टेज 3 में पोगाचा की जीत हुई और येलो जर्सी भी उसके नाम। डिफेंडिंग चैंपियन तादेश पोगाचा ओवरऑल लीड ले चुका है। अभी वो जोनास विंगेगार्ड के बराबर है। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। स्पेन ने पोर्टुगल को हराया, स्पेन क्वालिफाई। यूएसए की हार हुई, बेल्जियम ने उसे 4-1 से पछाड़ा। क्वार्टर फाइनल स्पेन और यूएसए के बीच। आज क्वार्टर फाइनल के दो अन्य टिकट दिए जाएंगे, अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, कोलंबिया वर्सेस स्विट्जरलैंड। याद दिला दें, अर्जेंटीना इजिप्ट वाला मैच आज 8 बजे है, ज्यादा देर नहीं, सो देख पाएंगे, आपको नतीजे दे पाएंगे। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। डोंट फॉरगेट आई विल कैच यू एट 8:30 वर्ल्ड कप मैगजीन के साथ। तब तक हैव ए वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय।
1: 8:30, या अरविंद, मिलते हैं 8:30 पे। थैंक यू सो मच।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लोर एक्सपर्ट।
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Prix cassé l'eau la voix. La lumière moderne, prix soc. L'ordoise à ban prix qui pour faire ou même gagne pas quoi. Décoration pour la case, en dents, en déo. Sanitaire, levier, gazon artificiel. Enfin, c'est tout. Pour plus renseignements, check page Facebook Quality Déco.
4: Morning Beat.
5: James. RM2 Radio Musty in the mix.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग इस ब्यूटीफुल से मॉर्निंग में. जी हाँ, विंटर में और हमें क्या चाहिए, स्वेटर, चाय और कुछ अच्छे म्यूजिक.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जी मैं क्या बताऊं आपको, मॉर्निंग में अभी काफी सारे लोग हैं जो धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं. मन तो करता है कि जाऊं दरवाजा खोलूं और बोलूं अंकल घर पे रहो, सैलरी भेज दूंगी, फिर अपनी औकात याद आ जाती है. तो इसीलिए हम अब ज्यादा सोचते नहीं, बस मनी मन में खुश हो जाते हैं. चलो भाई, ट्यूजडे 7 जुलाई आज के दिन भाई जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है उनको हैप्पी बर्थडे. यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं दिनेश हरादन जी को, और साथ ही साथ यहाँ पर बर्थडे विश करते हैं टुनिफियो कृष्णा बाबुआ, आज उनका जन्मदिन है. पुपुदिया और बाबुआ फैमिली की ओर से फ्रॉम लालमाची हैप्पी बर्थडे टू यू.
1: मॉर्निंग बीट,
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: और चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं हम 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर. मिलते हैं उस पार.

आवाज़ समाचार सुना जा आलू के खेतीहर लोग के 50,000 रुपए की बजाय 85,000 रुपए के मुआवजा देवल जात बा कृषि उद्योग मंत्रालय बतैले बा कि गत बरिस से लमाही प्लेंसुफी लालूगा रिविया धागों वगैरह इलाका के 64 गो खेतीहर लोग के प्रदान बीज से प्राप्त समस्या के बाद ये फैसला लेवल कर रहल बाते ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से ये बीज के आयात करल कर रहल बाते जो न करीब 40 दिन के बाद

0: सरने लगेरा। फागे के निरीक्षण के बाद ही पता चला कि ये बीज अच्छा नहीं बा। यही खातिर सरकार सब संबद्ध खेतीहर लोग के मुआवजा दे के फैसला ले लन जा। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य लगावल जाए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के संबोधित 17 सवाल में से एगो सुब्रमण्य किसनैन के मौत के मुतालिक करल जाल जांच के सिलसिले में बातें मोताय ब्लॉन्च क्रांति विसाफ ईस्ट के सांसद चेतन बाबूलाल जानना चाहेला कि कतल में महारत हासिल विदेशी जांचकर्ता के तहकीकात अबले कहां पहुंचल बा। शान कुंडुमाल मामले में नया विकास बा ओकर कानूनी सलाहकार पुष्टि कर ले बा कि दुबई में ऑफिस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नतीजा पर पहुंचे बा कि ऊ कोनु जुर्म नहीं करत हवन बाते और ऊ ममीला के बगैर किसी शर्त के खारिज कर देवल कर रहल बाते। वकील ई बात भी जुटलाए के शान कुंडुमाल के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करल कर और ओकर जमानत पर रिहा करल कर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलावल गल एगो वैश्विक कार्रवाई में 1000 से जस्ती जना के गिरफ्तार करल गल। एक कार्रवाई खातिर इंटरपोल प्रोवेशन ग्लोबल चेन वगैरह के सहयोग मिलेला कु 2070 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बाती। तो इरहर समाचार नमस्ते और सलाम।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on NBC's website mbc.mu and on NBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through NBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
3: Morning Beat.
4: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: अशोक को बोलो मम्मी बुला रही है.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: सुबह के 8:08 हुए हैं, लेकिन आज है 7 जुलाई और हम साथ साथ हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत है आप सबों का. ये है आपका मॉर्निंग बीट विनीता के साथ. कैसे हो आप? अभी तो मेरी आवाज़ थोड़ी वापस आ गई है ना. हाँ, ये सब उस गर्मा गर्म चाय का इफेक्ट है. मैं क्या बताऊँ आपको, सोचो गर्मा गर्म चाय, उसमें ऐसे लहराती हुई इलायची और ऐसे तैरता हुआ दालचीनी का टुकड़ा. हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है. और उधर अदरक थोड़ा सा रोमांस करता हुआ, ये सब जब मिल जाते हैं ना साथ में, फिर जब चाय की ये घूंट आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो मैजिक क्रिएट होता है, मैजिक. और ऊपर से ये गरम गरम ब्रेड, उसमें पिघलता हुआ लहराता हुआ ये मक्खन, और उसमें मुस्कुराती हुई ये चीज़, आय हाय, और इतराती हुई ये जैम, क्या बात है. भूख लग गई ना? हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकला करो. ऐसा नहीं कि कहते हो कि टाइम नहीं मिलता, थोड़ा टाइम निकालो. अभी मुंह में पानी आ गया ना, मन कर रहा है ना ब्रेकफास्ट करने का. हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए. हाँ, अभी राखी ने बोला है कि दीदी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया है, बारिश थोड़ा मौसम. हाँ बेटा, होता है. बाकी लोग आपको नंबर पता है, 5491294, बताते चलो मौसम का क्या हाल. नहीं नहीं नहीं, मौसम का हाल तो हमें सुमेरा बताएगी. आज हो गई, चलिए मिलते हैं.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ओनली टू स्विनर्स.
3: आम हालत मुर्शिद में आज सुबह 4 बजे से कल 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है और ज़ोरदार हवाएं भी चलने का अनुमान है. मस्करिंस के दक्षिण में एक ज़ोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंड महसूस की जा रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादल घेराएंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में हल्की बारिश होगी, दोपहर बाद पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में हल्की वर्षाएँ होती रहेंगी. आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बरसातें होंगी. हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही खराब रहेगा, ऊंची लहरें उठेंगी 4 मीटर वाली. इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त की जा रही है और सभी लोगों से सावधानियां बरतने की मांग है. तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 17 से 20, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:43 पर.
1: Your weather

0: Shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, हम हमेशा सुनते हैं, लोग कहते हैं कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं होता,

0: के लिए अपनी खुशी और अपनी पहचान से कंप्रोमाइज मत करना। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और से नहीं, खुद से शुरू होती है। जब हम अपनी बाउंड्रीज को समझते हैं, अपने डिसीजंस की वैल्यू करते हैं और ना कहना भी जरूरी हो तो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, तब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट साथ साथ चल सकते हैं। आज का दिन शुरू कीजिए इस प्रॉमिस के साथ कि आप खुद भी उतने ही केयर करेंगे अपनी जितनी आप दूसरों की करते हैं। खुद की कदर कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं तभी दुनिया भी आपकी वैल्यू समझती है।
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2. Radio.

0: वैसे अगर आपने मूवी देखी होगी तो इसमें हीरो खुद हीरोइन को कहता है तू मुझको लाठी मार. मॉरिशस में नहीं होता है ना ये.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: ऐसे कैसे होली दिवाली से भी तो करते हैं तो ये भी तो होना चाहिए ना. चलो शुरू करेंगे. शुरुआत कौन करना चाहेगा? ऑलराइट चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे. और आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 549 and 1294 सब बोलेंगे भागो भाई भागो. ये लड़की पता नहीं क्या हो गया, कुछ सुबह क्या खा के आई है मुझे खुद नहीं पता. मेरी माँ ने क्या खा के मुझे पैदा किया, अब सुबह क्या खा के आई तो मैं भूल ही गई. चलो कोई बात नहीं. रेशमा गोपाल हमारे साथ है एंड कहते हैं कि मेरे भाई सुदर्शन सुकरा आज उनका बर्थडे है. ही 63 ईयर्स ओल्ड टुडे. मम्मी पापा की तरफ से एंड सभी सिस्टर्स की तरफ से, सभी ब्रदर्स की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू. ये जब आवाज़ खराब आती है तो कितना गाने का मन करता है ना. मैंने भी सोचा मैं गाना गाऊं लेकिन फिर सब भाग गए यहाँ पर जब मैंने गाना शुरू किया. तो चलो जी राम राम जी. कहते हैं कि आओ सितोनेल वाली गर्म चाय पी लो. किरण जी आप व्हाट्सएप पे चाय पिलाएंगी, कभी कलकत्ता से बुलाया करो, वहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे है ना. आपके हाथ से गर्मा गर्म पकौड़े, ये पकौड़े कहाँ से आ जाते हैं, ये विंटर में ही आते हैं भाई. ये इलायची वाली, अदरक वाली, मसाले वाली चाय और ये प्याज के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े सब विंटर में ही आते हैं. पता नहीं समर में कहाँ गायब हो जाते हैं.
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
2: Radio Musty.

0: आ गया अरविंद।
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: रेडियो मास्टर की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
3: रेडियो मास्टर के साथ
2: वर्ल्ड कप मैगजीन।
0: आले आले क्या चलना है अरविंद आगे, चलिए मिलते हैं ना उनसे। अरविंद,
4: स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन में सबसे पहले कल के खेले गए मैचों पर रिपोर्ट। नेमार के बाद रोनाल्डो ने भी रोते हुए वर्ल्ड कप को अलविदा कहा। स्पेन ने पोर्टुगल को 1-0 से हराया। इंजुरी टाइम में मेरिनो का गोल काफी रहा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्टोरिक डिफेंस, स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अभी तक बिना कोई गोल कंसीड किए। अभी तक स्पेन के डिफेंस को कोई नहीं तोड़ पाया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार एक टीम 6 क्लीन शीट रख पाई है। कलेक्टिव वर्क, डिफेंसिव सॉलिडिटी, ये है कोच दे ला फुएंते का मंत्र। दूसरी ओर फुटबॉल का एक लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप कार्य पूरा हुआ। इस ट्रॉफी को छोड़कर CR7 ने सब कुछ जीता। वर्ल्ड कप एक अधूरी ख्वाहिश रह जाएगी। हार के बाद पोर्टुगल के बॉस रोबर्टो मार्टिनेज ने जाने का फैसला लिया। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। आज सुबह बेल्जियम ने USA को 4-1 से हरा कर उसे अपने वर्ल्ड कप से बाहर किया। डेकेर्टेलारिये का डबल, वनाकेन और लुकाकू का एक एक गोल। USA के लिए तिलमान ने स्कोर किया। फीफा की मेहरबानी से बालोगन खेल पाया पर कुछ खास नहीं कर पाया। इस प्रकार क्वार्टर फाइनल तक आते आते सभी मेजबान टीमें मेक्सिको, कनाडा और USA बाहर हो गई। सो अभी तक क्वार्टर फाइनल इस प्रकार है। थर्सडे मैच, मिडनाइट मैच, फ्रांस वर्सेस मोरक्को। फिर फ्राइडे मैच 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम। सैटरडे मैच 1 बजे नॉर्वे इंग्लैंड। और आखिरी क्वार्टर फाइनल संडे सुबह 5 बजे। क्वार्टर फाइनल के आखिरी 2 टिकट किसे दिए जाएंगे ये आज रात पता चलेगा। सो USA तो लंगराते हुए घुटनों पर वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, पर फीफा के प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फांटिनो पर क्रिटिक्स बरस रहे हैं। USA के खिलाड़ी बालोगन के रेड कार्ड को कैंसिल करने का फैसला भारी पड़ रहा है। इस फैसले के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रही, इस पर बातें हो रही है। ट्रंप ने तुरंत फीफा को थैंक यू कहा। इससे पहले फीफा ने ट्रंप को फीफा पीस प्राइज भी दिया था। ट्रंप ने खुलकर कहा, आई एम द वन हु गॉट देम टू डू इट, मेरे कहने पर यह फैसला लिया गया। ये बात अलग है कि इससे पहले ट्रंप ने खुद कहा कि उसे पता नहीं है रेड कार्ड क्या होता है। इन्फांटिनो गरम तेल में, जो भी हो ट्रंप इन्फ्लुएंस फीका पर गया। USA आउट। अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, ये आज का मैच है। अटलांटा के मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में आज रात 8 बजे। नॉकआउट राउंड में दोनों टीमों के लिए काफी कठिन साबित हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को केप वर्दे ने बहुत परेशान किया था। एक्स्ट्रा टाइम में जाकर मेसी की टीम 3-2 से जीत पाई थी। इधर इजिप्ट के लिए ऐतिहासिक क्वालिफिकेशन मिला था। पेनाल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। लियोनेल मेसी के लिए अतिरिक्त मोटिवेशन है। गोल्डन बूट रेस सेंसेशनल फॉर्म में है। लियोनेल मेसी अभी तक सभी मैचों में स्कोर करता आ रहा है। टोटल 7 गोल, टाइड विद किलियान एम्बापे और अर्लिंग हालैंड। ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर रिकॉर्ड भी अभी तक सेफ नहीं है। अर्जेंटीना का गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेसी, तो इजिप्ट का बादशाह है मोहम्मद साला। पर साला के लिए फिटनेस कंसर्न है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैमस्ट्रिंग से परेशानी हुई, एक्सेलरेट नहीं कर पाया था। काउंटर अटैक उसका शस्त्र है, इसीलिए आज उसके फिटनेस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। इजिप्ट में डिफेंसिव क्राइसिस, लेफ्ट बैक अहमद

0: फतूनी और करीम हफेज फुल फिट नहीं है। प्रेडिक्टेड लाइनअप अर्जेंटीना के लिए मार्टिनेज गोलकीपर, फिर मोलिना, रोमेरो, लिजांड्रो मार्टिनेज, तागलाफिको, डेपोल, फर्नांडेज, मैकालिस्टर, पारेडिस, मेसी और लुतारो मार्टिनेज। इजिप्ट के लिए शुबेर, हानी, इब्राहिम, रबिया, अब्दुल मगूद, लशीन, आतिया, अशूर, साला, मामूश और जीको। ओप्टा सुपर कंप्यूटर का प्रेडिक्शन है 71.6% अर्जेंटीना के हक में, पर अर्जेंटीना को इजिप्ट के कॉम्पैक्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर और काउंटर अटैक से खतरा है। आज का दूसरा और इस बेस्ट ऑफ 16 का आखिरी मैच होगा स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच। कनाडा वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। मिडनाइट किक ऑफ। स्विट्जरलैंड पिछले 10 मैचों में अनबीटन है। राउंड ऑफ 16 में उसने अल्जीरिया को 2-0 से हराया था। पहली बार के लिए स्विट्जरलैंड की टीम वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीत पाई है। अभी तक स्विट्जरलैंड का सितारा है 20 साल का योआन मानजाम्बी, 3 गोल स्कोर कर चुका है, साथ में 2 असिस्ट। मिडफील्ड में माएस्ट्रो ग्रानित ज़ाका है। कोलंबिया एलीट डिफेंसिव रेपुटेशन, कैपिटेरोस नाम है इनका, कॉफी पिला पिला कर मारते हैं। 3 क्लीन शीट, केवल 1 गोल कंसीड किया है। पिछले राउंड में गाना को हराया, पर स्ट्राइकर योन कोडोबा इंजुरी के कारण नहीं खेल पाएगा। लुइस सुआरेज है, लुइस डियाज और जेम्स रोड्रिगेज भी हैं। ओप्टा सुपर कंप्यूटर प्रेडिक्शन, कोलंबिया 42.4%, स्विट्जरलैंड 27%। सो अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट आज रात 8 बजे और मिडनाइट किक ऑफ कोलंबिया वर्सेस स्विट्जरलैंड। इन सब पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सो दिस वर द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप इन स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन।
1: थैंक यू सो मच अरविंद भाई। वर्ल्ड कप की बात चल रही है, विकास भी आ गया। गुड मॉर्निंग विकास।
2: गुड मॉर्निंग। तुम चाय का कप लेकर वर्ल्ड कप की बात करो, वैसे तो बड़ा मजा आया क्योंकि अर्जेंटीना इजिप्ट बहुत कमाल का मैच हुई, बट स्विट्जरलैंड कोलंबिया आल्सो कमाल का मैच। सो हमारी टीम जो पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल्स, मोरक्को, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन और बेल्जियम। बहुत कमाल होगा, हम देखते हैं क्या कमाल करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि यूएसए के बारे में बहुत सारी बातें हो रही कि कैसे ट्रंप ने फोन करके फीफा को फूफा बना दिया।
1: क्या बना दिया?
2: फूफा। अच्छा, मतलब ये है कि घर वाली बात लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं साहब, वही होगा जो मैदान में रखेगा दम, आगे बढ़ाएगा दम।
3: इट वॉज द वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RM2 विद माइटी।
4: मॉर्निंग बीट RM2 Radio Musty in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वैसे आजकल भी काफी सारी फिल्में हैं देखने के लिए, लोग भाग भाग के जा रहे हैं और अल्फा को लेकर काफी पॉजिटिव.
3: अब बताओ अगर अल्फा का आएगा सीक्वल तो उसका नाम क्या होगा?
2: मुझे क्या पता.
3: अल्फा बीटा गामा.
2: अच्छा गामा भी आएगा?
3: हाँ गामा.
2: गामा तो आ गया था.
3: सारे गामा है वो.
2: गामा आया था.
3: सारे गामा है वो.
2: वो गामा आया था.
3: कौन सा
2: आया? नहीं था उसमें हाउसफुल में
3: गामा.
2: गामा गामा मारेगा.
3: अच्छा वो अलग था. हाँ, नहीं ये वाला नहीं है लेकिन सॉरी
2: गामा आ गया था.
3: अच्छा लोग कह रहे हैं कि अल्फा
2: बेटा भी आया था.
3: नहीं बेटा
2: बेटा भी आया था. धक धक करने लगा बेटा आया था.
3: वो अलग है. तुम दूसरी
2: अल्फा देर से आए.
3: नहीं लेकिन तुम जो दूसरे कार्टून घुसा रही हो ना, जो तुमने कहा कि चाय के अंदर फ्लोटिंग कार्डमम और अदरक, लेकिन तुमने ब्रेड के अंदर जो जाम की बात करी उन लोगों के लिए गलत था जो ट्रैफिक जाम में फंसे थे. कैसे तुमने ये सोचा नहीं? No. जो तुम जाम की बात करती हो तो अभी ट्रैफिक जाम और साथ साथ में बारिश हो रही है उसके चलते जो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है. उसी के साथ मैं कहता हूँ कि बस चाहे कुछ भी हो गानों के मजे लो, यहाँ पर चल रही है फुल ऑन मस्ती.
2: चलो चाय पीते हैं.
3: चलो कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट टक टक बॉलीवुड.
4: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलो भाई, यहाँ पर गाना आया चुनरी चुनरी, सारे पुराने गाने ही आ रहे हैं।
3: हाँ, वैसे एक इश्क अमीना भी आया ना।
2: हाँ, इश्क अमीना आया, मैंने कहा रहने दो सुबह सुबह
3: नहीं सुबह सुबह तो बहुत कर रही है, क्या चीज है ये, तो बाएं हाथ का खेल है।
2: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये तो हम ही गाते हैं। पता है, मैंने कल एक गाना सुना।
3: एक?
2: हाँ,
3: कौन सा?
2: मुकेश जी का गाना। बहुत प्यार से सुन रही थी मैं गाना, जैसे शुरू हुआ प्यार कर ले, मैंने कहा वाह क्या गाना है, वाह।
3: हाँ, प्यार कर ले, प्यार कर ले।
2: फिर उसके बाद क्या आता है?
3: बस अब प्यार कर ले, अब शादी के लिए तैयार कर ले।
2: नहीं, कहता है प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा।
3: हाँ?
2: हाँ?
3: भाई ये तो गलत बात है।
2: धमकी देके प्यार करते थे पहले?
3: नहीं, सही नहीं है। देखो ऐसा है कि आज अच्छी बात करो, क्योंकि आज 7 तारीख है।
2: Exactly.
3: 7वां महीना है। और लेट मी टेल यू, इट्स अ वर्ल्ड चॉकलेट डे।
2: वर्ल्ड चॉकलेट डे कब खिला? कभी अभी खिला रहे हो?
3: नहीं, सुबह से तुम जो खिला रही ना हवा में।
2: चॉकलेट लावा केक खाना है और मुझे चॉकलेट फज खाना है। और
3: ये सब लिख के दे दो, मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि सुबह से तुम बस हवा में सब केक खिला रही हो, तुम पता नहीं क्या क्या खिला रही हो। ये सब हवा से नहीं होता, नीचे जाओ, अभी तुम्हारा ब्रेक होगा, मैं शुरू करने वाला हूँ प्रोग्राम।
2: हाँ।
3: तो यू जस्ट गो गेट एवरीथिंग। और जितने भी लोग हैं ना,
2: तो खिला सकते हो, ना कैलाश खेर का बर्थडे है।
3: हाँ, कैलाश खेर। लेकिन ये सच है कि जितने भी लोग हैं ना, आज कोशिश कर सकते हैं कि किसी को, अपने को एक छोटी सी चॉकलेट देकर स्माइल के साथ कहते गुड मॉर्निंग,
2: अपने बारे में बात करें। ही इज एक्सपेक्टिंग मी टू गो डाउन एंड कैंटीन से इसके लिए मैं चॉकलेट खरीद के लाऊं, लेकिन केक तो आज खिला के रहेगा।
3: हाँ,
2: ना
3: केक?
2: हाँ।
3: हवा में टेक टेक
2: खैर

चलो भाई इसी के साथ अब तो हमारे जाने का टाइम हो गया है, चाय वाय पीने का, चॉकलेट वॉकलेट खाने का, और आपका भी मन शांत करने का, आराम से काम पे पहुंचने का, मन लगाने का और एकदम कूल रहने का। चलिए विकास आ रहे हैं आपके लिए लेकर नेक्स्ट प्रोग्राम, आपसे मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग में 7 बजे। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।

0: मॉर्निंग बीट।
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: 2026 सातवां महीना सातवीं तारीख और आज है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। हम बिल्कुल तैयार, थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार।

0: समाचार को लेकर सुमैरा आ चुकी है। सुमैरा, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार और आदाब सभी को। आज राज्यसभा के कार्य लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को संबोधित 17 सवालों में से एक सुब्रमण्य किसनैन की मौत से मुतालिक की जा रही जांच के सिलसिले में होगा। मोताइब लॉन्च ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट के सांसद चेतन बाबूलाल जानना चाहेंगे कि कत्ल में महारत हासिल विदेशी जाँचकर्ताओं की तहकीकत अब तक कहाँ पहुंची है। याद रहे, स्कॉटलैंड यार्ड से बरतानी जांचकर्ता जून 2025 में सेंट्रल सीआईडी की मदद करने के लिए मुर्शिद आए थे। किसनैन परिवार के वकील गामा वालाइदन अफसोस जताते हैं कि कुछ पहलुओं को मद्देनजर नहीं रखा गया है, जैसे कि दो एफिडेविट हैं। आलू के खेतीहरों को 50,000 रुपए के बजाय 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। कृषि उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल लामारी, प्लेन सूफी, लालूगा, रिविया ड्रागों वगैरह इलाकों के 64 खेतीहरों को प्रदान बीजों से प्राप्त समस्याओं के बाद ये फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से इन बीजों का आयात किया गया था, जो करीब 40 दिनों के बाद सड़ने लगे थे और फागे

0: निरीक्षण के बाद ये पता चला कि ये बीज अच्छे नहीं थे, इसलिए सरकार ने सभी संबद्ध खेतीहरों को मुआवजा देने का फैसला लिया। उन 17 खेतीहरों को भी जिन्होंने 21 दिनों की अवधि के बाद खेती करनी शुरू की थी। एसएमई चैम्बर और छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन प्रधान एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को एक खत भेजने वाले हैं। एसएमई चैम्बर के अध्यक्ष अजय बिदेसी के मुताबिक एसएमईज की कई सिफारिशों को राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में शामिल नहीं किया गया, जैसे कि कोविड-19 के दौरान डीबीएम से लिए गए कर्जों के सिलसिले में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के लिए एक मैकेनिज्म की स्थापना करने का प्रस्ताव भी शामिल था ताकि कर्ज लिया जा सके। सभी संगठन एक हल ढूंढने की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 मुल्कों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाई गई एक वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के लिए इंटरपोल, ऑपरेशन ग्लोबल चेन वगैरह का सहयोग मिला है। कुल 2070 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बने हुए थे। और फुटबॉल की बात करें तो विश्व कप में पुर्तगाल का सफ़र कल रात को ही ख़त्म हुआ। स्पेन ने गोल करके पुर्तगाल को खैर से बाहर कर दिया और आज सुबह बेल्जियम और अमेरिका का मैच पूरा हुआ। बेल्जियम ने 4-1 से अमेरिका को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी है और आज रात राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और इजिप्ट के दरमियान मैच खेला जाएगा रात 8 बजे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.

0: Hey, all babies and the babas, it's time to get up, get ready, and bhagadori shuru.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: बातों में इशारा हो गया, प्रोग्राम शुरू हमारा हो गया. 9:09 7th of July 2026. हालांकि काफी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कल रात का मैच, काफी सारे लोग चाहते थे कि रोनाल्डो कुछ गोल वोल स्कोर कर पाए, लेकिन आपका गोल क्या था? सपोर्ट करना ना, तो आपने किया, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. चलिए अच्छी बात है, हर दिन को अपने मूड को सपोर्ट कीजिए और उसके बाद निकल पड़िए अपनी राहों में. एवरी सिंगल डे इज अ चैलेंज, और चैलेंज होता है हमारी जिंदगी में, यानी कि कुछ चीजें ऐसी जो आपने प्लान नहीं की होती. और सुबह का मौसम देख लीजिए, जैसे बारिश हो गई और उनसे ठंडी हवा चलने लगी. ओह, सुबह उठना, तैयार होना, एवरीथिंग इज अ चैलेंज. नहीं, और उसके ऊपर बच्चों को तैयार करना, सब कुछ तैयारी के साथ साथ अपना तो देखना ही, लेकिन दूसरा भी देखना कि टिफिन फुल हुआ कि नहीं, पानी की बोतल ली कि नहीं. ओह, सो मेनी मोर थिंग्स, उससे निकल कर अब थोड़ा सा आगे, लेकिन फिर भी भागा दौड़ी चली रही है. हाँ, वो गीले जूते और साथ साथ में वो छतरी को सुखाना, हाँ, ये सब पार्ट एंड पार्सल हो जाता है ना जिंदगी का ऐसे मौसम के अंदर. चलिए, 7th of July ऑलरेडी हफ्ता कंप्लीट होता है जुलाई के महीने का, और अभी तो 7वां महीना, यार के 6 महीने तो निकल गए, आधा साल अभी बाकी है. सो आधा साल हम रखेंगे ना म्यूजिक जरिए आपका ख्याल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 से 12 के बीच में मस्ट मॉर्निंग शो. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हो गया बिल्कुल रेडी. रेडी के बाद सेडी, लेट्स गो.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: ये गाने कभी पुराने नहीं होंगे ना. अमेजिंग सॉन्ग्स, अमेजिंग वाइब्स. मॉर्निंग मॉर्निंग में Just need to get on with all the energy. बस म्यूजिक साथ हो तो कोई फिक्र नहीं. म्यूजिक की बात करें तो हम ये भी चाहेंगे कि आपको पता चले कि आपकी लेडी लक कितना साथ दे रही है. It's time to
1: your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: मेहनत, कोशिश, परिश्रम ये तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अगर सितारों की चाल आप लेते हैं संभाल तो कमाल हो ही सकता है. स्टार्टिंग विद
2: एरीज, मेष राशि.
0: मेष राशि, आज का दिन बहुत ही कमाल का चलने वाला है, यानी कि एनर्जी फुल ऑन रहने वाली है. किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन काफी बढ़िया है. बस जल्दबाजी से बचिए, दिल की सुनिए लेकिन दिमाग को साथ लेकर चलिए.
2: टॉरस, वृषभ राशि.
0: तो आज पेशेंस ही आपकी सुपर पावर है. ऑफिस हो या घर, आपका जो नेचर है ना वो सबका दिल जीत लेगा. फाइनेंशियल मैटर्स अच्छे हैं क्योंकि आपने काफी सारी प्लानिंग कर ली है. सो मिल बांट कर सोच समझ कर टेक योर डिसीजन.
2: जेमिनी, मिथुन राशि.
0: भाई कम्युनिकेशन आज आपकी एक स्ट्रेंथ रहने वाली है. एक फोन कॉल या मैसेज किसी पुराने रिश्ते को फिर से खूबसूरत बना सकता है. स्माइल रखिए एंड से हेलो विद ऑल योर एनर्जी.
2: कैंसर, कर्क राशि.
0: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का परफेक्ट दिन है. अपनी फीलिंग शेयर कीजिए क्योंकि कितने टाइम तक उसको दिल में रखेंगे. कभी कभी एक छोटी सी बात भी दिल को हल्का कर देती है. बोलिए, अरे मुंह तो खोलिए.
2: लियो, सिंह राशि.
0: लियो, जो भी काम हो उसको कर दियो, वैसे समय रहते करना सही होता है. स्पॉटलाइट आपके नाम पे रहने वाली है. कॉन्फिडेंस के साथ आपके जो आइडियाज है ना वो काफी कमाल है. कैसे उसको शेयर करते हैं बस ये सोच लीजिए. थोड़ी सी ह्यूमिलिटी भी साथ रखिए क्योंकि सक्सेस आपको और खूबसूरत दिखनी चाहिए.
2: वर्गो, कन्या राशि.
0: आज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आपको एडवांटेज देंगे. छोटी छोटी अचीवमेंट्स उनको सेलिब्रेट करना ना भूलें क्योंकि ये ना सोचें कि एक बड़ी अचीवमेंट मिलेगी उसके बाद ही पार्टी और दिल खुश होगा. ये छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना वही है. एक एक स्टेप कर आगे बढ़ते जाइए. हर प्रोग्रेस इम्पोर्टेंट होती है.
2: लीब्रा, तुला राशि.
0: भाई बैलेंस ही आज का मैजिक वर्ड है. वर्क और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, उनके बीच में थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालिए. वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है. नहीं, एक कप कॉफी और फेवरेट म्यूजिक मूड को फ्रेश कर देगा.
2: स्कॉर्पियो,

0: राशि।
1: अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखिए। कितनी बारी चीजें होती हैं जो कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे पैरामीटर्स के हिसाब से ठीक होती, लेकिन कभी मन नहीं मानता। किसी नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल सकता है। पॉजिटिव आपका जो माइंडसेट है उसके साथ हर चैलेंज आपको आसान लगेगा।
0: सजिटेरियस धनुराशि।
1: एडवेंचर का मूड बन सकता है। एडवेंचरस ऐसा नहीं कि आप ट्रैकिंग में निकल जाएं, कुछ नया सीखने का प्लान कीजिए या फिर एक छोटी सी एक आउटिंग के लिए कुछ भी प्लान कर सकते हैं फैमिली के साथ। हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका देता है। आज क्या लिखने वाले हैं? प्यार की स्याही से।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे सामने आने वाला है। कंसिस्टेंसी ये बनाए रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज पूरी एनर्जी इसके बाद कल लगा मूड नहीं है। भाई आज किसी सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस आपके काम आ सकती है।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: क्रिएटिव आइडियाज ये अंदर मत रखो, बाहर निकाल कर कलम से लिख दो और उसके बाद पूरा प्लान बना लो। जो सोच रहे हैं उसे एक्शन में बदलने का वक्त आ गया है। बिलीव इन योरसेल्फ, यू गॉट दिस।
0: पाइसेस मीन राशि।
1: भाई दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस बनाकर रखना ये जरूरी है। आज किसी अपने से मिलकर ये बात करके बहुत अच्छा फील होगा। ग्रैटिट्यूड आपके दिन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देगा, जैसे म्यूजिक हमेशा 24/7।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: अमेजिंग आवाज है, नहीं जो कॉम्पोजिशन वो म्यूजिक है वो बिल्कुल फिट होता है ऐसे मौसम के अंदर जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश एंड बादल छाए, हर जगह नहीं लेकिन फिर भी द मूड इज ऑल सेट।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: अरे सुबह सुबह ना एक प्लानिंग होती है, जैसे सुबह उठते हैं तो अपने मूड को बनाना और पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाना, हाँ ये एक प्लानिंग होती है भाई। सुबह उठते ही काफ़ी लोग अपने फ़ोन के हाथ चिपक जाते हैं, उठते ही देखा कि क्या नोटिफिकेशन, और उसके बाद मूड में थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन। अच्छा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप 30 मिनट जब आप उठते हैं तो अपने फ़ोन को ना देखें, सोशल मीडिया से कनेक्ट ना हो, तो आपका मूड अच्छा रहता है और साथ में फोकस भी। इस टाइम में आप एक ग्लास पानी पी सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं और ये सब चीज़ें ना कमाल कर सकती हैं। याद रखिए जिस तरह आप दिन की शुरुआत करते हैं वैसे ही आपका पूरा दिन बीतता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें और ये सोच लें कि अगली मॉर्निंग आप क्या करने वाले हैं, कैसे शुरुआत करने वाले हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: देखिए दिन के बिजी स्केड्यूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप देखते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है लेकिन बीच में आपको किसी को अप्रिशिएट भी करना है. तुम सा नहीं है कोई. राइट, दैट्स द गोल्डन सेंटेंस. देखिए ऐसा होता है कि हर कोई काम करता है मेहनत, लेकिन अप्रिसिएशन मिल जाना तो डबल मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार. कर लो स्वीकार. देखो ऐसा है कि आप अगर टीम लीडर हो और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, हर दिन किसी ना किसी को अप्रिशिएट करना, चाहे उस टीम में से नहीं तो अपने किसी कलीग को या फैमिली मेंबर को, अरे अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. वो ये नहीं कि आप एक वैल्यू दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर एनीथिंग मटेरियलिस्टिक. एक इमोशन है, एक सपोर्ट है, इमोशनल, और फिर लगता है कि कोई तो है जो मेरी कदर करता है. राइट, सो किसी का दिन बनाइए, उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर तो आइए. जस्ट मेक इट हैपन एंड मेक अ डिफरेंस.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Okay, good morning. Time check. It's 10 a.m. वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का स्टूडियो में सुमेरा उनसे मिलते हैं नमस्कार
6: नमस्कार आदाब आलू के खेतीहरों को 50,000 रुपए के बजाय 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है कृषि उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल लामारी प्लेन सोफी लालोगा रिविया द्रागों वगैरह इलाकों के 64 खेतीहरों को प्रदान बीजों से प्राप्त समस्याओं के बाद ये फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से इन बीजों का आयात किया गया था जो करीब 40 दिनों के बाद सड़ने लगे थे। फागे के निरीक्षण के बाद ये पता चला कि ये बीज अच्छे नहीं थे, इसलिए सरकार ने सभी संबद्ध खेतीहरों को मुआवजा देने का फैसला लिया। उन 17 खेतीहरों को भी जिन्होंने 21 दिनों की अवधि के बाद खेती करनी शुरू की थी। आपको बता दें कुल 161 बीघा जमीनों के लिए 230 टन बीज बेचे गए थे और एक टन की लागत 20,000 रुपए थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक के एक दिन पहले वित्तीय क्षेत्र अपनी उम्मीद जाहिर कर रहा है। फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक लगाई जाएगी। मॉरिशस फाइनेंस की अध्यक्षा रुबीना तोजू के मुताबिक सबसे पहले अब तक के सफर को सराहना चाहिए, खासतौर पर एक नियमित ढांचे के आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन, भारत और अफ्रीका के लिए मॉरिशस का बतौर पुल की हैसियत रखना वगैरह। निवेशक इन सभी पहलुओं को सकारात्मक नजरिए और जायजे से देखते हैं। एसएमई चेंबर और छोटे व मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को एक खत भेजेंगे। एसएमई चेंबर के अध्यक्ष अजय विदेशी के मुताबिक एसएमईज की कई सिफारिशों को बजट 2026-2027 में शामिल नहीं किया गया, जैसे कोविड-19 के दौरान डीबीएम से लिए गए कर्जों के, जैसे छोटे व मध्यम उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के लिए एक मेकानिज्म का प्रस्ताव भी रखा गया था ताकि वे कर्ज ले

0: सकी वो हल ढूंढने की तला की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 मुल्कों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाई गई एक वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के लिए इंटरपोल, ऑपरेशन ग्लोबल चेन वगैरह का सहयोग मिला। कुल 2070 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। और फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सफर कल रात खत्म हुआ। स्पेन ने एक गोल करके पुर्तगाल को खेल से बाहर किया। बेल्जियम और अमेरिका का मैच आज सुबह पूरा हुआ। बेल्जियम ने 4-1 से अमेरिका को जबरदस्त शिकस्त दी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट दुब्रोई में 83 साल की 83 years old श्रीमती उमाबाई पांड्या, श्रीमती उमाबाई पांड्या पैदाइशी नाम भेकौ जो मीरा और चाची पांड्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे अनिल पांड्या के घर प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट दुब्रोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुब्रोई की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: बस मौका मिला उसके बाद थोड़ा सा भाग कर जल्दी से बाहर का नजारा देखकर एक बार फिर से वापस बैक इन द स्टूडियो बैक टू यू और म्यूजिक के साथ हम और आप जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती 10:11 7 जुलाई। वैसे अभी ठीक ठाक है, अगर बात करें बाहर के मौसम की, यहाँ पर तो थोड़ी सी बारिश हो रही थी लेकिन थिंग्स आर प्रीटी मच अंडर कंट्रोल। वैसे मजा आता है जब हर दिन कोई नया मौसम देखने का, आनंद लेने का मौका मिलता है। हर दिन वैसा ही रहे तो क्या हो रहा है, हर बारी कुछ चेंज होना जरूरी है बिकॉज नथिंग इज परमानेंट बट चेंज। तो उसे चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है और उसके साथ चलते रहोगे, अपने को भी बदलते रहोगे तो अच्छा है। कहते हैं कि अगर कदम से कदम मिलाकर आप भी वक्त की चाल चल रहे हैं तो यू आर इन लाइन विद द टाइम। टाइम की बात करें तो हम आप चलने वाले हैं 12 बजे तक। थोड़ी देर में आपके मैसेजेस, कुछ हाउस होल्ड देखो टिप्स और ये चाहूँ कि हमेशा मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, दिल में कोई बात हो तो हमसे ज़रूर कहें।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Morning.

0: your tickets at Oteo for Rise with Khun Kumer today.
1: RM2
2: Radio Musti. चलिए गानों के साथ साथ यहाँ पर कुछ डेडिकेशंस एंड दिस वन गोइंग आउट टू प्रीति और कहते हैं कि बस म्यूजिक के साथ लगता है ये सफर यूं ही कट जाएगा, जो भी दिल में दर्द है वो यूं ही कम हो जाएगा।

0: to Radio Musti. Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: बात करते हैं हम जब फैशन की, तो बहुत जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, जो भी आप पहनते हैं यू नीड टू कैरी इट, ये तो जरूरी है ही है। अब चाहे बहुत फॉर्मल हो या कैजुअल हो या फिर कॉलेज स्टाइल, आपका फैशन सेंस हो वो भी कमाल भाई। ऐसा होता है लेयरिंग तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती होती है, और जब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो ऐसे में जब ऑफिस जाते हैं तो AC ऑफ है और वहाँ पर थोड़ा वार्म, इट्स ऑल गुड, इसलिए एक लेयरिंग करना बहुत जरूरी है। टी शर्ट और उसके ऊपर एक हाफ प्रॉब्ली स्वेटर और उसके ऊपर एक डेनिम जैकेट, जो कि आपके जैकेट में जितने भी स्टिकर्स हैं या फिर आपकी एम्ब्रॉयडरी है उससे मैच करता है उसका कलर के साथ, तो लुक्स अमेजिंग। वहीं पर आजकल लोग काफ़ी ट्राई कर रहे हैं इवन विद येलो शूज़ या फिर वाइट स्नीकर्स, लेकिन आजकल जब मौसम ऐसा है जहाँ पर बरसात है और ये धूल मिट्टी साथ है, तो फिर वाइट स्नीकर आप समझ सकते हैं तो साफ करना काफ़ी मुश्किल। बस यही कि टी शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट या लाइट ओवरशर्ट ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी रहेगा और स्टाइलिश भी, जैसे स्टूडेंट ऑफ AMA था।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: RM2

ये जो मूवी थी बहुत कमाल की, ऐसा लगता है जैसे कॉलेज नहीं जा रहे, एक फैशन स्कूल में जा रहे हैं। काफी लोगों ने ये बात की, लेकिन बन गए इस मूवी से काफी सारे स्टूडेंट सुपरस्टार्स, आज भी कमाल का काम कर रहे हैं।

0: 102 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Right, ladies and gentlemen, हम तो चाहेंगे आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और दिल की बात हमसे कहें, बस थोड़ी देर में आपके मैसेजेस। Yes, it's all happening right here. आप हमारे साथ जुड़े हैं।
3: RM2 Radio Masti।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: आप कुछ मैसेजेस और यहाँ पे देखते हैं किसने किससे क्या कहा है। वैसे मॉर्निंग में कुछ मैसेज आते हैं जहाँ पर कोई किसी को गुड मॉर्निंग, कोई किसी को हैप्पी बर्थडे या फिर स्पेशल डे विश कर ही रहा है। सो गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम, अगला गाना तो अब्दुल अंसार भानो हमेशा की तरह। भाई कई लोग होते हैं जो कहीं भी जाते हैं म्यूजिक को साथ लेके जाते हैं। गुड मॉर्निंग, गरम गरम चाय का कप दिखाते हैं उसमें से स्टीम निकलती हुई। हो यालेश, वंडरफुल डे हेड। और वहीं पर नीता जी, गुड मॉर्निंग आपको भी हमारे साथ देने के लिए। ऑलवेज नाइस कि आपको अच्छे लग रहे हैं गाने। और वहीं पर कहते हैं अगला गाना स्पेशली टू ऑल फैमिली बिखाही है, और साथ में जूतन फैमिली है, मुसल मुसल महोदय में है, चलिए उनके लिए ज़रूर। नाउ से हैप्पी बर्थडे टू आमिशा। नहीं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं लेकिन प्लान क्या आपका, ये तो सोचना ज़रूरी है ना। कुछ स्पेशल करना ज़रूरी है क्योंकि हर कोई इतना बिजी होता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि आप अगर थोड़ा सा वक्त निकालें और कुछ प्लान बना लें तो उस बंदे के लिए कितना स्पेशल, जैसे आप फील कर देना अपने बर्थडे पर। स्वामीशा, आपको बहुत सारा प्यार। और ये है मुसलमान से दौदे से, और कहते हैं मामा फिया की तरफ से पापा है बॉबी, ब्रदर अनीश, और साथ में नानी बसंती है, और मामू रवि एंड सनी की तरफ से बसंती। नहीं, वो तो याद आ गया मुझे बस। और वहीं पर कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शालिनी, एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, और कम ऑन चलिए प्लीज अगला गाना अगर मौका मिले तो जरूर चलाना। यस, इज ऑल अबाउट प्लेइंग अ फ्री फ्लो ऑफ म्यूजिक 24/7।
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जाने का वक्त है नॉट टू फॉरगेट, अगला घंटा आपका इंतजार कर रहा है, सो नो मैटर यू आर, हम तो कहेंगे कि म्यूजिक इज नॉट दैट फार, ऐसे ही साथ देते जाइए, लेट्स एंजॉय द म्यूजिक कमिंग अप राइट नाउ, दिल को धड़काने के लिए
1: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट टक टक बॉलीवुड।

7th of July, Tuesday का then time check. It's exactly 11 a.m. थोड़ी देर में सुन पाएंगे हम संक्षिप्त समाचार. साथ जुड़े रहिए. It's happening right here on RM2.

0: सुमेर आगे स्टूडियो में से मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। आज राज्यसभा में विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में 1.4 बिलियन रुपए के एक्सपेंडिचर की जानकारियों पर आधारित रहेगा। जेलेजों को सभी आयातकों और ऑपरेटरों के नाम चाहते हैं और उन्हें दी गई रकम के बारे में भी मालूमात चाहते हैं। इसके अलावा विपक्ष नेता उन सभी मीठी पैदावारों की फहरिस्त को टेबल करने की मांग करेंगे जिन पर एक्साइज ड्यूटी पिछले 20 जून 2026 से लागू है। जोंगी सुया के सांसद रोशन जमन प्रधानमंत्री से ये पूछने वाले हैं कि सन 2024 से लेकर आज तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कितनी जांच कार्रवाइयां चलाई हैं और कितनी पूरी हो गई हैं तथा कितनों को सलाह के लिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया और उनका क्या हुआ। छात्रों के लिए 2 नए अंडर ग्रेजुएट वजीफे यानी छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। हालिया राष्ट्रीय बजट में इसका ऐलान किया गया था। इसके अलावा ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत की जाएगी ताकि छात्र प्रैक्टिस कर सकें। कैम्ब्रिज ने शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा कि ग्रेड 10 में SC टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किया जाए जैसे कृषि और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में। विदेश में चीन में दक्षिणी हिस्से में मेसक तूफान से एक जलाशय की दीवार टूट गई है और कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। 62,000 लोगों को विस्थापित किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। क्लियरफोन नंबर 3 फिनिक्स में 80 साल के 80 years old जनाब मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन जो चिबाई मेकानिसिया UBS के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज साढ़े बारह बजे इनके घर क्लियरफोन नंबर 3 फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए मस्जिद एल नूर फिनिक्स और फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुब्रॉय में 83 साल की 83 years old श्रीमती उमा बाई पांड्या पैदाइशी नाम बेकौ जो मीरा और चाची पांड्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 3 बजे

0: 15 बजे के बेटे अनिल पांड्या के घर प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुबॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जुबॉय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और आपको पता चल गया कि सब हो रहा है RM2 पर. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का. मौसम जब ऐसा हो ना तो गाने बिल्कुल फिट हो ही जाते हैं और आप 24/7 उनको एंजॉय कर सकते हैं. क्या बात कर रहे हो, आप भी कुछ कहना चाहते हो तो बस दिल के दरवाजे खोल दो, दिल से कुछ बोल दो.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, amazing family, radio की family. बस ऐसा होता है कि पूरे दिन बिजी रहते हैं. हाँ, ऑफिस, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस के बीच, लेकिन कुछ छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो आपके लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं. तो चलिए उनके साथ आगे चलते हैं. इनको कहते हैं लाइफस्टाइल मंत्रास या सिंपल टिप्स जो आपकी एवरीडे लाइफ को बना सकते हैं और भी हेल्दी, प्रोडक्टिव और साथ साथ में और पॉजिटिव. जरूरी है. जैसे हम कहते हैं कि बिफोर यू कैफिनेट यू नीड टू हाइड्रेट, इसके बाद हम अक्सर कहते हैं. हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन की शुरुआत चाय और कॉफ़ी से करते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर कप कॉफ़ी के साथ एक ग्लास पानी भी ऐड कर सकते हैं. बॉडी को थोड़ा हाइड्रेटेड रखना सिर्फ स्किन के लिए अच्छा नहीं बल्कि एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन, डाइजेशन के लिए. कभी होता नहीं कि थोड़ा सर में दर्द शुरू हो गया और लगता है कि यार ऐसा तो हुआ नहीं था, तभी तो ठीक थी. हाँ, वो आपके अंदर पानी की कमी हो गई ना. सो कभी कभी जो थकान लगती है वो सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से होती है. इसलिए डिहाइड्रेशन को मारो गोली, पानी पी लो स्लोली स्लोली.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसा अब काफ़ी सारे हमारे से लोग हैं जो कि मोटापे से डील कर रहे होते हैं. ये हो क्यों रहा है? ऐसे कई लोग कहते हैं कि आओ इतना तो खाते हैं लेकिन हो क्या रहा है. तो मैं बता दूं कि यहाँ पर होता ये है कि काफ़ी लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है. ये एक गंभीर हेल्थ कंडीशन हो सकता है. दिल की बीमारी, डायबिटीज, स्ट्रोक जैसी कुछ गंभीर स्थितियाँ बन सकती हैं. लेकिन घबराना नहीं, पहले ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा चेंजेस लाएँ. वो लोग जो डेस्क जॉब करते हैं, भाई दिक्कत ये होती है कि आप अधिकतर लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं. अब वो जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो फैट बनकर जमने लगती है. और कई लोग मानते हैं कि जिम में एक घंटा हो गया, भाई काफ़ी हो गया बैठ के आराम से. लेकिन रिसर्च क्या कहती है सुनिए तो. अरे लंबे समय तक बैठ कर काम करना अपने आप में एक अलग और बड़ा खतरा है. इसी वजह से मोटापे के अलावा ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज, दिल की बीमारी का भी खतरा होता है. इसलिए जैसे वक्त मिले थोड़ा घूम फिर के आए ज़रूरी है. हाँ, लेकिन मजबूरी बन गई कि आपको बैठना पड़ता है. हाँ, ये सच बात है. लेकिन चेंजेस, थोड़े से बदलाव आप ला सकते हैं. और वहीं पर काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि फूड डिलीवरी जो ऐप्स होते हैं, बटन दबाया, खाने को मंगाया, जो मन करे जब भी. हाँ, तो साथ ही लोग जो अपने खाने का चुनाव करते हैं ना, वो न्यूट्रिशनल बेस नहीं होता. वो दिखता जैसे उससे तो फास्ट फूड, हाई कैलोरी, ज़्यादा नमक, अनहेल्दी फैट्स वाला फूड इसको माना जाता है. और शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ती जाती हैं और फिर धीरे धीरे वजन भी. और वहीं पर स्लीप पैटर्न आपका, भाई ये सच माने तो काफ़ी लोग हैं जो अभी ठीक है वर्ल्ड कप चल रहा है लेकिन उसके बाद भी अपने स्क्रीन पर बैठे रहते हैं और काफ़ी समय निकल जाता है. इतनी सारी रील्स वीडियोस देखकर पता नहीं लगता है कि हो क्या रहा है. तो समाधान क्या है बताता हूँ ना थोड़ी देर में. ऐसा नहीं कि आप बस सोचें कि आज से खाना बंद. नहीं, खाना जारी रखिए. लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आप किस टाइम पर क्या कर रहे हैं. यू नीड टू गेट सम रेगुलरिटी इन योर लाइफ, थोड़ी सी सेल्फ डिसिप्लिन. बात करते हैं थोड़ी देर में.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: काश काली ऐसे ही कसम देकर कहानी पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं। इंसान जिसको जब सोना चाहिए वो सोता नहीं।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: भाई जिंदगी जहाँ पर फास्ट होती जा रही है कि आप बहुत तेज रफ्तार से आगे चल रहे हैं, खाने पीने का टाइम नहीं, इसलिए फास्ट फूड बस कभी भी ऑर्डर कर लिया। और भाई हम कहते हैं कि डेस्क जॉब्स हो गए हैं, आपका स्लीप पैटर्न बिगड़ चुका है, फूड डिलीवरी ऐप्स आ गए हैं कि जब जो मन करे वो आप मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसके चलते अब मोटापा एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज शामिल नहीं करनी, चाहे गार्डनिंग हो, घर की सफाई हो, कुछ भी हो, एनीथिंग फिजिकल, जैसे पसीना आ जाए और लगे कि आज वो मसल्स जो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हुई वो भी हो गई, तो बढ़िया हो गया। पहले की तरह इस मोटापे का समाधान सिर्फ डाइटिंग या एक्सरसाइज नहीं हो सकता, आपको ऑफिस के दौरान वो रेगुलर ब्रेक्स लेने होंगे, टहलो थोड़ा सा, हर दिन कम से कम 30-45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, फूड ऐप्स को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और हर दिन 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल बदलाव लेंगे लंबे समय के लिए आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप जो भी फैसिलिटीज है उनको अब्यूज़ ना करें। यहाँ पर मौका मिलता है कुछ एक्स्ट्रा करने का, गाड़ी की जगह साइकिल ले जाने का, साइकिल की जगह पैदल चलने का, तो जरूर करें।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: RM2 रेडियो मस्ती।
5: The time is brought to you by
6: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
5: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: Radio Musti.
7: North, South,
4: 103.5.
7: East, West,
4: 96.4.
7: Center,
4: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
4: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
8: घड़ी मिलाते चले दिन के ठीक 12 बजे हैं। सुधिया संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा। नमस्कार।
9: नमस्कार आदाब। अभी राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी है। विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में 1.4 बिलियन रुपए के खर्चों की जानकारियों पर आधारित रहा। जुलेजों का सभी आयातकों और ऑपरेटरों के नाम चाहते हैं और उन्हें दी गई रकम के बारे में जानकारियां चाहते हैं। इसके अलावा विपक्ष नेता उन सभी मीठी पैदावारों की फहरिस्त को टेबल करने की मांग कर रहे हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी पिछले 20 जून 2026 से लागू हैं। मंत्रालय ने सामानों का असेसमेंट किया है। अंतर्राष्ट्रीय दामों, फ्रेट, आयात, घरेलू खर्चों वगैरह को मद्देनजर रखते हुए मंत्री सीक्यूएन ने ये बातें कही हैं। कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट करीबी से निगरानी रख रही हैं। मंत्री सीक्यूएन ने कहा कि जुलाई 2025 से 6 जुलाई 2026 के बीच यूनिट ने 11,567 जगहों पर हस्तक्षेप किए हैं और 1,240 कंट्रावेंशन जारी किए गए हैं। सुया के सांसद रोशन जमन प्रधानमंत्री से ये पूछने वाले हैं कि सन 2024 से लेकर आज तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कितनी जांच कार्रवाइयां चलाई हैं और कितनी पूरी हो गई हैं तथा कितनों को सलाह के लिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और उनका क्या हुआ। सांसद रविराज बिचुक मोशन पासपोर्ट के संदर्भ में जानकारियाँ चाहते हैं। वे जानना चाहेंगे कि गए 5 सालों में मॉरिशस में जाली पासपोर्ट के कितने मामले दर्ज हुए और हर मामले में कौन से मूल के लोग रहे हैं। जबकि विपक्ष भी पादरियां जीवाल पेंशन सुधार के लिए कार्यरत माहिर आयोग पर प्रधानमंत्री से सवाल करने वाले हैं और जानना चाहेंगे कि अगर मेंबरों की नियुक्ति वापस ली जाएगी या नहीं, क्योंकि बजट 2026-2027 की पेशकश से पहले पायलट कमेटी की आखिरी रिपोर्ट को सुपुर्द नहीं किया गया था और वो भी क्यों। गए 26 मई 2026 को प्राइवेट सेकेंडरी एजुकेशन अथॉरिटी PSEA ने एक फॉर्म जारी किया था, एक विज्ञप्ति जारी की थी ये स्पष्ट करते हुए कि अब से निजी कॉलेजों के कर्मचारियों को किसी भी श्रमिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए इजाज़त की मांग करनी पड़ेगी और ये इजाज़त तब स्वीकार की जा सकती है जब मुनासिब वजह दी जाए। लेकिन इसके चलते यूनियन ऑफ प्राइवेट सेकेंडरी एजुकेशन एम्प्लॉयज़ के अध्यक्ष अरविंद भोजन ने इस फैसले को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। विदेश में चीन में दक्षिणी हिस्से में मैजक तूफान से एक जलाशय की दीवार टूट गई है। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। जोरदार बारिश की वजह से 62,000 लोगों को विस्थापित किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुब्रॉय में 83 साल की 83 years old श्रीमती उमाबाई पांड्या, श्रीमती उमाबाई पांड्या पैदाइशी नाम भिकौ जो मीरा और चाची पांड्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 3 बजे इनके बेटे अनिल पांड्या के घर

0: पर प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुबॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जुबॉय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 14 नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमान मोंट्रियल कोरोमां दिल में 70 साल के 70 years old श्री लक्ष्मी नारायण राम नारायण श्री लक्ष्मी नारायण राम नारायण जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। आर्थिकल 2 बजे कल 2 बजे इनकी पत्नी अमृता राम नारायण के घर नंबर 14 नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमां मोंट्रियल कोरोमां दिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंकबाओ की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। काली माई रोड कालबास में 55 साल की 55 years old श्रीमती गीता भूटन श्रीमती गीता भूटन पैदाइशी नाम माधव जो सतीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनके पति किशोर कुमार भूटन के घर काली माई रोड कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कालबास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। सेट क्वाजे मोटिनिया सुरीनाम में 64 साल के 64 years old श्री नेपाल सिंह भंजन श्री नेपाल सिंह भंजन जो राधा मोहन सिंह के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनकी पत्नी नंदी भंजन के घर सेट क्वाजे मोटिनिया सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। राजवानी स्ट्रीट मोंगू पॉम्पलेमूस में 86 साल की 86 years old श्रीमती कोसिला बिरंज पैदाइशी नाम गरोबी जो टोंसनाक्स के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे राज बिरंज के घर राजवंती स्ट्रीट मोंगू पॉम्पलेमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंगू की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। त्रोआ बुटीक ट्रियोले में 70 साल के 70 years old श्री परमानंद बुधराम जो फुफुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनकी पत्नी चंद्रावती बुधराम के घर त्रोआ बुटीक ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉम्पर्मा महात्मा गांधी रोड त्रियोले की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: News on NBC Play, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
3: RM2. Radio Musty.

0: अकेले हम बिल्कुल नहीं।
1: रेट्रो रिदम।
0: हम अकेले होती अगर आप जैसे साथी हम सफर ना होते तो आप हैं तो डरने की क्या बात है। अरे बाप रे बाप, 12:12 है। विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग, इवनिंग नहीं आफ्टरनून, क्या नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग टीवी देख रहे थे थोड़ी देर पहले फुटबॉल मैचेस जो हाइलाइट्स थे ना, जब इंग्लैंड की जीत हुई कल, आहा अभी तक वो जो नज़ारा है अभी तक दिमाग में है। लेकिन पोर्चुगल की हार हो गई, दैट्स फुटबॉल, दैट्स मैच, दैट्स गेम, किसी की जीत किसी की हार। आप भी अपने फेवरेट टीम को फॉलो करते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे, लेकिन अभी के लिए आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़ जाए क्योंकि अभी से लेकर दिन के 2 बजे तक नीतू आपके साथ रहने वाली है। सो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम सभी को। कैसे है, ठीक ठाक? रेडी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है आप और रेडी है, एकदम सेट है आपके मैसेजेस के लिए। टू सेंडिंग ऑन 5499-1294 पर। सो लेट मी विश यू ऑल बोन अपेटी, शुभ आहार, और खाते खाते गानों का आप मजा लेते रहिए। तो जहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नॉट टू फॉरगेट, हाँ नंबर वो ही है 5499-1294। ले चले हैं आपको इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक और 60s, 70s, 80s, कुछ 90s के गाने, बस आपके दिल को सहलाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत है भाई।

0: True Rhythm.
1: जी हाँ, दैट वॉज धरती का ही पुकार, फिर फिल्म से लिया गया मुकेश और लता जी की आवाज़ें, लवली सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स आपके नाम टिल 2 PM. सो 5499 1294 पर थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए. चलिए देखते हैं कौन हमारे हम सफ़र बने हुए हैं. हेलो मॉरिशस, पेरिस से मिस्टर डेव. बहुत गर्मी है उधर, 35 degrees, और उमामा यहाँ पर ठंड है, मज़ा आ रहा है. और कभी इधर ठंड, वहाँ सर्दी, कभी उधर गर्मी, इधर ठंड, दैट्स मौसम. बस अडप्ट होना पड़ता है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. हाँ, आपके पूरे परिवार के नाम लवली गाने चल रही है. थैंक यू बेटी दिया के नाम आपके लिए पापा दीपक, और आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं, बेटी से बहुत प्यार करते हैं. पापाज ऐसे ही होते हैं, बेटियों से अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, है ना. ललिता जीतन, लंच टाइम विथ कॉलीग्स, सो बोना पीछे शुभाहार, एंजॉय योर फूड एंड गुड म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर अगला गाना आपके लिए भी चलाते हैं अब्दुल एंड सायरा बानू, और आपके सभी परिवार के नाम. क्या बात है, क्या पिक्चर मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर. कच्चूपुरी आशा बोको बोना पीछी, ये है आपकी तरफ से यालेश शाम फैमिली सोगी नाम से. सो एन्जॉय योर फूड माई डियर. और कविता, आप हो फ्रॉम मोचिदा, जहाँ पर जोरों की बारिश हो रही है, ठंडो दांत कांप रही है, कह रही है अभी कुछ तापमान में गिरावट आए हैं, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है. और कविता, आप झील के उस पार वाला गाना सुनना चाहती हैं लता जी का गाया हुआ. चलिए ये गाना चलते चलते आपके नाम.

सोचने वाली बात है, ऐसे मौसम में झील के उस पार कौन इंतजार करे भाई, कहीं बैठ जाए आराम से, ऑफिस में, दुकान में, कहीं बाजार में होंगे, व्हाटएवर यू माइट बी, बैठकर आप आराम से गाने एंजॉय कीजिए ना। ऑलराइट 12:30, बोन अपेटी, बोन कुराज टू ऑल दोस एट वर्क, एंड अगर इस वक्त आप आराम फरमा रही हैं इन गानों के जरिए, ठहरे क्यों, हम तो कहेंगे ठहर ही जाइए, गाने को मस्त एंजॉय कीजिएगा 5499-1294 पर। अलका याग्निक एंड कुमार सानू टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन टू द 90s।

सच अ लवली गाना 9 मिनट का गाना भाई और इस फिल्म के जितने भी गाने रहे कंपोज बाय नन अदर देन अनु मलिक मैसिव हिट रहे अलका याग्निक कुमार सानू दैट वाज ऑफ कोर्स इम्तिहान फिल्म का 1994 फिल्म इम्तिहान के गाने और आपको अच्छे लगे थैंक यू सो मच वैसे ये जो मूवी रही इम्तिहान इट वाज इंस्पायर्ड बाय 1967 क्लासिक मूवी हमराज रिमेंबर हमराज पुरानी मूवी और इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही मशहूर उतने ही फ्रेश लगते हैं बस बार बार सुनने का मन करे तो रेडियो मस्ती के साथ जुड़ जाए 12:39 ऑलरेडी और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रही है कह रहे हैं गुड आफ्टरनून नीतू गुड आफ्टरनून कविता राम खिलावन न्यू ग्रोव से हैं आपके नाम पूरे परिवार के लिए नमस्ते जी भाई महन आज विजल बैठे बैठे गानों का मजा ले रही है थैंक यू बहुत धन्यवाद अभिमान फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं कौन सा मैं देखती हूँ तब तक आप इसको एंजॉय कीजिएगा दिस वन स्पेशली गुजार टू ऑल द फैंस ऑफ रफी साहब खास तौर से द ही मैन अभी बेटे पर फिल्माया गाना आपने सुना अब पापा जी यानी कि धर्मेंद्र साहब पर पिक्चराइज्ड

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: सबसे बेस्ट नशा है प्यार का नशा या फिर गीतों का नशा जो बिन पे ये चढ़ रहा है. थैंक यू सो मच मिस्टर गायतों. ये वाला गाना आपके नाम फ्रॉम द मूवी तोहफा एसपी बाला सुब्रमण्यम एंड आशा भोसले की आवाजों में. यही गाना आपके लिए भी ध्यानी सी चिन ऑफ सेबास्टोपोल एंड विजया आप रहती है बाकवा स्पेशली फ्रॉम पृथ्वी.

0: Retro Rhythm.
1: बहुत ही लवली गाना दिल को छू लेने वाला ना, सोलफुल वो भी आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ें. थैंक यू सो मच. यहाँ पर कह रहे हैं कि ये गाना हमको पसंद आया, वो गाना जो आपने चलाया. भाई सब गाने तो आप ही की पसंद की हैं. थैंक यू, हम कहेंगे आपको. एंड सेबास्टोपोल से है विद्यानी सिचन, आपके नाम ये तो हमने चला दिया था. नेक्स्ट गाना आपके लिए वैसे अभिजीत मेनिल से साथ दे रहे हैं, छलकाए जाम. ये गाना आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आपने गाया था ना. हाँ, थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर है कौन, सुरेखा कथ कोको से. थैंक यू सो मच माय डियर. प्लीज डू नॉट फॉरगेट माय भाई मनोज किरुधर, साइलेश एंड संजीव. हम कैसे भूलेंगे भाई. यहाँ पर जितने भी लोग काम पर हैं, कोंगुमा से हैं सुया बिहारी, पतिलाल देव वो काम पर हैं, और जितने भी फार्मर्स हैं सबको बों को आज बस भी लंच टाइम. सो आपको कहेंगे बोनापिची एंड आप बिरयानी खा रहे हो. ओके, बोनापिची आपको भी. ममा शारदा बगन दीदी अनिता एंड कुंगुमा से सब परिवार. हाय लवली नीतू, मेरे को लवली बोला, थैंक यू सो मच. गायत्री है फ्रॉम फोर्टवीस, आपके नाम आइडिया आपके पूरे परिवार के लिए. एंड ये अगला गाना किसी ने इस गीत की फरमाइश की थी, बाय महेन आपने ना.

0: जया बच्चन को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जबकि एस डी बर्मन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड इस फिल्म के जितने भी गाने हैं आज भी कहते हैं ना अविस्मरणीय बस इनको आप एंजॉय करते रहे और इन गानों के जरिए अपनी लाइफ को सेट करते रहिए 5499-1294 पर
1: रेट्रो रिदम
2: RM2

इसमें कोई राज नहीं है क्योंकि बस एक बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, उसके बाद चल 2 PM ये सदाबहार गानों का सिलसिला जारी रखेंगे, साथ दीजिएगा।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Ek baja hai. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे याचना. नमस्कार आपको.
4: नमस्कार नीचू शाह. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. आज राष्ट्रीय सभा के कार्य शुरू हुए. प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड पर केंद्रित रहा. व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि इस फंड के लिए निर्धारित शुरुआती 1.4 बिलियन रुपये में से 710 मिलियन रुपये पहले ही योग्य ऑपरेटरों को जारी किए जा चुके हैं. 366 मिलियन रुपए की बकाया रकम पर अभी भी काम किया जा रहा है, जबकि 280 मिलियन रुपए बेकरीज को प्रदान किए जा चुके हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड एक निश्चित राशि वाली सब्सिडी है जो कई खाद्य उत्पादों पर लागू होती है. ये व्यवस्था अगस्त 2025 में शुरू की गई थी. इसके तहत योग्य ऑपरेटर मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बकाया रकम की अदायगी की मांग कर सकते हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर चल रहा है. कल स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराया, जबकि आज यूएसए का सामना हुआ बेल्जियम से और बेल्जियम की टीम बाजी मार गई भारी जीत के साथ. स्कोर रहा बेल्जियम 4 और यूएसए 1. आज रात 8 बजे अर्जेंटीना खेलेगा इजिप्ट के खिलाफ. राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच खेला जाएगा रात 12 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच. विदेश की खबरों में चीन के ननिंग इलाके में मेसाक नामक जोरदार तूफान के बाद एक बांध टूट गई, जिसके कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है. पानी की भारी प्रवाह में ये लोग बह गए, जबकि नदी के आसपास रहने वाले 62,000 लोगों को हटाया गया. बांध के पास एक पूरा गांव तबाह हो गया है. वहां हाई अलर्ट जारी किया गया और अधिकारियों ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. नंबर 7 रू अलेक्सांड्रा दुबॉय में, नंबर 7 रू अलेक्सांड्रा दुबॉय में श्रीमती उमा बाई पांड्या, श्रीमती उमा बाई पांड्या जो आजी मीरा और चाची पांड्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुपहर तीन बजे उनके मकान नंबर 7 हुई अलेक्सांड्रा दुबॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुबॉय की ही श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुडे 8:30 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है.
5: NBC Radio.TV.
6: Retro Rhythm.
0: RM2.

आग तो भर ही जाती है जब ऐसी मधुर आवाजें आती हैं। वीर लता जी, किशोर कुमार, मुकेश, रफी साहब, बस चले गए अपने ऊपर, अपने जमाने में चले गए हैं, छोड़ गए ऐसे लेजेंडरी सॉन्ग्स। दैट वाज इजाजत फिल्म का वो ही गाना, और ऐसे बारिश के मौसम में ऐसे गाने मस्ट फिट हो जाते हैं, है ना। लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल इफ यू आर ड्राइविंग, ड्राइव कर रही है तो आप सेफली ड्राइव कीजिएगा। एक छोटा सा पैगाम मैसेज ऑन 5992 9 और जहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस इस गीत के बाद वंस अगेन टेकिंग यू इन द गोल्डन एरा, लता जी तलत महमूद की आवाज़ें। कभी कभी मुड़ मुड़ के देखना वापस अच्छा लगता है, ताकि उन यादों को भोले से भी भूल ना पाए। वैसे कभी भूल तो नहीं पाएंगे, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। रूप की रानी, नहीं मैं तो शुरुआत कर दी मैंने।

इस मूवी में नजर आए थे अजय देवगन एंड तब्बू. ये है हकीकत फ्रॉम द 90s, स्पेशली 1995 का गाना. वज़ा टू ऑल द 90s लवर्स, 1:16 होने वाले हैं. वंस अगेन बोन अपेची टू यू वो शुभाहार. एंड जहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सफर बने हुए हैं ऑन 5499-1294. थैंक यू सो मच. आप ही गाइए.

0: व्हाट अ लवली गाना, कितना सोलफुल म्यूजिक है और मेलोडी उसमें कूट कूट पर भरे हुए है, वो भी रफी साहब की आवाज में.
1: रेट्रो रिदम,
0: एक अनयूजुअल लव स्टोरी जिसमें ना कोर्टशिप जैसे कहते हैं, वो मानेगी वो नहीं मानेंगी, इधर भागना भागना, बस सिंपलिसिटी से बनाए गए एक खूबसूरत मूवी जिसके गाने लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने सजाए थे और आज भी सुनकर इतना अच्छा लगता है. दैट वाज रफी साहब वर्जन, जिसका एक वर्जन और भी है लता जी का, और लता जी का गाया हुआ वो भी गाना आई बहार को हम बांट ले. बस यही कोशिश में लगे रहते हैं कि हर रोज सुबह शाम रात इन गानों के जरिए आपके दिल में थोड़े से बाहर हम ले आए, खुशियां ले आए. 126, चले आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैसेजेस हैं. ऑलराइट, यहां पर साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड कमल है फ्रॉम वाकवा, कहते हैं बाप रे वाकवा में इतनी ठंड, कभी धूप कभी बारिश, वैसे मौसम जैसा भी होगी, अभी गर्मी आएगी तो कंप्लेन करेंगे हाय हाय गर्मी, अभी ठंड है उसको आप एंजॉय कीजिए, बस अपना ख्याल रखिएगा. एंड द नेक्स्ट गाना गुजार टू यू टू, एंड आई मीन जितने भी हमारे लिसनर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सात समुंदर पार, और आप ही हमारे साथ हैं. रवि, रवि कहते हैं कि यूके में काफ़ी गर्मी है, सो पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं गानों के जरिए, दिल को ठंडक महसूस हो रही है. एंजॉय द नेक्स्ट वन.

0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez. À la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: RM2, Radio Masti.
2: तेज हवाएं बह रही हैं, कहीं धूप कहीं बारिश, लेकिन गीतों की बारिश में हर कोई भीग रहा है. थैंक यू सो मच. और यहाँ पर है कौन भी दूषी फ्रॉम गोजिल, और बस आपने गाने की फरमाइश की है लेकिन फिल्म का नाम पता नहीं. चलिए मैं देखती हूँ कौन सा गाना सुनना चाहती है. इट्स रेनिंग विद फास्ट स्ट्रॉन्ग विंड, अपादू फैमिली खुशनुआ से. चलिए अपना ख्याल रखिएगा. दिस वन स्पेशली फॉर यू. आप है कौन? आज विजल रेशमा एंड राम की सुन फैमिली. सुल्फेगिनु वाकवासी है मिष्टी हिमाक्षी हवी आशीष और आपके पूरे परिवार के लिए. दिस वन इन द वॉइस ऑफ साधना सरगम. तेरे दर पर सनम आए हैं हम साथ देने के लिए. थैंक यू हमको अपनाने के लिए. दिल से आपको थैंक यू सो मच.

0: आप जब भी बुलाएंगे, प्यार से दिल से पुकारेंगे, तब तब हम चलते आएंगे। बस आपका साथ हो, आपका प्यार हो, आपका अपनापन हो, और क्या चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। 1:40 हो रही है। ये वक्त इतना जल्दी क्यों बीत रहा है भाई? जब अच्छा वक्त आता है तो जल्दी बीत जाता है, क्योंकि प्यारे प्यारे अच्छे लोग जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच।
1: रेट्रो रिदम RM2

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.
2: यादें ताज़ा हो रही है, यही तो हमारा मकसद है कि इन यादों के ज़रिए बस आपके दिल को भी सुकून आए, मौज मस्ती में रहें, आप इन गानों को कभी ना भूलें। That was of course महबूबा संगम फिल्म का सदाबहार गाना। अभी के लिए विदुषी आपने मांगा था

ये गाना किस फिल्म से है? आई डोंट नो द फिल्म. द फिल्म इज जैसे को तैसा. रीना रॉय एंड जितेंद्र इसमें नजर आए थे. और ये गाना तो मस्त बिंदास एकदम है. जब भी बारिश होती है तो आप भी एंजॉय कीजिएगा. लेकिन हाँ, बीमार वगैरह मत होइएगा. हाँ, और यहाँ पर हेलो माई दीदी, आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ वेरी क्लासिक किशोर कुमार वाला गाना टू माई लवली वाइफ भीमला विदेशी. आज वो 55 ईयर्स की हो गई हैं. तो आपकी तरफ से मिस्टर सुदेश, बेटी मेनका, बेटा निखिल ऑस्ट्रेलिया से, ग्रांड डॉटर यानिका न्यू ग्रोव से विदेशी परिवार की ओर से, एंड ऑफकोर्स रेडियो मस्ती परिवार की ओर से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं.

0: रेट्रो रिदम।
1: बस मौका तो हम सबको देते हैं कि हर कोई अपने दिल की बात जाहिर कर दे, जारी मोहब्बत कर दे। ऑन 5499 1294 नहीं तो टाइम टू से बाय बाय 1:54। ये दो घंटे बहुत कम है ना ऐसे गानों के लिए, लेकिन चलते चलते विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर दर्शना, आपके बिलवर हबी निर्लेश की तरफ से। और आप कहते हैं यू आर लाइक फॉर्चुनेट टू हैव हिम इन योर लाइफ, तो ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, जुग जुग जियो, फूलो फलो और समथिंग समथिंग जो भी हो, बेस्ट विशेस आप दोनों को। ऑलराइट, खुश रहो। और चलते चलते यही गाना आपके नाम पति विमल, बेटियां हर्षा श्रेया आपके लिए, और खास आपके नाम आशा जी। और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप सब

की ब्लेसिंग्स आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। सो मुलाकात होगी कल, हाँ जी कल तो है, कल नहीं वेंसडे को नहीं लेकिन थर्सडे को जरूर होगी 12 से 2 के बीच। टिल देन टेक केयर, हमारी बात थोड़ी देर में परी आ गई, आ जाएंगी विद बॉम्बे टॉकीज। हाँ ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।

0: રેડિયો મસ્તી
1: નોર્થ સાઉથ
0: 103.5
1: ઈસ્ટ વેસ્ટ
0: 96.4
1: સેન્ટર
0: 99.4
2: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Time check 2 p.m. एक बार फिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज राष्ट्रीय सभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड पर केंद्रित रहा। व्यापार मंत्री माइकल सिक्योन ने बताया कि इस फंड के लिए निर्धारित शुरुआती 1.4 बिलियन रुपये में से 710 मिलियन रुपये पहले ही योग्य ऑपरेटरों को जारी किए गए हैं। 366 मिलियन रुपये की बकाया रकम पर अभी भी काम चल रहा है, जबकि 280 मिलियन रुपये बेकरीज को प्रदान किए जा चुके हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड एक निश्चित राशि वाली सब्सिडी है जो कई खाद्य उत्पादों पर लागू होती है। ये व्यवस्था अगस्त 2025 में शुरू की गई थी। इसके तहत योग्य ऑपरेटर मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बकाया रकम की अदायगी की मांग कर सकते हैं। इन दावों की जांच के बाद ही संबंधित राशि जारी की जाती है। मेटा की ओर से व्हाट्सएप को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना बनी हुई है। बहुत जल्द व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन नंबर शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बदले अब यूज़र नेम की संभावना जोड़ी जा रही है। गोपनीयता के लिए भले ही ये बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन सुरक्षा और अन्य पहलुओं को लेकर इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉरिशस के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में लगभग 4,600 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बजट 2026-2027 में छुट्टियों के दौरान विदेशी छात्रों के लिए काम करने की अनुमति को सप्ताह में 20 घंटे से बढ़ाकर 30 घंटे कर दिया गया है। बजट 2026-2027 में इसका ऐलान किया गया। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने में छात्रों की मदद करना है। विदेश में चीन के नानिंग इलाके में मेसाक नामक तूफान के बाद एक बांध टूट गया, जिसके कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। पानी का की भारी प्रवाह में ये सभी लोग बह गए, जबकि नदी के आसपास रहने वाले 62,000 लोगों को हटाया गया है। इलाके में हाई अलर्ट जारी है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर सात अलेक्सांड्रा स्ट्रीट जुभॉय में 83 साल की 83 years old की श्रीमती उमाबाई पांड्या जो मीरा और चाची पांड्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान नंबर 7 प्रिंसेस अलेक्सांड्रा स्ट्रीट जुभॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। नंबर 90 सीतेला घरमा सैंपिया में 82 साल की 82 years old की मिसिज बीबी झुलनिसा कोडाबकस पैराशी नाम झुमन और जो काला कुंफी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम पौने छः बजे उनके मकान नंबर 90 सीतेला घर मौसैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सियाकोस्तान सैंपिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 8:15 PM। नंबर 47 रामगुलाम स्ट्रीट सेंट क्वामे 31 साल के 31 years old के श्री महेश्वर आकाश तिलक जो आकाश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2:30 बजे उनके मकान नंबर 47 रामगुलाम स्ट्रीट सेंट ख्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। रा रोड मोतायोगी मोका में 74 साल के 74 years old के श्री अर्जुन दुर्गाचरण सुका की मृत्यु हो गई है।

0: कर थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके मकान रॉयल रोड मोतायोगी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Mustis.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: फ्रेंड्स यहां पर 2:08 हो गए हैं आपका वार्म वेलकम कर रहे हैं हम ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती बरसाती मौसम सर्दियों वाली दोपहर और आ गए हैं आपके लिए लेकर बी राउंड की गर्मागर्म अपडेट मैं हूं परी आपके साथ साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 पीएम और कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चलाते रहेंगे एंड ऑफ कोर्स बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे तो आप भी साथ दीजिए ऑन 5499-1294 अगर आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं स्वीट मैसेजेस फॉर योर लव्ड वंस रहेगा इंतजार ऑन आवर मैजिकल नंबर
4: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
3: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2
2: Radio Musti

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स 2:20 हो गए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और RM2 रेडियो मस्ती बात करने वाले हैं दलजीत दोसांझ उनकी फिल्म सतलज इन दिनों विवादों में घिरी है OTT से हटाए जाने के कारण ये चर्चा में है और IT रूल्स 2021 के तहत इस फिल्म को OTT से हटाया गया है क्या है नियम चलिए यह आपको बताते हैं फिल्म सतलुज को OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर आए हुए दो ही दिन हुए थे और इसे हटाने का आदेश दे दिया गया है फिल्म पर IT रूल्स 2021 के पार्ट 3 का पालन ना करने का आरोप लगाया गया है और क्या है ये नियम OTT से इसका क्या लेना देना विस्तार से आपको बताएंगे सो आपको बता दें OTT कंटेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन CBFC के दायरे में नहीं आता है इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स 2021 के पार्ट 3 के नियमों तहत रेगुलेट किया जाता है एक सरकारी अधिकारी ने PTI को बताया कि फिल्म सतलज ने के मेकर्स ने 2022 में इसके ओरिजिनल टाइटल पंजाब 95 के तहत सेंसर जो सर्टिफिकेशन है इसके लिए अप्लाई किया था लेकिन उन्हें सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए 127 कट्स को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था और इसकी रिलीज को रोक दिया गया था अधिकारी ने आगे कहा कि फिल्म मेकर्स ने सुझाए गए कट्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और आखिरकार उन्होंने नए टाइटल सतलज के साथ OTT पर चुपचाप फिल्म को रिलीज कर दिया OTT सेंसर बोर्ड के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता है और यस OTT जो है वो सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और जब ये मामला सरकार के सामने आया तो Z5 प्लेटफॉर्म से इसे हटाने का आदेश दे दिया गया ये निर्देश सुरक्षा चिंताओं के कारण दिया गया और OTT प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस का पालन ना करने की वजह से ऐसा किया गया है अगर मेकर्स फिल्म को थिएटर्स और OTT पर रिलीज करना चाहते हैं तो उन्हें तय नियमों का पालन करना चाहिए सो अभी के लिए दलजीत दोसांझ की ये फिल्म तो आ गई है एकदम कह सकते हैं दैट सबकी नजरों में आ गई है ये फिल्म क्योंकि पहले ही दलजीत दोसांझ ने बताया था कि जब ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी तो शायद इसे हटा दिया जाएगा और बिल्कुल वही हुआ क्योंकि शायद वो जानते थे कि जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो शायद नियमों के तहत नहीं आता है और इसी के चलते सतलज को अभी के लिए OTT से हटाया गया है अब अगर ये सेंसर बोर्ड यानी कि जो भी कट्स उन्हें सुझाए गए हैं वो उसके बाद इस फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं सो इसके लिए तो उन्हें करना होगा थोड़ा सा इंतजार लेकिन थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर हुए हैं यह है दलजीत दोसांझ के फैंस एंड वेल फ्रेंड्स आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए हम लेकर आए हैं बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती
3: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: So, well, अभी के लिए हम दलजीत दोसांझ के फैंस को ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेंगे उन्हीं की आवाज में ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक आप सभी के लिए फ्रॉम द फिल्म क्रू हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं मैं हूं परी आपके साथ इट्स योर बॉम्बे टॉकीज आप साथ निभा रहे हैं सो योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499 1294 पर अभी के लिए एंजॉय दिस वन

ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, आज मौसम काफ़ी आँख मचोली खेल रहा है. कभी बारिश, कभी खिली खिली सी धूप, ये क्या हो रहा है. मौसम भी आज थोड़ा सा बेईमान हो रहा है. लेकिन वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए तो आफ्टरनून को हम सजा रहे हैं बी टाउन की अपडेट्स के साथ. मैं हूँ परी, इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. चलिए बात करते हैं खुशी कपूर और साथ में आपको बता दें दैट फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर 6 जुलाई यानी कि कल वो शादी के बंधन में बन चुके हैं. और उनकी बहन खुशी ने अंशुला की शादी की कई तस्वीरें शेयर की है और साथ ही एक इमोशनल नोट भी उन्होंने लिखा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी कपूर ने अपनी बहन अंशुला कपूर की शादी की कुछ बेहद खूबसूरत और इमोशनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. और इन तस्वीरों में खुशी अपनी ब्राइड्स मेड की जिम्मेदारी निभाती नजर आ रही है. लेकिन क्या आपको पता है कि खुशी ने अंशुला की शादी में कौन सी खास रस्म निभाई. चलिए दोस्तों आपको बता दें दैट खुशी कपूर ने शादी की सिंदूर रस्म की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दूल्हे रोहन ठक्कर अंशुला के माथे पर सिंदूर लगा रहे हैं और अंशुला मुस्कुरा रही है. इसी दौरान खुशी और जानवी कपूर अपनी बहन के पास खड़ी उनकी मदद करती नजर आ रही है. एंड दैट वाज अ वेरी वेरी स्वीट पिक्चर जो उन्होंने शेयर की है. साथ ही खुशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अंशुला की शादी की कई और शानदार तस्वीरें शेयर की. एक तस्वीर में जानवी कपूर और खुशी कपूर अपनी बहन दुल्हन बहन अंशुला के साथ पोज देती नजर आ रही है. वहीं एक तस्वीर में जानवी और खुशी बहन अंशुला को प्यार से गले लगाती हुई नजर आ रही है. और एक तस्वीर में अंशुला हंस रही है और उनके साथ उनके भाई अर्जुन, उनकी बहन खुशी और जानवी भी हंसते मुस्कुराते हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. खुशी कपूर ने अंशुला की शादी की इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इन तस्वीरों के साथ खुशी कपूर ने अंशुला और रोहन के बारे में कैप्शन में लिखा एंड देन दे गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पिक्चर. और ये हम जानते हैं दैट कुछ साल पहले की बात की जाए तो जानवी कपूर, खुशी कपूर, अर्जुन कपूर और अंशुला के बीच के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे. लेकिन नाउ देयर इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बॉन्ड, अ बिग हैप्पी फैमिली जो शामिल हुई

अंशुला की शादी में एंड बहुत सारी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही हैं ऑन इंस्टाग्राम. सो वेल, अभी के लिए तो खुशी कपूर अपनी बहन की शादी की सेरेमनीज एंजॉय करती नजर आ रही है और साथ ही पूरा कपूर खानदान इसे एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है. और चलिए दोस्तों, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं सो आपको भी एंजॉय करवाएंगे कुछ प्यारे प्यारे गानों के साथ. 2:35 साथ दे रहे हैं आप भी. नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

सो वेल, अभी के लिए जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिस वन गोज आउट फॉर यू नानी शोभा वालिद प्रेत से, आप भी हमारा साथ दे रही हैं, गोज आउट फॉर यू, फॉर रोनीस, फॉर शनीश एंड सभी हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड है, वो वंडरफुल टाइम आपके लिए कुछ लेटेस्ट बॉलीवुड ट्रैक्स एंड लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस. 5499 1294 पर.

0: Cheese.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: फ्रेंड्स अब बात करते हैं अमित राय जो अपनी अगली फिल्म ओ माय डॉग लेकर आ रही हैं। इससे पहले उन्होंने ओ माय गॉड 2 का डायरेक्शन किया था और उनकी नई फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में इंसानों और कुत्तों के बीच बिना शर्त प्यार और वफादारी की कहानी की झलक नजर आती है। टीजर की शुरुआत अमिताभ बच्चन के मशहूर गाने मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो से होती है जो तुरंत पुरानी यादों को ताजा कर देती है। साथ ही कहानी की मासूमियत अपनापन और इमोशनल गहराई को खूबसूरती से दिखाती है। ये फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म ओ माय डॉग में माही राय, पंकज त्रिपाठी, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बारू और विजय मिश्रा नजर आएंगे और इस फिल्म में 250 से ज्यादा कुत्ते, ओ माय गॉड 250 से ज्यादा डॉग्स नजर आने वाले हैं इस फिल्म में। और इस फिल्म का एक जैसे फिल्म एक छोटे बच्चे और कुत्ते के बीच के खूबसूरत रिश्ते को दर्शाती है और एक दिल छूने वाली कहानी ये नजर आती है। ओ माय डॉग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्यार, दोस्ती, दया, करुणा जैसे विषयों को दिखाती है और 250 से ज्यादा कुत्तों को भी शामिल करती है। ये फिल्म इंसानों और जानवरों खास तौर पर कुत्तों के शांतिपूर्ण जो को एक्सिस्टेंस है उसे बढ़ावा देती है। और ये तो हम जानते हैं दैट कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक प्रॉब्लम उन्होंने बताई थी दैट कुत्तों को वहाँ पर रहना नहीं चाहिए जहाँ पर इंसान रहते हैं। और इसके बाद एक बड़ा सा डिस्कशन छिड़ गया था और कोर्ट में भी ये मामला चला गया था। एंड ये तो हम जानते हैं कि जो पेट लवर्स होते हैं, जो एनिमल लवर्स होते हैं, वो जानते हैं दैट ये इतने भी खतरनाक नहीं होते हैं। प्यार के बदले तो ये बस प्यार ही देते हैं और शायद यही दिखाया गया है इस फिल्म में ओ माय डॉग जो रिलीज होने वाली है ऑन 31 जुलाई। चलिए दोस्तों आप साथ दे रहे हैं सो नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499124 पर बार बार लगातार आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि आपके मैसेजेस हमारे लिए है खास एंड स्पेशल। लेकर आएंगे इसे ऑन हमारे प्यारे रेडियो स्टेशन जहां पर शेयर करेंगे आपकी गुड विशेज आपके अपनों के साथ। सो नॉट टू फॉरगेट साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। ये है आपका बॉम्बे टॉकीज़।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Musti

0: Oldies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: जो वादा किया वो निभाएंगे, बिल्कुल आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आपके अपनों तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर कहते हैं गाना हो जाए फॉर फ्रेंड लीना बंधु एंड स्वीट पिंग हैप्पी बर्थडे, दैट्स कमिंग फ्रॉम टिंकी। भेजा है आपके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेस ऑन

योर स्पेशल डे, हैप्पी वाला बर्थडे. ये है हमारे पूरे टीम की ओर से गुड विशेस आपके नाम. एंड सतीश जी, साथ दे रहे हैं आप रोज बेल से लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. और अगला गाना आप अपने लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, बिल्कुल, वी विल हैव अ स्वीट सॉन्ग डेडिकेट करेंगे आपके नाम. हैव अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ. चलिए, यहाँ पर वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग मैसेज. और वेल, यहाँ पर आपके इस मैसेज को हम आपकी ममा तक जरूर पहुंचाएंगे. थैंक यू सो मच वंदना, वी गॉट योर मैसेज एंड इसे हम बिल्कुल सेव कर रहे हैं. साथी कहते हैं, बरसाती मौसम है, प्लीज एक रोमांटिक गाना मेरे नाम भी. तनुजा जी साथ दे रही हैं आप, सो बिल्कुल गाना होगा आपके लिए. थैंक यू सो मच साथ निभाने के लिए. साथी गाना फॉर हस्बैंड निलेश, और साथ में है बेटा, सिस्टर अश्ती एंड आपके पेरेंट्स, आपकी दो फ्रेंड्स नंदिता किशन एंड करिश्मा देव की, सभी बाबूलाल परिवार जुला कावन वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं. एंड डेडिकेशन दैट्स कमिंग फ्रॉम विश्ती, आपके लिए एक प्यारा सा गाना. साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर सिस्टर हेमलता स्वीटी, भाई है विक्रम, उनके लिए एक स्वीट स्वीट डेडिकेशन. और ये है भारती की तरफ से. तो बस ऐसे ही साथ निभाते रहिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर और उसके बाद लौट कर आएंगे. चलिए, बरसाती मौसम है एंड वी हैव द स्पेशल गाना, एंजॉय दिस वन.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. आज राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन

0: प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड पर केंद्रित रहा। व्यापार मंत्री माइकल स्विकन ने बताया कि इस फंड के लिए निर्धारित शुरुआती 1.4 बिलियन रुपए में से 710 मिलियन रुपए पहले ही योग्य ऑपरेटरों को दिए जा चुके हैं। 366 मिलियन रुपए की बकाया रकम पर अभी भी काम चल रहा है, जबकि 280 मिलियन रुपए बेकरीज को प्रदान किए जा चुके हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड एक निश्चित राशि वाली सब्सिडी है जो कई खाद्य उत्पादों पर लागू है। ये व्यवस्था अगस्त 2025 में शुरू की गई थी। इसके तहत योग्य ऑपरेटर मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बकाया रकम की अदायगी की मांग कर सकते हैं। इन दावों की जांच के बाद ही संबंधित राशि जारी की जाती है। मेटा की ओर से व्हाट्सएप को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना बनी हुई है। कुछ बहुत जल्द व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन नंबर शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बदले अब यूज़र नेम की संभावना जोड़ी जा रही है। गोपनीयता के लिए भले ही ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन सुरक्षा और अन्य पहलुओं को लेकर इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व कप यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर चल रहा है। कल स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराया, जबकि आज यूएसए का सामना हुआ बेल्जियम से और बेल्जियम की टीम बाजी मार गई। स्कोर रहा बेल्जियम 4 यूएसए 1। आज रात 8 बजे अर्जेंटीना खेलेगा इजिप्ट के खिलाफ। राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच खेला जाएगा रात 12 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बाद। इसके बाद शुरू होगी क्वार्टर फाइनल्स। विदेश में चीन के ननिंग इलाके में मेसाक नामक जोरदार तूफान के बाद एक बांध टूट गई, जिसके कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। पानी की भारी प्रवाह में ये लोग बह गए, जबकि नदी के आसपास रहने वाले 62,000 लोगों को हटाया गया। बांध के पास का एक पूरा गांव तबाह हो गया। वहां हाई अलर्ट जारी किया गया है और अधिकारियों ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया जी, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

तो चलिए दोस्तों, एनिमी फिल्म का ये गाना और इसी गाने के साथ आपका स्वागत। 3:06 हो गए हैं, 7th of July, ट्यूसडे आफ्टरनून। साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स। आपको एंटरटेन हम करने वाले हैं, साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM, और ऐसे ही साथ निभाते रहिए बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल।

0: क्यों मस्ती?
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Oldies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: एग्जैक्टली दोस्तों, ये जिंदगी काफी नहीं है, जिंदगी मिली है और लगता है कि हर एक दिन को खुलकर जीना चाहिए, लेकिन आफ्टरनून टाइम ये तो हम डेडिकेटेड रखते हैं बी टाउन की खबरों के नाम। और बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने हाल ही में बॉलीवुड के दो मशहूर भाई सनी देओल और बॉबी देओल के नेचर के बीच का अंतर बताया। उन्होंने दोनों भाइयों के स्वभाव को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बताया और साथ ही अमीषा ने फिल्म हमराज और गदर 2 का एक किस्सा भी शेयर किया। हाल ही में अमीषा डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में नजर आई और इस शो के दौरान अमीषा ने सनी और बॉबी के साथ अपने काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। एक खबर के अनुसार अमीषा ने बताया कि सनी देओल स्वभाव से बहुत ज्यादा शर्मीले और शांत है, लेकिन उनके साथ वो खुलकर बात करते थे और वो बहुत ही केयरिंग और प्रोटेक्टिव है। अगर शूटिंग पर कोई समस्या होती थी तो सनी उनके साथ बिल्कुल ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। गदर फिल्म की सफलता के पीछे ये एक बड़ी वजह थी और अमीषा ने बताया कि बॉबी देओल को सनी देओल से एकदम अलग इंसान और बताया कि अमीषा जैसे वो बताती है कि बॉबी देओल जो है वो एकदम बिंदास और पार्टियों के शौकीन है और सेट पर मजाक करते रहते थे और काम के लिए वो एकदम रिलैक्स्ड रहते थे। अमीषा ने साल 2002 में आई फिल्म हमराज की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया और जयपुर के एक किले में जब वो बॉबी देओल के साथ इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब गदर फिल्म की लोकप्रियता की वजह से एक अजीब घटना हुई। अमीषा ने कहा कि जैसे ही क्लाइमैक्स सीन को शूट करना था और बॉबी को उन्हें गले लगाना था, वहां मौजूद भीड़ चिल्लाने लगी कि इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे भाई तारा सिंह की पत्नी है और ये उसे पाकिस्तान से वापस लाए हैं, इसे मत टच करो। और बाद में मेकर्स और स्टार्स को भीड़ को समझाना पड़ा कि ये बस शूटिंग है और जिसके बाद शूटिंग पूरी हो सकी। सो ये तो कह सकते हैं बॉलीवुड का क्रेज है, फिल्मों का क्रेज है, जहां पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई ये जो हो रहा है वो बिल्कुल रियल है। स्पेशली जो विलेजेस होते हैं वहां पर ऐसा ही होता है, उन्हें लगता है कि ये जो मूवीज है, ये जो शूटिंग है, ये सब कुछ रियल ही होता है और दैट्स रियली स्वीट। एंड लेकिन ये जो प्यारा सा किस्सा था, इसे सुनने के बाद लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई और जैसे उन्होंने बताया, सनी देओल बॉबी देओल टोटली डिफरेंट बाय नेचर, जहां पर एक एकदम केयरिंग है और एकदम शर्मीले है, दूसरे एकदम पार्टी एनिमल, दैट्स बॉबी देओल, ये तो हम जानते हैं उनका स्टाइल। सो चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप भी हमारा साथ दे रहे हैं एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, लौट कराएंगे आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस के साथ।

So well, with this beautiful track, it's time for Pari to say goodbye. Jati Jati Kumar Devichan, saath de rahe hain aap apni laichi chai ke saath, enjoying the songs, dedicating Gana for Papa Shyam Devichan of Faye Bay. Love you so much, Papa. Ye message hai unke naam. Saath hi yahan par Lalita ji hamara saath de rahe hain, driving and listening to the songs. So aaram se drive kare, safely pahunche. Dedicating Gana for Saroj, Veena, Kumari, Geeta, Gyanti, do bhai hai Sanjay Vijay and Sabijit and parivar ke naam. Hamare saath jude hue hain Devichan from Lal Mati. Gana hoga aapke naam and have a wonderful afternoon radio masti ke saath. साथ ही यहाँ पर कनेक्टेड है अब्दुल एंड सायरा बानो. सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू. लुधमिला हमारा साथ दे रही हैं आप एंड डेडिकेटिंग गाना फॉर योर वंडरफुल सिस्टर ईशा एंड अमेजिंग मॉम गिसालिन, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेस. सो वी हैव दिस वन. और चलिए दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आ रही है हंसनी लेकर योर रफ्तार वाइब्स. उनका साथ दीजिए ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: Centre, 99.4.
1: RM2, Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Time check, 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन आज प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड पर केंद्रित रहा। विपक्ष नेता जोले जोंगा के प्रश्न के जवाब में व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि इस फंड के लिए निर्धारित शुरुआती 1.4 बिलियन रुपए में से 710 मिलियन रुपए पहले ही योग्य ऑपरेटरों को जारी किए जा चुके हैं। 366 मिलियन रुपए की बकाया रकम पर अभी भी काम किया जा रहा है, जबकि 280 मिलियन रुपए बेकरीज को सौंपे गए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड एक राशि वाली सब्सिडी है जो निश्चित रहती है और कई खाद्य उत्पादों पर लागू होती है। मेटा की ओर से व्हाट्सएप को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना बनी हुई है। बहुत जल्द व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन नंबर शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बदले अब यूज़र नेम की संभावना जोड़ी जा रही है जो आपको रिजर्व करना होगा। गोपनीयता के लिए भले ही ये बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन सुरक्षा और अन्य पहलुओं को लेकर इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विदेशी समाचारों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर चल रहा है। कल स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराया, जबकि आज यूएसए का सामना हुआ बेल्जियम से और बेल्जियम की टीम बाजी मार गई। स्कोर रहा बेल्जियम 4, यूएसए 1। आज रात 8 बजे अर्जेंटीना खेलेगा इजिप्ट के खिलाफ। राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच खेला जाएगा रात 12 बजे स्विट्जरलैंड और कोलम्बिया के बीच। और चीन के नानिंग इलाके में मेसाक नामक जोरदार तूफान के बाद एक बांध टूट गई, जिसके कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। पानी की भारी प्रवाह में ये लोग बह गए, जबकि नदी के आसपास रहने वाले 62,000 लोगों को हटाया गया। वहां आए अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 90 सीतेला घर मोसैंपिया में, नंबर 90 सीतेला घर मोसैंपिया में 82 साल की 82 years old की मिसिस बीबी जुलनेसा कुडाबकस, मिसिस बीबी जुलनेसा कुडाबकस जो पैराशी नाम जुमन और जो काला कुंफी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई है। जनाजा आज शाम 5:45 उनके मकान नंबर 90 सीतेला घर मोसैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सिया कॉन्स्टेंस सैंपिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:45 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
5: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: RM2

0: फ्रेंड्स, इट्स 7th ऑफ जुलाई और 4:08 हो रहे हैं। इट्स टाइम जहां पर आपका भी काम खत्म एंड आप भी अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी काम में फंसे हुए हैं, लेकिन वी हैव सम गुड म्यूजिक टू कीप यू एंटरटेन्ड। थोड़ी ही देर में हंसनी विल बी जॉइनिंग इन, जो आपके लिए कुछ प्यारे गाने चलाने वाली है। तब तक के लिए दीजिए साथ ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती, गुड म्यूजिक आपके इस सफर को एंटरटेनिंग बनाने के लिए। और साथ ही हमारे इस शो में होने वाले हैं कुछ स्पेशल सेगमेंट्स, ट्रैफिक अपडेट्स एंड ऑफकोर्स स्पोर्ट्स अपडेट्स आपके लिए। तो कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड। योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

तो चलिए 24/7 गुड म्यूजिक आपके लिए, यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए तो ट्रैफिक में अगर आप फंसे हुए हैं ऐसे इस बरसाती मौसम में, तो अपना ख्याल रखिए और डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे। कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को लुभाने हम हैं यहाँ पर बनकर आपके म्यूजिक पार्टनर्स। यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। एंजॉय दिस वन।

0: 4:37 PM a warm welcome on Radio Masti yahan par shuruaat ho gayi for aaj ka show जो है रफ्तार वाइब्स जहां पर गानों में रफ्तार तो डेफिनेटली होने वाले हैं लेकिन रास्ते पर जो गाड़ियां हैं उनमें रफ्तार नहीं होना चाहिए यू हैव टू मेंटेन योर गुड ड्राइविंग स्किल्स तो यहां पर सभी का वेलकम इन आज का रफ्तार वाइब्स आपका ये म्यूजिकल जर्नी जो बिल्कुल और भी मजेदार बनाने के लिए हम तो चले आए हैं आपके साथ जुड़ गई है और जो हंसरी विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू इन द म्यूजिकल वर्ल्ड वैसे कैसे हैं हमारे फ्रेंड्स वेली हो कि सब कुछ अच्छे है सुबह से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और अगर बाय चांस नहीं है तो कोई बात नहीं अभी ठीक बनाएंगे अभी जो मूड है आपका उनको बिल्कुल हम सेट करने वाले हैं सो अगर आप काम से घर जा रही हैं ट्रैफिक में ऑलरेडी फंसे हुए हैं सो चिल नो वरीज क्योंकि यहां पर ड्राइव सेफ का मैसेज तो ऑलरेडी पहुंच गया है रेडियो मस्ती द्वारा और साथ में हम लेकर आएंगे एक एंटरटेनिंग कलेक्शन ऑफ कोर्स टू मेक इट इजी ताकि आराम से इत्मीनान से आप घर पहुंचे सेफ एंड साउंड और यहां पे कुछ पल में विल बी हैविंग द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड पता लगाएंगे कि क्या कुछ नया क्या कुछ लेटेस्ट और ये सब जो न्यूज़ है वो लेकर आएंगे थोड़ी देर के बाद अरविंद हमारे साथ और रेडियो मस्ती सो जॉइन अस एंड वी आर हियर टू मेक इट मोर एंजॉयएबल एंजॉय करते रहिए हमारे साथ म्यूजिकल जर्नी है आप लोगों के लिए इट्स आवर रफ्तार वाइब्स
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: और एंटू

0: हो गया, धमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। आए अरे क्या दम है, क्या ड्रम है, लेकिन ये बस कुछ ट्रबल है। चल हट आवाज दे यार।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
4: जी हाँ, रेडियो मस्ती पर एक बार फिर से सभी का वार्म वेलकम। दिस इज आवर ऑफ दैट वाइब्स और यहाँ पर बिल्कुल रेडी तैयार हमारे साथ अरविंद हमें देने के लिए द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हेलो अरविंद, वेलकम।
5: हेलो हेलो जी, हेलो लिसनर्स,
4: गुड आफ्टरनून अरविंद, कैसे आप हो?
5: गुड गुड। सर्दी खांसी को छोड़कर आवाज से आपको पता चल गया होगा कि इट्स नॉट गोइंग सो वेल। एनीवे, देर रात तक फुटबॉल देखना, सुबह उठना, यू नो, और यहाँ रेजवी मोका के टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे हमारे यहाँ के टेम्परेचर से, इट्स एनीवे। चलिए कोई बात नहीं, तो आज क्या हो, आज 8 बजे, लकीली आज 8 बजे मैच है अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच, और दूसरा मैच होगा मिडनाइट। अर्जेंटीना इजिप्ट, एक तरफ लियोनेल मेसी, दूसरी ओर मोहम्मद सलाह, दो नेशनल आइकन। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी हर मैच में गोल स्कोर करता आ रहा है, टोटल 7 गोल्स। गोल्डन बूट कंपटीशन में है किलियान एम्बापे और अर्लिंग हालैंड के साथ, तो उसके लिए एक अतिरिक्त मोटिवेशन हो सकता है। इजिप्ट की टीम जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए ये लोग यहाँ तक आए, पेनाल्टी पर ऑस्ट्रेलिया को हराया था, यस पेनाल्टी पर, जबकि अर्जेंटीना को भी काफी मुश्किल से, काफी कठिनाई से केप वर्दे को हराया। तो कह सकते हैं दे प्लेड 120 मिनट्स दोनों टीमें, तो ये फैटीग आज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर स्क्वाड डेप्थ देखें तो अर्जेंटीना लुक्स मोर लाइक ऐसी की इस टीम में एक के बाद एक खिलाड़ी है, अगर एक डिफेंडर नहीं खेलेगा तो दूसरा उसकी जगह ले सकता है, जबकि इजिप्ट में 2 लेफ्ट बैक आज घायल हैं और मोहम्मद सलाह भी नॉट सो वेल, क्योंकि पिछले मैच में वो ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा था, तो एडवांटेज अर्जेंटीना कह सकते हैं। सो स्विट्जरलैंड कोलंबिया, ये एक ऐसा मैच है जिसमें 2 स्टाइल का फुटबॉल, एक तरफ स्विट्जरलैंड की टीम वेरी डिसिप्लिन कॉल्म, और उनका टैक्टिक जो होता है मोर डिपेंडिंग ऑन दी दूसरी टीम, जबकि कोलंबिया की टीम ज़्यादा आक्रामक होती है। इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जो काउंटर अटैक पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लुइस डियाज एक है उनमें से। ये मैच आज रात के 12 बजे होगा, स्विट्जरलैंड वर्सेज कोलंबिया।

0: So I say me kal do team qualify hui for the next round jisme abhi Hansini bahut pain ke saath keh rahi thi ki Cristiano Ronaldo har out ho gaya.
1: आपको तो पता है रोनाल्डो के कितने सारे फैंस है ना.
0: 41 year old क्या कुछ नहीं जीता उसने, you know, वर्ल्ड कप को छोड़कर सब कुछ. ये एक मात्र ट्रॉफी रह गई जो उसके पास नहीं है अभी. डू यू थिंक नेक्स्ट टाइम वो खेलेगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस बार भी जब उसे लिया गया तो लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए फुल फिट नहीं है. और देखा हम लोगों ने कि ही इज नॉट अ रोनाल्डो जैसे मेसी की तरह. तो अब शायद द लास्ट वन फॉर द वर्ल्ड कप, अब जो है दूसरे कंपटीशन में शायद देखना है. तो ये हो गया. तो अब कल आराम का दिन, वेंसडे आराम का दिन. थर्सडे से क्वार्टर फाइनल शुरू विद मोरक्को वर्सेस फ्रांस. तो काफी कुछ होने लगा है अब वर्ल्ड कप पे. धीरे धीरे टीमें अपना रंग दिखाने लगी हैं. और फुटबॉल से ही आपको पता होगा ये चल रहा था, ये डिबेट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, जिसने स्वीकार किया कि उसने फीफा को फोन करके बताया था कि दे हैव टू चेंज देयर डिसीजन. तो इससे बेल्जियम के खिलाड़ी काफी नाराज हो गए थे. और अब बता रही हैं कि इतना ही दम है डोनाल्ड भाई तो ये रिजल्ट ओवरटर्न करके देखो. ओवरटर्न दिस ट्रंप, द बेल्जियम टोट यूएस एंड से ट्रंप मूव फायर देम अप. तो जो ट्रंप ने किया उससे बेल्जियम की टीम में और जोश आ गया, इसलिए ये इन्होंने ने आसानी से 4-1 इनकी जीत हुई. इजीली क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड. और जिसे हमने आपको बताया यूरोपियन बैकलैश ट्रंप के इंटरवेंशन पर, लेकिन इन्फेंटिनो इससे आई मीन ही इज टेकिंग इट लाइटली, कुछ खास नहीं है ऐसा वो बोल रहा है. टेनिस की बात कर लें, द विंबलडन ओपन इज ऑन और आज काफी इंटरेस्टिंग मैच हो रहे हैं. जैसे अभी पेगुला और गोफ के बीच फर्स्ट सेट होगा. आलियासी में जोकोविच अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर फाइनल. सिना और स्ट्रफ के बीच टफ मैच अभी चल रहा है, 4-4 फर्स्ट सेट में. फिर ओसाका विल बी प्लेइंग अगेंस्ट मुचोवा. ये आज के क्वार्टर फाइनल मैच है. और कल के क्वार्टर फाइनल में कोश्चुक अगेंस्ट पाउलिनी कोबोली खेलेगी या फेख के खिलाफ, और खेलेगा एक्चुअली. और नुश्कोवा विल बी प्लेइंग अगेंस्ट मेर्टेंस. ये क्वार्टर फाइनल पूरे होते हैं. विल टॉक अबाउट क्रिकेट. आज काफी फिक्स्चर्स हैं, खासतौर पर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच. वेस्ट इंडीज की टीम सेकंड टेस्ट में दे स्कोर 499 और अभी श्रीलंका की टीम 92-2 लीडिंग बाय 142 रन्स. और आज अभी से कुछ चार घंटे बाद 8:30 मैच होगा इंग्लैंड और इंडिया के बीच. ये थर्ड T20 मैच जो नॉटिंगहम में खेला जाएगा. रिश्ता देखना है कि इसमें वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका दिया जाएगा या नहीं. पहले मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन मौका देंगे इस बंदे को तो बहुत कुछ कर सकता है ये, दैट्स फॉर श्योर. और कुछ और खबरें ट्रांसफर न्यूज में हमने आप लोगों को बताया. टोनाली आ गया है 100 million pounds स्टर्लिंग पर टोटनहम हॉटस्पर में. और टोटनहम हॉटस्पर ने बताया कि अभी पिक्चर बाकी है और खिलाड़ियों को ये लोग साइन करने जा रहे हैं. सो हंसिनी, कल परसों हमने देखा किस तरह से एक खिलाड़ी रोते हुए जा रहा है. अब आज मेसी रोएगा या नहीं?
1: आज इट्स लाइक अ बेट ना, क्योंकि जो रोनाल्डो फैंस है वो तो यही विश करेंगे कि
0: कोई रोएगा जरूर. इट्स ईदर लियोनेल मेसी या मोहम्मद सलाह, क्योंकि अगर कल रोनाल्डो रो पड़ा तो ये लोग भी.
1: एग्जैक्टली, यही तो मैं कहने वाली थी. जो फैन फॉलोअर्स है और रोनाल्डो, ये तो वो तो वही विश करेंगे कि आज जो मेसी वाले हैं वो रोए आज.
0: लेट्स सी, बट एडवांटेज अर्जेंटीना इस मैच में. इजिप्ट की टीम पहली बार के लिए इस स्तर तक आए हैं. दे लैक द ओरा फॉर सच ए बिग कॉम्पिटिशन एट दैट पर्टिकुलर स्टेज. और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखने को मिला, जबकि मेसी की टीम उस दिन कैप वर्दी ने लगभग कब्जा कर लिया था होल्ड अप, लेकिन दे मैनेज टू स्नीक इन, जैसे तैसे मैच जीत लेते हैं. दिस इज द क्वालिटी ऑफ बिग टीम्स. ऐसे ही ये लोग डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है. लेट्स वेट एंड सी, 8 बजे ये मैच होगा, इस पर आपको अपडेट्स देंगे.
1: ऑलराइट अरविंद, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अपडेट्स. वैसे कल मुलाकात फिर से होने वाली है ना, जब हम आएंगे कल फॉर

0: द स्पोर्ट्स न्यूज और आपका कल भी होने वाला है स्पेशल मैगजीन फॉर द वर्ल्ड कप. सो कैच यू वेरी सून. तब तक के लिए आई विश यू अ ग्रेट इवनिंग अहेड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेहत. हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच.
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट. RM2
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.

And yes, this is our radio masti. आप connected हो for आज का रफ्तार vibes, जहाँ पर सफर बन जाता है एकदम यादगार, जहाँ पर इस समय हंसनी है और अगले घंटों में बिल्कुल हम कुछ mesmerizing गाने सुनने वाले हैं और अगले घंटों तक साथ रहेगा music, मस्ती और ढेर सारी positive vibes. So, जहाँ पर भी कनेक्टेड आप हो गए हो, इट्स द सेकंड आवर ऑफ द म्यूजिकल जर्नी, जहाँ पर कुछ बातें हमारी होने वाली है. और हाँ, अगर इस समय आप फ्री हो तो यू कैन टेक योर मोबाइल फोन एंड सेंड मी अ मैसेज ऑन 5499-1294. अगर कुछ ऐसा है खास आज और शेयर करने से बहुत ही स्पेशल हो जाएगा, सो वाई नॉट. यहाँ पर हम तो है ही आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए. अच्छा लगता है टू शेयर द बॉन्ड. ये जो दिल का नाता होता है ना, और भी गहरा होता जाता है जब आप लोग साथ निभाते हो. इट्स अ वार्म वेलकम इन आज का रफ्तार वाइब्स. स्टे वेल ट्यून्ड. अभी 7 बजे तक यूं ही हम मुलाकात को रंगीन बनाते जाएंगे. मौसम की बात करें तो ठंड है. हाँ, बिल्कुल ठंड का मौसम, सो मेकिंग यू फीलिंग अ बिट मोर इजी. और साथ में बाहर मौसम की बात करें तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, सो सफ़र करते समय प्लीज़ बी कॉशियस.

वल यहाँ पर गाना तो मूवी गरम मसाला से था एंड अभी अगर आप किचन में हो तो यूज़ कर रहे हो गरम मसाला टू ऐड सम टेस्ट टू मेक इट मोर स्पाइसी तो लगे रहो हम भी तो आपके साथ है ना टू मेक योर कुकिंग इजी एंड और भी लजीज बने आपका खाना आज यही हम लेकर आए हैं द गुड वाइब्स ऑल अराउंड मॉरिशस और जहाँ पर भी साथ जारी है इवन दोस्त से भी आवाज़ आती है जहाँ पर हमारे दोस्त जुड़ जाते हैं सात समुंदर पार और वो भी तो अपने कुकिंग टाइम को एंजॉय कर लेते हैं जो भी काम वो कर लेते हैं वो बस ऑन कर लेते हैं हमारा और आपका हम सफर जो है रेडियो मस्ती सो अभी टाइम फॉर सम डेडिकेशन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन थैंक यू सूरज भाई विशिंग यू टू अ ग्रेट आफ्टरनून और यहाँ पर गानों का मजा लिया जा रहा है ग्रेट टू हैव द सिलेक्शंस ऑफ रता वाइब्स तो यहाँ पर गाना आपके लिए जरूर चल जाएगा थैंक यू फॉर लिसनिंग आज हेमा का बर्थडे है शी इज सेलिब्रेटिंग हर स्वीट 18 ओके हेमा हैप्पी बर्थडे टू यू विशेस कमिंग फ्रॉम योर डैड संदीप आपके मामा है सुनंदा और सभी वयापुरी फैमिलीज है जो गुड विशेस लेकर आई है फॉर यू टू हैव धमाकेदार जन्मदिन और हंसनी है सभी रेडियो मस्ती टीम है टू विश यू ऑल द बेस्ट टू विश यू ऑल द हैप्पीनेस और यहाँ पर बिल्कुल गानों के साथ वी आर हियर टू एंटरटेन यू एंड टू मेक इट मोर फैबुलस ड्राइव करते समय प्लीज बी कॉशियस यहाँ पर ऐसा कौन सा गाना है एक्चुअली जिससे सुनते ही आपका पूरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी वो गाना आ गया है सो यू कैन शेयर मी ऑन 5491294 जानेंगे तो यहाँ पर खुशी होगी टू प्ले योर सॉन्ग आफ्टर ऑल आपका कनेक्शन जो है ना रेडियो मस्ती के साथ सो हंसनी विद यू आफ्टर 7 PM कीप जॉइनिंग अस फॉर रफ्तार वाइब

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और एमटू।
2: सो लगा यहाँ पर प्रेम लोग लगान रेडियो मस्ती, अगर हाँ सो कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ म्यूजिक जो हम लेकर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स टू एंटरटेन यू। और अभी जो बेटर म्यूजिक है ना, उनको थोड़ा सा रोमांटिक बनाएंगे, एक स्पेशल सॉन्ग हम लेकर आएंगे ऑफ कोर्स हमारे प्यार करने वालों के लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है और मे बी हमारे गानों को सुनकर जो वो बस अपने प्यार को याद कर रही हैं। सो ऐसे ही कनेक्शन जारी हम रखेंगे ऑन रेडियो मस्ती। और वैसे फैशन टिप के बारे में बात करें तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट जो आने वाला है, दैट विल बी आज का फैशन टिप। स्टे वेल ट्यून्ड फॉर द बेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स जो यहाँ पर है इन आज का रफ्तार वाइब्स।

0: YouTube.
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: वेलकम ऑन रेडियो मस्ती एंड हियर वी गो विद आज का फैशन टिप। यहाँ पे हम तो कहेंगे इट विल बी अ विंटर फैशन टिप। सर्दी का मौसम है ना, इट्स चिलिंग आउट। और कई दोस्त अपने स्कार्फ को नहीं भूलते हैं, हमेशा साथ रखते हैं ना, पहनते हैं अपने गले को एकदम सेफ रखने के लिए पहनते हैं ना। तो आपके लिए ज़रूर एक स्पेशल टिप। लेकिन स्कार्फ जो है ना, वो सिर्फ ठंड से बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपके स्टाइल को भी

0: पहनने का बेहतरीन तरीका है। अपने जैकेट या स्वेटर के रंग से मिलता जुलता या कंट्रास्ट स्कार्फ चुने। सही तरीके से ड्रेप किया गया स्कार्फ आपके पूरे लुक को और भी एलिगेंट और ट्रेंडी बना सकता है। छोटा स्कार्फ है लेकिन बड़ा लुक दे सकता है। हाँ, एक अच्छा स्कार्फ आपके विंटर आउटफिट में गर्माहट के साथ स्टाइल का भी तड़का लगा देता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब आप स्कार्फ खरीद रहे हो तो खरीदते समय सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि उसका पूरा मटेरियल भी आपको देखना है। वूल या फिर कश्मीरी वाला जो होता है ना, वो तो बेहतर गर्माहट देते हैं, जबकि कॉटन वाले हल्की ठंड के लिए अच्छे रहते हैं। तो अपने मौसम और ज़रूरत के अनुसार सही मटेरियल चुने ताकि आराम और स्टाइल दोनों साथ मिले। ये था एक छोटा सा फैशन टिप फॉर यू टू लुक मोर एलिगेंट एंड फॉर यू टू लुक मोर स्टाइलिश।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2 रेडियो मस्ती फील।

यहाँ पर गाना तो जस्ट चिल था, लेकिन हम तो कहेंगे भाई इट्स ऑलरेडी फ्रीजिंग, इट्स ऑलरेडी चिलिंग. ठंड तो बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है. सो वार्डरोब से निकाले गए जितने भी गर्म कपड़े हैं ना, बस उनका इस्तेमाल करें. स्टे वार्म, स्टे सेफ, और अगर बाहर कुछ खास काम नहीं है तो स्टे इंडोर, स्टे कोजी. घर पर बस आप सेफ रहें, एंजॉय गरम गरम खाना. डिनर में क्या प्रिपरेशन है लेट मी नो, यहाँ पे शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा. यहाँ पर आइडिया मिलेगा जब मैं घर वापस जाऊँगी, सो आई कैन प्रिपेयर माई डिनर बैक. लेकिन यहाँ पर जितने भी हमारे फ्रेंड्स से जुड़े हुए हैं, इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन. यहाँ पर फन है, मस्ती है, ये प्यार है, दोस्ती, अपनापन, ये सब है ऑन आवर रेडियो मस्ती, एंड इट्स आवर ऑफ दैट वाइब्स, सेंडिंग यू सम ग्रेट पॉजिटिव वाइब्स ऑल अराउंड जहाँ पर भी आपका साथ जारी है. कीप लिसनिंग, और थोड़ी देर में कुछ आपकी डेडिकेशंस, व्हाई नॉट, ऑन 5499 94.

0: That was a great one. उर्मिला का एक स्पेशल गाना था. सो यहाँ पर ऐसे सुवेनियर्स हम लेकर आते रहते हैं. That's the magic of Radio Masti and keep you connected now. कुछ आपके मैसेजेस हो जाए, right? अभी हेलो टू यू रीना, कैसी हो? Really hope कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था. रीना डुकारन का वार्म वेलकम. अभी घर पहुंची है एंड घर पहुंचते ही Radio Masti is on. तो यहाँ पर गाना बिल्कुल आप के लिए चल जाएगा, आपकी टू लवली डॉटर्स के लिए. टू विश यू अ ग्रेट इवनिंग है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. एंड चलेंगे स्विट्जरलैंड, थोड़ा सा घूमना भी होता है ना आपके साथ. अंतिश है जो जुड़ गई है विद Radio Masti as always. यहाँ पर गाना तो बनता है आपके लिए एंड फॉर एवरीवन जो यहाँ पर दूर ही से ही लेकिन हमेशा पास रहते हैं टू Radio Masti. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. पुराना गाना आप सुनना चाहेंगे? ओके जी, आई विल ट्राई इट इन द थर्ड आवर. यहाँ पर आप हो इशिका, आई जस्ट लव ऑडीज, तो एक हो जाएगा तो आई बी वेरी हैप्पी. ओके जी, ये तो होने वाला है समाचारों के बाद. सो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा Radio Masti. सुनते रहिए. श्वेता हेलो टू यू, कैसी हो? आप तो आई हो फ्रॉम बोनाके. ये नेक्स्ट गाना जाएगा आपके लिए, आपके पति रोशन के लिए, फ्रॉम हिज बुबुरानी. उनसे बस कहना है आई जस्ट लव योर हस्बैंड जी. तो आपका जो प्यारा सा मैसेज है पहुंच गया है. दैट्स रियली क्यूट ऑफ यू. और ऐसे में अगर आप भी अपनों को याद करना चाहेंगे, दिस इज आवर रफ्तार वाइब्स. कनेक्शन तो बहुत ही स्ट्रांग है आप के और हमारे बीच में जो बंधन है, इट्स ओनली Radio Masti. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट. और यहाँ पर इशारा है कि जो गाना चल जाएगा ना, इसी के साथ हम बढ़ेंगे ठीक 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। आज राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में। पीएमक्यूटी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञ आयोग के कार्यों और सुधार प्रक्रिया के अगले चरण पर जानकारियां दी। हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने आज राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पंज सिटी की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। ड्रग्स का सेवन करने वालों को अब हर महीने में अदालत या जेल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये फैसला लिया गया ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के तहत। कुछ लोगों को कानूनी कार्रवाई के बजाय नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम में भेजा जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक

0: युग का अंत फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुष्टि कर दी है कि ये उनके कैरियर का आखिरी फीफा विश्व कप था। स्पेन ने इंजरी टाइम के आखिरी पलों में गोल कर पुर्तगाल को 1-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रसभा में पेंशन सुधार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में रहा। पीएमक्यूटी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने विशेषज्ञ आयोग के कार्यों और सुधार प्रक्रिया के अगले चरण पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए अभी 9 महीने का समय है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग कमेटी के सुझावों पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया की दिशा को लेकर आम सहमति बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान ही आज राष्ट्रसभा में दुमेनलीपाय की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा भी उठाया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है, जबकि इस मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच भी जारी है। प्रधानमंत्री ने इस विषय से जुड़े अन्य सवालों के भी जवाब इस सत्र के दौरान दिए। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत सब्सिडी वाले सामान बेचने वाले व्यापारियों को अब तक 710 मिलियन रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये जानकारी आज राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान मंत्री माइकल स्विक्वेन ने दी। विपक्ष के नेता जोलेजोंगा ने इस योजना के तहत दी गई सब्सिडी का ब्यौरा मांगा। इस दौरान प्लास्टिक की बोतलों पर लगाए गए 2 रुपए के टैक्स का मुद्दा भी उठाया गया। पोर्टलुई के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जुहोन और फ्रेडरिक्स के अपोस्टोलिक विकार मोंसेयर मिशेल मोरा ने आज दोपहर बाद ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ मुलाकात की। चर्चाएं मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए एक रिटायरमेंट केंद्र और रोड्रिग्स में एक रिट्रीट सेंटर पर आधारित रही। मोंसेयर जॉन मिकाएल जुहोन और मोंसेयर मिशेल मोरा को सुनते हैं।
1: Aujourd'hui, c'était d'abord pour présenter le nouvel évêque de Rodrigues, qui a été ordonné le 19 mars 2024. Et puis, passer un peu en revue des grandes questions, nous aussi, pas mal sur les personnes âgées. Si nous en avons dans le diocèse, tous les homes, les maisons de retraite, toutes les questions aussi de là, comment accompagner les personnes âgées.
2: Avec donc l'Église, nous avons monté un projet pour ouvrir la première maison de retraite permanente pour Rodrigues. On a pour le moment, un centre de répit, c'est-à-dire qu'on accueille les personnes âgées pour jusqu'à 2 mois, mais après, la personne doit rentrer à la maison. Il y a aussi une unité de répit qu'on prévoit de mettre en place pour les personnes autistes et les enfants et les jeunes lourdement handicapés.
0: और इससे पहले हम आपको बता रहे थे प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत सब्सिडी वाले सामान बेचने वाले व्यापारियों को अब तक 710 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया। प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान माइकल सिक्वेन ने ये जानकारी दी। इस पर ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: व्यवसाय मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार सरकार द्वारा प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं पर दी गई सब्सिडी के कारण इन उत्पादों की कीमतों में स्थिरता आई है। हर एक उत्पाद की कीमत में 10 से 55 रुपए तक की कमी दर्ज की गई है। इन सब्सिडियों पर सरकार ने कुल 1.4 बिलियन रुपए खर्च किए हैं।
4: बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एमओ इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू माय मिनिस्ट्री एज ऑफ 16th ऑफ जून 2026 Total subsidy payments already affected to eligible traders amounted.
3: MRA से प्राप्त जानकारियों की हालिया रिपोर्ट के आधार पर जो मेरे मंत्रालय को सुपुर्द की गई है 16 जून 2026 से सब्सिडी की पूरी अदायगी व्यापारियों को कर दी गई है जो करीब 710.1 मिलियन रुपए हैं। करीब 366 मिलियन रुपए की अदायगी की प्रक्रिया चलाई जा रही है और 280 मिलियन रुपए बेकरीज को चुकाए गए हैं। मॉरिशस के लिए वार्षिक लागत 258.8 मिलियन रुपए है और रोड्रिग्स के लिए अतिरिक्त 1.4 मिलियन रुपए की जरूरत होगी।

0: जिससे कुल वार्षिक लागत 260.2 मिलियन रुपये है। मंत्री ने बताया कि उनके मंत्रालय की कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट सब्सिडी वाले उत्पादों पर लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रही है। पिछले एक वर्ष में 11,000 से ज्यादा निरीक्षण किए गए, जिनके दौरान 1200 कंट्रावेंशन जारी किए गए। मंत्री माइकल सिकियन ने प्लास्टिक की बोतलों पर लगाए गए 2 रुपए के कर का भी उल्लेख किया।
1: With effect from 1st of October 2026.
2: The Honourable Minister confirmed to the House that this measure will impact more than 2,000 products consumed on a daily basis in this country.
1: These products are not controlled products. Some importers and some manufacturers can also absorb the cost. It's not a controlled product.
3: It is a tax. So what is the alternative that is being proposed now with the money that will be drawn in as revenue? How much of it will be reinvested for recycling and to finding and subsidizing better alternatives?
1: In fact, we need to educate the people so that we switch to other measures. For example, for bottled water, we can switch to water filters. It is as simple as this, and you will save money, people will save money, and also it is extremely good for the environment.
4: राज्यसभा में पेंशन सुधार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में रहा। पीएमक्यूटी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञ आयोग के कार्यों और सुधार प्रक्रिया के अगले चरण पर जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए अभी 9 महीने का समय है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: प्रधानमंत्री ने पेंशन सुधार पर गठित एक्सपर्ट्स कमीशन के सदस्यों की कार्यकुशलता का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता। 8 महीनों के काम के बाद आयोग ने मई महीने में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जो बाद में 20 मई को स्टीयरिंग कमेटी के सामने पेश की गई।
6: मिस्टर डिप्टी स्पीकर, मस्ट एम्फसाइज दैट मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी मेड ए नंबर ऑफ कमेंट्स एंड सजेशंस व्हिच वाज टेकन ऑन बोर्ड बाय द कमीशन। देयर वाज ब्रॉड कंसेंसस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑन द डायरेक्शन of the reforms. Mr. Deputy Speaker, due to the urgency of the fiscal situation, especially the still very high level of public debt, estimated at 87.7% of GDP as of June of this year, and given that the Commission had completed its analysis and recommendations on the first pillar of the pensions system, in particular the basic retirement pension, government decided to act immediately on the policy recommended by the Commission, it's an interim report. To facilitate the implementation of this reform, we are setting up, as recommended by the Commission, a unified independent pensions regulatory authority to regulate the entire pension system and a central pensions administration bureau which will regroup all state-sponsored schemes into one place to digitalize and facilitate service to members and pensioners.
5: डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट सुपुर्द करने के लिए अभी भी 9 महीनों का समय है। कमेटी पेंशन के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव, नेशनल पेंशन और प्रोविडेंट फंड की स्थापना और फंड के संचालन को लेकर कानूनी ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव देती है।
6: Mr. Deputy Speaker, I wish to emphasize that the reform of Pillar 2 and Pillar 3 of the pension system, that is, I mentioned earlier, that is, the contributory pension schemes and the voluntary private schemes are not yet finalized. In particular, the establishment of the National Pensions and Provident Fund and the modalities will have to be worked out. The implementation will require dedicated legislation, extensive consultations with stakeholders, and also guidance from the proposed Independent Pensions Regulatory Authority. The future of the Portable Retirement Gratuity Fund, as well as the National Savings Fund, will also be carefully considered, taking into account both the short and long-term interests of the workers. Subject to Cabinet approval, the necessary legislation is expected to be introduced before the end of the financial year 2026-2027. I also wish to assure the House that the proposed reforms will not leave any worker worse off. On the contrary, every worker will have an individual dedicated account similar to the arrangements that existed under the National Pensions Fund.

0: And furthermore, the reforms will not result in any increase in contribution rates for either employees or employers. The CSG contributions that are currently credited into the consolidated fund will be progressively redirected to workers' individual accounts. Mr. Deputy Speaker, all these reforms are being done in the wider interest of workers and to protect the future earnings, their future earnings after their retirement. Coming back to the question of the Commission has been entrusted with a mandate of significant national importance, and government has every confidence in the expertise, independence and professionalism of its members to discharge that responsibility. Accordingly, I wish to reiterate that the question of revoking the appointment of the members of the Commission does not arise. I have requested them to continue the important work entrusted to them and to complete the mandate by submitting the final report. Mr. Deputy Speaker, it is clear that with the reform of the pension system, as the responsible government, we have not chosen the easy way out and to try to get political mileage, but rather our objective is to save the system, to ensure that all the elderly obtain a pension in future, and that the future generation is not burdened with an unsustainable pension system.
1: आयोग के एक सदस्य की संभावित सलाहकारी काम के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है.
2: It is a consultant for investment advisory services to the National Pension Fund and National Saving Funds Investment Committee.
0: I'm not aware that he's been given a particular task to advise on this. He's advising generally.
3: ड्रग्स का सेवन करने वालों को अब हर महीने में अदालत या जेल का सामना नहीं करना पड़ेगा. ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के तहत कुछ लोगों को कानूनी कार्रवाई के बजाय नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम में भेजा जा सकता है. ये व्यवस्था कैसे काम करती है और इसका लाभ किन लोगों को मिल सकता है, जानिए इस रिपोर्ट में.
4: ड्रग्स रखने के आरोप पर गिरफ्तार होने का मतलब अब स्वाभाविक रूप से जेल जाना नहीं है. असल में पिछले 2024 से ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों के प्रति दृष्टिकोण बदला गया है. यदि ड्रग्स की मात्रा कम है, वो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है और पुलिस ये निर्धारित करती है कि वो व्यक्ति तस्करी में शामिल नहीं है, तो उसका मामला आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ने के बजाय उसे ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल ड्यूएप को भेजा जा सकता है. डीएसपी सुहेल लिजालाम कहते हैं, यदि ड्रग लेने वाला व्यक्ति पुनर्वास का रास्ता चुन रहा है, उसे बिना किसी शर्त के रिहा किया जाएगा. पैनल के बुलाने पर उसे पेश होना पड़ेगा, जिसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाएगा. ड्यूएप एक स्वतंत्र पैनल है जिसमें कानूनी क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं. इसका उद्देश्य है हर स्थिति का आकलन करना और संबद्ध लोगों को न्यायिक सजा के बजाय उपचार और पुनर्वास कार्यक्रमों की तरफ निर्देशित करना. डीएसपी सुहेल लिजालाम कहते हैं, हमें लगभग रोज ऐसे मामले मिलते हैं. पुलिस संबद्ध व्यक्ति को विकल्प देती है और हम उसे ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के हवाले करते हैं, लेकिन इससे पहले पुलिस मामले को डीपीपी के सामने पेश करती है, जो बदले में उसे पैनल के सुपुर्द करती है. अगर रिहैबिलिटेशन अवधि के दौरान व्यक्ति शर्तों का पालन नहीं करता, तो पैनल मामले को डीपीपी के स्तर पर वापस करता है, जो बाद में पुलिस को सौंपा जाता है ताकि अदालती कार्रवाई चलाई जाए. सिविल सोसाइटियों के कई संगठन सालों से इस दृष्टिकोण की वकालत कर रहे थे, जिसमें पिल्स भी शामिल है, जो मानता है कि ड्रग्स पर निर्भरता को मुख्य रूप से एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए. पिल्स से एलोजी कहती हैं, कई बैठकें हम लगाते हैं और ड्रग्स इस्तेमाल को आपराधिक दायरे से हटाने पर बात होती है, जिसका प्रस्ताव हमने दिया है, ताकि ड्रग्स लेने वाले लोगों को जेल में डालने के बजाय उनका इलाज हो. ये एक होलिस्टिक, मनोवैज्ञानिक, मेडिकल और सामाजिक माध्यम है. ड्यूएप अपने स्तर पर मेडिकल फॉलोअप, मनोवैज्ञानिक समर्थन, काउंसलिंग के सत्र या पुनरेकीकरण की सलाह दे सकता है. एलोजी कहती हैं, ये देखा जाता है कि व्यक्ति नशे की कितनी लत में है, उसके आधार पर या तो काउंसलिंग, डिटॉक्स या मेथाडोन की सलाह दी जाती है. ऐसे मामलों में सर्टिफिकेट ऑफ मोरालिटी की क्या भूमिका है? डीएएसपी सुहेल लिजालाम के अनुसार, अगर व्यक्ति के खिलाफ अदालती कार्यवाही न हो, सजा न दी जाए, तो

0: सर्टिफिकेट ऑफ मोरालिटी में भी वो मामला दर्ज नहीं होता। जो आपको सौंपे गए हर मामले के पीछे एक कहानी होती है, एक व्यक्तिगत सफर होता है और कभी कभी रास्ता तलाश रहा एक व्यक्ति होता है।
1: जल्द ही व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर साझा करना ज़रूरी नहीं होगा। मेटा एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जिसके तहत फ़ोन नंबर की जगह पर प्रोफाइल नेम इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्या इससे फर्जी पहचान, ऑनलाइन ठगी या फिशिंग जैसी घटनाएँ बढ़ सकती हैं या नहीं, जानिए इस रिपोर्ट में।
2: व्हाट्सएप अकाउंट पर अपना फ़ोन नंबर दिखाना जल्द ही एक विकल्प बन जाएगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नए संपर्कों के साथ बातचीत शुरू करते समय फ़ोन नंबर की जगह प्रोफाइल नाम इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। मेटा का कहना है कि इससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और मजबूत होगी।
3: Telegram, même Signal aussi, il y a quelques années, avait mis en place ce système-là.
2: इसका फायदा उपयोगकर्ताओं को होगा, जो फैसला करेंगे कि वे अपने मोबाइल फोन नंबर किसी को देना चाहते हैं या नहीं। छोटे उद्योगों को भी फायदा होगा, वे अपने कारोबार का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना फोन नंबर बताए बिना। लेकिन इस नए विकल्प को लेकर पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और पुलिस जांच पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं। असुविधा तब होगी, खासकर अपराध से लड़ने के लिए। जैसे अगर पुलिस ड्रग का सेवन करने वाले किसी को गिरफ्तार करेगी, उसका मोबाइल फोन जब्त करेगी और उसमें हुई बातचीत की जांच करेगी। फिलहाल उसे डीलर या अन्य लोगों के नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन आगे चलकर सिर्फ प्रोफाइल दिखेंगे। तब मीटा से गुजरना पड़ेगा। फिशिंग के संबंध में भी कंट्री कोड की जांच नहीं की जा सकेगी, ये जानने के लिए कि मैसेज मॉरिशस से ही है या विदेश से। अगर मॉरिशस सरकार और मीटा के बीच प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं की गई, तो जटिलताएं सामने आ सकती हैं। भारत ने इन संभावित खतरों का हवाला देते हुए व्हाट्सएप से इस सुविधा के रोल आउट को फिलहाल रोकने की मांग की है। मेटा का कहना है कि अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर अब भी अनिवार्य रहेगा। कंपनी का ये भी दावा है कि धोखाधड़ी और पहचान की चोरी से बचाव के लिए कई सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, हालांकि इन सुरक्षा तंत्रों के विस्तृत कामकाज का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय सरकार ने अच्छा किया है, हमें भी इसी तरह की पहल लेनी चाहिए। इस साल की शुरुआत से अब तक मोको प्लेटफॉर्म पर लगभग 2500 साइबर घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें करीब 300 मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े हैं, जिनमें अधिकांश व्हाट्सएप से संबंधित हैं। सेट एमयू में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट सचिंद्रा रिकाय कहते हैं, व्हाट्सएप ने एक सिक्योरिटी फीचर की व्यवस्था की है, जिसे यूजर नेम की नाम दिया गया है। अगर उपयोगकर्ता इसे हटाना चाहता है, तो कोई भी नया कॉन्टैक्ट उससे संपर्क रखने के लिए उसे न सिर्फ उसका यूजर नेम बल्कि यूजर नेम की भी जरूरत होगी। उपयोगकर्ताओं का भरोसा बढ़ाने के लिए मेटा का कहना है कि प्लेटफॉर्म नए उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क को सीमित करेगा, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेगा और पहली बार संदेश भेजने वाले व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारियां भी प्रदर्शित करेगा। उपयोगकर्ता अभी से अपना प्रोफाइल नाम आरक्षित कर सकते हैं।
1: हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या सामने आती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने आज राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पंज सिटी की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। अडॉप्ट एक्शन परियोजना के तहत आयोजित इस पहल को AFD और यूरोपीय संघ का सहयोग प्राप्त हुआ है। चीन में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद एक जलाशय की दीवार टूट गई, जिससे कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। इस आपदा में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 62,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब चलिए फुटबॉल की

0: बात एक युग का अंत फुटबॉल के महान खिलाड़ी में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुष्टि कर दी कि ये उनका करियर का आखिरी फीफा विश्व कप था। 41 वर्षीय पुर्तगाली कप्तान का विश्व कप जीतने का सपना उस समय टूट गया जब स्पेन ने इंजरी टाइम के आखिरी पलों में गोल पर पुर्तगाल को 1-0 से हराया। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: 41

0: आंखों में आंसू, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने सफल फुटबॉल यात्रा का अंतिम पन्ना शायद बन कर चुका है, पर इससे पहले लामिन यामाल ने स्पेन को 1-0 से जितवाया पोर्टुगल के खिलाफ। ज्यादा समय तक ये मैच बंद खेल में रहा, धीरे धीरे मैच में जान आई और रोनाल्डो दो बार उनाई साइमन को परेशान करता है, नूनो मेंडेस का गेंद पोस्ट से टकराता है। दोनों टीमें एक दूसरे की कमजोरी के ताक में थी। मैच के इंजरी टाइम में जाकर स्पेन के लिए माइकल मेरिनो गोल स्कोर करता है फेरान टोरेस के सटीक पास पर। इससे पहले पोर्टुगल के गोलकीपर डुग्लास ने अपनी टीम को बार बार बचाया। रेफरी जब मैच की समाप्ति के लिए सीटी बजाता है तब लामिन यामाल आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गले से लगाता है। बहुत कुछ है इसमें, एक जवान स्टार खिलाड़ी एक चैंपियन को सम्मान दे रहा है, वो आदर वो सम्मान जिसका वो हकदार है, काफी परिश्रम के साथ रोनाल्डो ने कमाया है। रोनाल्डो के सम्मान में स्पेन के कप्तान ने भी एक दो बातें कही। वर्ल्ड कप ट्रॉफी छोड़ के रोनाल्डो ने सब कुछ जीता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेंगे, उसका नाम फुटबॉल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
1: और फुटबॉल की ही बात करते हैं, फीफा विश्व कप 2026 में आज रात एक कड़ा मुकाबला स्विट्जरलैंड और कोलंबिया क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाने के लिए आमने सामने। एक तरफ स्विट्जरलैंड की मजबूत डिफेंस और टीम वर्क, तो दूसरी तरफ कोलंबिया की रफ्तार। सुनिए,
0: दोनों टीमों के लिए ये एक ऐतिहासिक मौका है। स्विट्जरलैंड आराम से बिना शोर शराबा किए ग्रुप स्टेज पार करके आगे चलकर अल्जीरिया को हराता है। स्विट्जरलैंड में हर तरह के अनुभवी खिलाड़ी हैं। उसका कप्तान ग्रानिट ज़ाका अपने खेल से अपनी टीम को संगठित करता है। स्विट्जरलैंड के सफर को करवा करने के लिए कोलंबिया की टीम सामने है। आक्रामक खेल और मजबूत रक्षा पंक्ति मतलब डिफेंस इस टीम के लिए खासियत है। विजाज के दिमागी खेल, रामेस रोड्रिगेज का अनुभव काम आएगा। दोनों रास्ता खोजेंगे, कहीं ना कहीं नुस्खा खोजेंगे। स्विट्जरलैंड कोलंबिया के तीव्र आक्रामक खेल पर रोक लगाता है तब काम हो सकता है। कोलंबिया जैसे खेलते हुए यहां तक आया है, अगर ऐसा फुटबॉल खेलता है कोलंबिया तो स्विट्जरलैंड को परेशान कर सकता है। क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए ये आखिरी टिकट होगा।

0: चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है, जो बुधवार दिन के 10 बजे तक लागू रहेगी। मस्कारेंस के दक्षिण में एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवाएं चल रही हैं। आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर मुख्य रूप से बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दोपहर बाद ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 21 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। आम जनता से उड़ती हुई चीजों से सावधान रहने, ऊंचाइयों पर काम न करने और सड़क पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। लगुनों के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, जो तटों तक पहुँच सकती है, खासकर दक्षिण और पश्चिम में। आम जनता से समुद्र में न जाने और तटों पर न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:46 पर सूरज निकलेगा।

0: देश विदेश की अन्य खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर फैसल का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। जेरानियम लेन ला क्वाजे शेबेल में, जेरानियम लेन ला क्वाजे शेबेल में 82 साल की ये टिटू यजोल्ड की श्रीमती प्रमरावती जगू, श्रीमती प्रमरावती जगू पैदाशी नाम जिंगूर और जो पुलू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे जाम जगू के मकान जेरानियम लेन ला क्वाजे शेबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जे फ्वाबों बुकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। बेचू लेन प्लैंडे रोश में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सरस्वती बेचू पैदाशी नाम मेपत और जो सती के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शाम 4 बजे उनके रिश्तेदार यशविन बेचू के मकान बेचू लेन प्लैंडे रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुमोरो एट 4 PM। लॉट नंबर 18 मोसलमा औजी फ्लैक में, लॉट नंबर 18 मोसलमा औजी फ्लैक में 42 साल के 42 ईयर्स ओल्ड के श्री विकी गोबिन जो सिवालैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनकी माँ गोइंदा माँ गोबिन के मकान लॉट नंबर 18 मोसलमा औजी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। टुकू रोड हाईलैंड्स में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी अकलीमा पिराली पैदाशी नाम रामजन इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा रात 9 बजे उनके मकान टुकू रोड हाईलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए हाईलैंड्स की अशरफुल मस्जिद और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। गॉडेनिया रोड विदबाग में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र देव बैरू जो चोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान गॉडेनिया रोड विलबाग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। कांगारो सेंटर डे फ्लैक में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेसराम रामसरन जो मिनिस्ट बलराम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके मकान कांगारो सेंटर डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:00 PM। रा रोड लावंचुआ में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के श्री वेदव्रत जीतन जो वेद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके बेटे वृतराज जीतन के मकान रा रोड लावंचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। कांगुलबा रोड शमेघोनिये में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री बाल्मिक बुधन जो ईश्वर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके मकान कांगुलबा रोड शमेघोनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:01 PM। थ्वाबुचिक त्रियोले में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद बुधराम जो फुफन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10:30 बजे उनकी पत्नी चंद्रावती बुधराम के मकान थ्वाबुचिक त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौपा महात्मा गांधी रोड त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:10 AM। नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिए मोसलमा मोरियाल 3 कोरोमंडल में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी नारायण राम नारायण

0: श्री लक्ष्मी नारायण राम नारायण जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी अमृता राम नारायण के मकान नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसलमा मोरियाल 3 कोहमा डेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंकबाव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musti Raftar Vibes Filmy Rides
2: RM2

0: 38 PM, it's a warm welcome on Radio Masti. This is our Raftar Vibes, जहाँ पर गानों में रफ्तार तो चलते रहते हैं लेकिन सड़कों पर इट्स अ बिग नो. सड़कों पर जल्दबाजी नहीं, सिर्फ सुरक्षित ड्राइविंग होनी चाहिए. लेट्स होप कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है और आराम से इत्मीनान से आप घर पहुँच गए होंगे. और यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो रफ्तार वाइब्स, जहाँ पर मोर पर हर एक मोड पर हम कहेंगे म्यूजिक पर ये एनर्जी हम लेकर आते हैं. हर सफ़र जहाँ पर होता है उसमें हम भर देते हैं लॉट्स ऑफ वंडरफुल वाइब्स. तो यहाँ पर गानों के साथ स्टे वेल कनेक्टेड फॉर रफ्तार वाइब्स. और वैसे घर पहुँचते ही मुझे पता है कि कितना सारा काम होता है, स्पेशली जो हमारे फ्रेंड्स, हमारे लेडीज जो दिन भर काम तो कर लेते हैं लेकिन एक्स्ट्रा काम तो वो अब करने वाली है एट होम. स्वीट होम इज लाइक जहाँ पर 24/7 काम होता है ना, इट्स लाइक नॉन स्टॉप. लेकिन अभी इट्स कुकिंग टाइम और टू ऐड सम मोर टेस्ट गाने तो है ही और साथ में हम आपको विश करेंगे लॉट्स ऑफ कुराश. आपने क्या प्लान किया है, क्या बनाएंगे आज मेन्यू में, क्या है? मे बी सम इंडियन फूड्स, या फिर आपने सोचा है आज भी एकदम लाइट हेल्दी खाना बनाएंगे. और कुछ तो हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, इट्स लाइक जिम टाइम, मे बी सम ज़ुम्बा, जो भी है टू कीप फिट, जो भी है फॉर यू टू लुक यंगर. और भी फिट रहने के लिए आप जा रहे हो, सो विश यू मोर एंड मोर कुराज. सो यहाँ पर जैसे भी हो हालात आपको तो पता है वी ब्रिंग यू ओनली द बेस्ट. और ये तो सब होता है, ये सब मुमकिन है थैंक्स टू आवर रेडियो मस्ती. कुछ ही पल में आई ट्राई टू ब्रिंग सम मैसेजेस राइट अवे, जहाँ पर आपने हमको याद किया है, यहाँ पर हंसनी है. एंड या आई विल बी विद यू अप टिल 7 PM, 7 बजे तक.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

Welcome again in आज का रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती. एंड चलिए अभी के लिए वी हैव गॉट डेडिकेशंस. सब परिवार इस समय डिनर ले रहे हैं इन रेस्टोरेंट एट ला फ्लोरा. वेलकम टू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डिनर, बन अपेटी आप सभी को. एंड इट्स सो सो यमी और वहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं. थैंक यू अनुष्का फॉर शेयरिंग योर लव ऑल द वे फ्रॉम ब्रिटानिया. सो हम आपका वेलकम करते हैं रेडियो मस्ती और गाना एकदम मस्त चल जाएगा आपके लिए. हाय, मैं हूँ आकाश फ्रॉम रिवे दे गाले. सभी गर्भू फैमिलीज के लिए एक स्पेशल ट्रैक ऑफकोर्स चल जाएगा, स्पेशली फॉर योर मिसेज काजल के लिए एकदम लवी डवी वाला गाना. ओके जी, यहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग. मुझे पता है कि ऐसे मौसम में जब हल्की सी बारिश हो रही है, कई जगहों पर काफ़ी बारिश हो रही है, ठंड है, और ऐसे में प्यार को मिस करते हुए आप एक गाना तो सुनना चाहेंगे ना. सो वी आर हियर, बेस्ट एफएम रेडियो मस्ती, ऑलवेज हियर टू गेट यू सम मोर और रोमांटिक सॉन्ग्स. आपको तो पता है हर सिचुएशन में वी हैव गॉट अ सॉन्ग्स, चाहे जैसे भी हो हालात हम लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट. नेक्स्ट वन, नमस्ते हंसनी जी. नमस्ते, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. एंजॉय द नाइस कलेक्शन. बहुत ही ठंड है आपके यहाँ, और थामा मूवी का एक गाना सुनना चाहेंगे. आई विल ट्राई इट फॉर यू अगर टाइम मिले तो. अदरवाइज जब दिव्या आएगी फॉर आजकल इवनिंग लाउंज, तब जरूर मैं ये रिक्वेस्ट उन तक हम पहुँचा देंगे. राइट, स्टे वेल ट्यून्ड. और चलते हैं कनाडा. एज ऑलवेज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है हमारी प्यारी से एक जोड़ी बाबू सोना और उनकी परी, जो यहाँ पर दे रही है साथ हमारा इन आज रफ्तार वाइब्स. जो शो है एकदम धमाकेदार है, किसी ने कहा है, तो ऐसे में रोमांटिक गाना तो चल जाएगा ना. जस्ट टू टेल यू दैट आप तो अकेले थे नहीं, आप तो हमेशा साथ रहेंगे ना. हाथ थामे ऐसे कदम से कदम मिलाते हुए आप इस सफ़र को जरूर तय करने वाले हैं साथ साथ. राइट, सो लिविंग यू इन सम गुड नोट, सम ग्रेट रोमांटिक वाइब्स, ताकि एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो बस कायम रहे.

तू है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी पूरी हो गई है, तू है तो सब कुछ है। तो चले इसके साथ वे गुड बाय, थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार हमको पहुंचाने के लिए। इन रफ्तार वाइब्स अभी आ रही है हमारी प्यारी सिद्धिव्या लेकर आज का नेक्स्ट शो जो होने वाला है आज का इवनिंग लाउंज, राइट। सो जाते जाते छोड़े जा रही है ये रोमांटिक सॉन्ग, डू एंजॉय, मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग।

0: किसी के दरस की दीवानी हैं आप या दीवाने हैं आप, तो बिल्कुल मन की आंखों से उनको देखिए, मन की आंखों से उनको महसूस कीजिए। प्यार में तो बहुत कुछ महसूस किया जाता है, लेकिन प्यार में बहुत कम लोग इसका एहसास करते हैं और एहसास के बाद बहुत ही कम लोग इसका इजहार करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर यू टू रियलाइज़ कि अगर प्यार में आपको किसी को स्पेशल फील कराना है तो इन एहसासों को आप जुबान तक लेकर आइए और इसको बयां भी कीजिए। प्यार कभी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि प्यार में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, लेकिन जो जब आप एक्सप्रेस करते हैं ना, उससे आपका प्यार और भी दुगना हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त आप लोग हमारे गीतों को सुनने के बाद प्यार के एहसास को थोड़ा सा बढ़ावा दें और अपनों को याद करें। 1599-1294 शाम के 7:10 हो चुके हैं। दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर रात्रि के 9 तक कुछ प्यार भरी बातें करेंगे और ऑफ कोर्स वेलकमिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294 या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जी हाँ, लाइन खुली हुई है, आप हमें ज़रूर याद कर सकते हैं ऑन 4280355 पर। आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti.

मेरी जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है।

सच बात है दोस्तों, प्यार में कभी कभी दो पल का साथ ही होता है और कभी कभी उम्र भर का साथ होता है। जो लोग दो पल का साथ देने आते हैं वो जिंदगी भर की सेख बन जाती हैं, और जो लोग उम्र भर साथ निभाने आते हैं वो जिंदगी के साथ ही बन जाते हैं। और चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार आपसे कभी ना रूठे और कभी ना छूटे, और ये प्यार का रंग कभी आपके दिल से ना उतरे। 7:17 हो चुके हैं, दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर रात्रि के 9 तक जहां से भी साथ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग योर नंबर वन रेडियो स्टेशन विच इज रेडियो मस्ती। तो चलिए यहाँ पर लाइन पर कोई है और बस

0: हेलो कहते ही उनकी शिकायत यही थी कि आप तो हमारे फ़ोन नहीं लेते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी दूसरों को भी मौका देना पड़ता है। और यह हमारी प्यारी सी उर्वशी जी। हेलो उर्वशी जी, नमस्कार।
1: प्रणाम, कैसे हो?
0: प्रणाम जी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं?
1: ठीक हूँ। एक बात बोलती हूँ।
0: बताइए।
1: आपकी आवाज श्रिया घोषाल।
0: That's really sweet. लेकिन आजकल ना श्रेया घोषाल की आवाज नहीं बल्कि उषा उत्थप वाली आवाज हो गई है। आवाज में इतनी खराश आ गई है। नहीं, या ना कभी कभी गले में इशू हो जाता है। थैंक यू सो मच उर्वशी जी। और ये देखिए, आप हमारी तारीफ कर रही है लेकिन आप जब भी फोन करते हैं ना तो मेरा दिल पिघल जाता है। जब भी आप हेलो कहती हैं तो बस मेरा दिल गदगद हो जाता है। और आपकी भी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है। थैंक यू सो मच, हमेशा आप वक्त निकाल कर हमें याद करते हैं। और वैसे जितने भी सारे लोग यहाँ पर हमें फ़ोन करते हैं उर्वशी जी, आप हमारे दिल के बहुत ही करीब हैं, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना कि इस भागा दौरी में बहुत ही कम लोग हैं जिनको टाइम मिलता है, और टाइम निकाल कर वो नंबर डायल करना और फिर ट्रिंग ट्रिंग का वेट करना और हेलो सुनना, वो थोड़ा मतलब इट लुक्स लाइक अ बर्डन टू मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन जो लोग प्यार से करते हैं ना वो हमारे दिल के करीब हैं। सो थैंक यू सो मच उर्वशी जी, आपने हमें याद किया। और बताइए, आपका खाना हो गया?
1: ठीक नहीं,
0: अभी तक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप गाना सुनने के बाद खाएंगी। ये तो आपका रूटीन है। तो चलिए उर्वशी जी, बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगी?
1: फिल्म का नाम पता नहीं, गीत है ये आंखें देख।
0: ये आंखें देख कर हम सारी, आई थिंक ये घर मूवी से लिया गया है ये आंखें। यस, इसको मैं ढूंढूंगी और ये खास तौर से आपके लिए हम चलाएंगे। और ये गाना किनके नाम?
1: मेरे लिए। आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच उर्वशी जी, एंड आपके फोन कॉल के लिए थैंक यू सो मच। ये गाना मैं जरूर ढूंढ के आपके लिए चलाऊंगी थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए, ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी। अगर उर्वशी जी की तरह अभी हमें याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्यार की बातें कुछ हम करेंगे, और साथ में प्यार से अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं और किसी के लिए डेडिकेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हेजिटेट मत करिए। डू कॉल अस ऑन 4282835 पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लाइन खुली हुई है रात्रि के 9 बजे तक। जब भी कभी भी आप फ़ोन करना चाहते हैं तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर आपके मैसेजेस को भी हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 5499-1294।
2: Evening Lounge.
3: RM2.
2: Radio Musti.

भाई पहले ज़माने के गाने भी कितने खूबसूरत हुआ करते थे और कितने मीनिंगफुल हुआ करते थे। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं और सच में प्यार में ऐसा ही होता था। और आई वंडर कि अब तक होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो ये आपको हमारे साथ शेयर करना है ऑन 5499 1294 प्यार भरी।

0: बातें और प्यार की जज्बात आपस में शेयर करते रहेंगे। 7:33 ऑलरेडी एंड चलिए लाइन पर कोई है हमारी प्यारी सी प्रीति जी। हेलो नमस्कार आपको।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, आप कैसी हैं?
1: ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आपका डिनर हो गया?
1: जी, बिरयानी पकाया है मेरी मम्मी ने।
0: माय गॉड, बिरयानी पकाया है आपने। व्हाट अबाउट थोड़ा सा पार्सल करके एमबीसी भेजे लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरा डिनर हो गया, थैंक यू सो मच। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमें विजिट करने आएंगे ना, तो आप यही बना कर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ना सब लोग फूडी हैं, सब लोगों को खाना बहुत ही पसंद है। तो चलिए आप बिरयानी को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा हमारे खूबसूरत गीतों के साथ, परिवार के साथ। तो प्रीति बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है आज?
1: किस्मत दे दिया दिल दिया।
0: किस्मत?
1: हाँ,
0: ओके। ये कीमत का गाना है, दिल दिया ये वाला ना
1: जी।
0: तो ये कीमत का गाना है, तो चलिए ये गाना हम जरूर चलाएंगे। और ये गाना किनके नाम?
1: मम्मी के लिए और बेटे के लिए, आपके लिए, सुनने वालों के लिए।
0: थैंक यू सो मच प्रीति। एंड आपके यहाँ मौसम कैसा है? बारिश है, ठंड है? बहुत ही ठंड है। तो चलिए आप गर्मा गर्म बिरयानी को एंजॉय कीजिएगा, और बिरयानी के बाद कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है? थैंक यू सो मच प्रीति। एंड एज यूजुअल आपके लिए तो गाना हम जरूर गाएंगे, लेकिन उस पार से आपको मुझे मैसी बोलना है इस बार, प्रीति जे तैम। चलिए थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय।
0: ये थी हमारी प्यारी सी प्रीति, हमेशा इनके लिए हम ये गाना गाते हैं। और चलिए अगर आप भी कोई गाना सुनना पसंद करेंगे, या फिर आपके जहन में प्यार के बारे में कुछ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे, तो ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499-1294, या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4028035-4285.
2: Evening Lounge.
3: Evening Lounge.
4: RM2.
2: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: प्यार में सब लोग चांद तारों की कसमें खाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना है। प्यार में अगर आप किसी के लिए वक्त निकालो ना, तो उनके लिए बस यही काफ़ी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्यार करते हैं तो प्यार कम्स विद अ लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए वक्त निकालें। कहते हैं ना कि इस भागदौड़ी में जब आप किसी के लिए वक्त निकालते हैं, उनके लिए बस यही सबसे कीमती चीज़ होती है। Well, we have this beautiful सा गाना taken up from the movie तेरा जादू चल गया। अभी के लिए I just hope कि प्यार का जादू चल रहा है और आप प्यार की दुनिया में खोए हुए हैं। बस 7:55 होने को है और इस गाने के बाद हम कदम रखने वाले हैं in the second hour of your evening lounge।

0: अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप बार बार सोच रहे हैं कि आपको प्यार हुआ है, तो आपको हम बता देते हैं कि अक्सर प्यार में ना दिल और दिमाग के बीच में एक जंग सा छिड़ जाता है, लेकिन एंड में हमेशा जीत दिल का ही होता है. सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू कीप एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर द वन यू लव. कहते हैं ना कि टुमारो इज़ नेवर प्रॉमिस्ड. सो जितना हो सके अपने आज को इतना स्पेशल बनाएं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनको एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराएं. वेल, रात्रि के 8:09 हो चुके हैं. आपके मैसेजेस ज़रूर हम तक पहुँच रहे हैं. मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए कुछ ही देर में आपके मैसेजेस को हम पढ़ेंगे ऑन 5499-1294. या फिर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अभी तक लाइन खुली हुई है ऑन 4280-3500. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. अगर आप लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, शायद आपका डिनर हो गया है, घर पर आराम फरमा रही है, सो डेफिनेटली इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप एंजॉइंग द लवली गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. और अगर आप काम पर हैं आपको विश करेंगे बों को हर्ष.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

Such a beautiful, wonderful gana and 8:22 minute ho chuke hain. Told those driving right now, shayad abhi aapka kaam khatam ho raha hai aur aap ghar ja rahi hai and back to home, aap hamari geeton ko enjoy kar rahi hai. Thank you so much hamara saath dene ke liye. Hi Divya ji, aap kaise hain? Main bilkul theek thaak hoon. Thank you so much. Hamesha ki tarah next gana aapki friend Indira ke liye aur Sinan ke liye jo chutti manane apni bachchon ke paas kal ja rahi hai. And aapne hame wish kiya hai bon courage. Thank you so much. Hamari pyari si sweet Anita ji all the way from Flickon Flack connected hai hamare saath. Hello Divya ji. Actually aapne Divya di kaha hai. Thank you so much. Your message is for Habib Ravi. Thank you dear for always making me feel special and loved. You mean the world to me. Thank you. And aapne kaha hai agar possible hua to saatwa aasma ka gana tum kya mile. And chaliye ye gana hum चलाने की कोशिश करेंगे. वी डोंट प्रॉमिस बट विल ट्राई. अगर आज के लिए पॉसिबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर हम इसको चलाने की पूरी कोशिश करेंगे. नमस्ते दिव्या जी. प्लीज़ अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए. धन्यवाद आपको भी और शुभरात्रि. हाई दिव्या, गुड इवनिंग. आई एम नीमा जीबन ऑफ मदालबेया, लिसनिंग टू योर शो एंड प्रिपेयरिंग डिनर एंड ब्यूटिफुल सा गाना.

ना आपके हबी के नाम आपके प्यार के लिए हिज आर्टवर्क उनको बहुत ही प्यार से याद किया जा रहा है एंड ऑल्सो आपके बच्चों के नाम यादव नीलेश वीरेश एंड हमारे लिए थैंक यू सो मच हमारी पूरी टीम के लिए आपने डेडिकेट किया हुआ है अगला गाना नीमा जी थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट मैसेज यू आर रियली स्वीट ऐसे मैसेजेस आते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए आप बस हमें ऐसे ही प्यार से याद करते रहिएगा और हम भी आपको प्यार से

0: के जरिए आप तक प्यार भरे पैगाम पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर हमारी प्यारी सी अनुषा जी ऑल द वे फ्रॉम फॉरेस्ट साइड, नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर योर हस्बैंड विमल। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है अनुषा और विमल को बहुत बहुत सारा प्यार। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू बोथ, बेस्ट विशेज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम स्वीट बेटी परी, हसराज फैमिली, आपकी फ्रेंड्स हैं पूनम, चाचा अनिल, दादी मीला, मालदिनी, आपके बॉस हैं ऋषि। इस वक्त आप लोग शायद सुपरमार्केट में काम कर रही हैं, मे बी आपका काम भी ख़त्म हो चुका होगा। सो सॉरी कि आपका मैसेज हमने थोड़ी देर से देखा। तो चलिए अनुषा, ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जो आपको जानते हैं। हेलो दिव्या उर्मिला हिया, एंजॉइंग योर शो, प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं एंड आपने कहा है आई अप्रिशिएट द सॉन्ग फ्रॉम फिल्म खट्टा मीठा, राकेश रोशन एंड बिंदिया गोस्वामी जी का। एंड चलिए यहाँ पर आपका मैसेज इनकम्प्लीट आया है उर्मिला जी, अगर पॉसिबल हुआ तो व्हाट्सएप पर आपका पूरा मैसेज कम्प्लीट आएगा, तो आपको हमें याद करना है एक बार फिर से 5499-1294 व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें अपने मैसेजेस भेजिए, वहाँ पर पूरा आपका मैसेज आएगा। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, और ये अगला गाना टू ऑल दोस कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती राइट नाउ।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: अजनबी शहर है, अजनबी शाम है, लेकिन ये शाम तो जाना पहचाना सा है। शायद आप लोगों को ये एहसास से मुलाकात करने के बाद यही लग रहा है कि प्यार का एहसास भी अनजाना बिल्कुल नहीं है। हाय, सेंडिंग लव टू माय हस्बैंड प्रकाश एंड दो बेटे रोनीत रौनक ऑफ बेलेरिवियासेश फ्रॉम मीनू। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। उर्मिला जी, व्हाट्सएप पर आपका मैसेज आया है, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए एंड आपने हमें थैंक यू कहा है, यू वेलकम हमेशा हमारा साथ देने के लिए। एंड यहाँ पर टीना जी कहती हैं, एंजॉइंग योर शो एंड इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। यस यस, सेंट्रल प्लेटो पे हद से ज़्यादा ठंड हो रही होगी, तो चलिए आप शो को एंजॉय कर रहे हैं कंबल के नीचे, क्या बात है। तो चलिए यहाँ पर गाने एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट गाना गोज़ आउट टू योर लव्ड वंस इंक्लूडिंग मेरी फैमिली के लिए, दैट्स रियली स्वीट टीना जी। एंड नेक्स्ट गाना गोज़ आउट स्पेशली फॉर यू एंड एज यूजुअल फूल के गुलदस्ते के लिए, थैंक यू सो मच। इससे तो हमारी प्यारी सी कमला जी याद आ रही हैं क्योंकि आपने फूलों का गमला भी भेजा है। तो चलिए ये अगला गाना गोज़ आउट स्पेशली फॉर ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस। और साथ में यहाँ पर अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे यहाँ पर सभी बिकारी एंड जूतन फैमिली के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम मोसलमा से तौंद्रे एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपको थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू अमीशा बिकारी ऑफ हमलेट रोड मोसल मौसा तौंद्रे फ्रॉम मोम फिया पापा बॉबी, भाई है अनीश बिकारी एंड नानी बसंती, मामू रवि सनी एंड बिकारी जूतन फैमिली ऑफ मोसल मौसा तौंद्रे। तो चलिए जितने भी सारे लोग आज इस वक्त अपना सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे, आपको बहुत सारा प्यार। एंड किसी ने हमें मैसेज भेजा है, नमस्ते, वी ऑल फैमिली ईटिंग इन रेस्टोरेंट प्रभु देवा अटला फ्लोरा, इट्स सो यमी एंड जनरस पीपल फ्रॉम अनुष्का ऑफ ब्रिटानिया। थैंक यू सो मच अनुष्का हमारा साथ देने के लिए। ऐसे ही आप बस हर एक गीत का पूरा पूरा फायदा उठाते रहिएगा। मिला जी, आप ऐसे जी मिल फॉर साइड से नेक्स्ट ब्यूटीफुल गाना जाएगा फॉर लवली बहन गीता बिचू ऑफ मोताइलोंग। आज उनका बर्थडे है और बेस्ट विशेज आपकी पूरी फैमिली के लिए। अनला के लिए आपका मैसेज यहाँ पर इनकम्प्लीट आया है, बट फॉर श्योर आई गेस आप ज़रूर अगला गाना उनके नाम डेडिकेट कर रही हैं और पूरे उन लोगों के लिए जो इस वक्त हमें सुन रही हैं। तो चलिए यहाँ पर द नेक्स्ट ट्रैक गोज़ आउट टू ईच एंड एवरीवन कनेक्टेड विद अस।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: ट्वेंटी ऑलरेडी एंड चलिए अरमान एंड माल मलिक की आवाज़ों में खूबसूरत सा ये गाना इट्स मैशअप और बहुत ही खूबसूरत वाला है. चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर द वी आर टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय. शुभ रात्रि, शब आखिर.

नमस्कार और स्वागत आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स आरएम 2 पर। और काम जहां पर चल रहा है भाई, उसी के साथ साथ थोड़ा सा आराम लेना जरूरी है। अब इस रात को एंटरटेनमेंट का लेवल भी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना, पूरे दिन का काम और अभी वक्त मिला कि कर लें थोड़ा सा आराम, तो हम है ना साथ में आरएम 2 पर। प्लेलिस्ट बिल्कुल सेट, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड के इस प्रोग्राम में लेट नाइट ग्रूव्स। तो अगले 3 घंटे के लिए म्यूजिक, मस्ती और साथ में कुछ अनलिमिटेड फन चलते रहेंगे। बस फ्रीक्वेंसी को सेट करके मूड को सेट करने के लिए तैयार हो जाइए।

0: मेरी मस्ती सुनते रहो।
1: दोस्तों कभी होता है कि किसी सिचुएशन में आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया, लेकिन अगर वक्त मिले या फिर उसको फिर से इनैक्ट करने का मौका मिले तो आप कुछ और कहेंगे नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप इससे पहले रिएक्ट करें, थोड़ा सोच लें, थोड़ा समझ लें, और ये भी सोचें कि क्या यही सही तरीका है किसी को कुछ कहने का, या फिर अगर कोई ये चीज़ आपको कहता तो आपको कैसा लगता। बस आप वहीं पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आपका चेहरा भी यही सोचकर खिल जाएगा। म्यूजिक कंटिन्यूज RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों, बॉलीवुड ने हमें एक बात तो सिखा दी, चाहे सिचुएशन कितनी भी सीरियस हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते ही कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो बस अगर आपकी लाइफ में एक परफेक्ट बॉलीवुड डायलॉग होता तो कौन सा होता? फिल्मी बनो, ड्रामेटिक बनो, लेकिन आंसर दिल में रखो, क्योंकि ऐसे ही मिजाज ठीक होता है और साथ में थोड़ा सा मुस्कुराने का समय मिलता है।

0: दोस्ती।
1: अच्छा, काफी लोग होते हैं जो कि वक्त निकाल कर जो भी प्लान है उसको अंजाम जरूर देते हैं। अगर दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग कर ली और ऑफिस में थोड़ा लेट भी हो गए, लेकिन फिर भी होता है कि तुम चलो मैं ज्वाइन जरूर करूंगा। चलिए ये भी अच्छी बात है, जितना वक्त मिले ना उसमें चीज़ों को स्पेशल बनाना ज़रूरी है। चाहे बाहर जाकर कुछ ब्रिंग इन शेयर, या फिर ऐसे ही मिल बैठकर सनसेट को देखना, या फिर ऐसी थोड़ी सी गपशप लगाना, ये चीज़ें ना अपनी बैटरी को रिचार्ज कर देती है।
2: RM2 Radio Musti

0: अच्छा, हमें से कितने सारे लोग होंगे जो कि गानों के साथ गाते हैं, गुनगुनाते हैं या फिर बाथरूम सिंगर्स हैं। बस ऑडियंस अलग अलग होते हैं ना इसी सिचुएशन में। कोई बाहर से कहता है अरे नहा लो, थोड़ा साबुन लगा लो, यहाँ तो आप सुर से सुर लगा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन सच बताइए, कोई गाने होते हैं ना जो आप बस जैसे ही फ्री टाइम मिलता है उनको गुनगुनाने लगते हैं, तो बस ये और कुछ नहीं, म्यूजिक थेरेपी है। इसको हमेशा ना ऑन मोड पर छोड़ के रखिए।
1: RM2 Radio Mastery.

अच्छा बॉलीवुड में हम देखते हैं कि किस तरह हीरो हीरोइन के बीच में प्यार मोहब्बत होती है, कभी कभी सिचुएशनल होती है और कभी एक नजर में ही प्यार हो जाता है। कभी आपको ऐसा हुआ है लेकिन बोलने का साहस या फिर उस इंसान को देखा उसके बाद कभी दिखी नहीं तो क्या करें, आजकल तो सोशल मीडिया के चलते नहीं। हाँ लेकिन ये सच है कि हम अपने प्यार को अंजाम जरूर देना चाहते हैं लेकिन ये जो फीलिंग है ना उसको एंजॉय करना चाहिए। क्या दिल ने प्यार करना सीख लिया।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अच्छा, कभी आपने कोशिश की है कि घर में जिससे भी बात कर रहे हैं किसी बॉलीवुड के गाने का सहारा लेकर, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, एक सीधा मैसेज कि अब शादी करने का प्लान ऑन हो चुका है। हाँ, वैसे जिंदगी में सेटल होना हर कोई चाहता है, लेकिन थोड़ा सा फिल्मी रहना भी जरूरी है, नहीं? इट एड्स अ स्पाइस टू लाइफ। और फिर देखिए साहब, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप एक लेवल से दूसरे, नहीं नहीं, प्लान बना लिया क्या या मम्मी को बता दिया?

0: नास्ती।
1: भाई आज रात का गोल्डन रूल की स्माइल फ्री है, म्यूजिक अनलिमिटेड है और डांस करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर चाहे स्लो डांस ही क्यों ना हो, तो अगर घर पर हैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए और अगर ड्राइव पर निकले तो सेफली एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ है तो एक सेल्फी तो बनती है बस।
2: RM2 Radio Musti.

0: अच्छा बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि जो हीरो हीरोइन है वो मतलब फिट, बिल्कुल फिट बॉडी की कमाल, और साथ साथ में सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, फाइटर हैं, मतलब सब कुछ कमाल। वाह, ऐसा असली में होता नहीं। ऐसा नहीं कि आपने बस गिटार लिया, बजाना शुरू किया और फिर ड्रम्स भी बजने लगे, कहीं से आवाज़ भी मिक्स हो गई, कोरस भी आ गया, लड़कियाँ भी नाचने लगी। लेकिन इमेजिनेशन के लिए ठीक है ना? हाँ, वैसे अगर आप कुछ परस्यू करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त में बात के लिए कुछ मत छोड़ें। अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं या फिर गाना सीखना चाहते हैं, तो कहने का मतलब यही कि क्यों ना शुरुआत की जाए, बात के लिए क्यों टाला जाए।
1: RM2 Radio Masti.

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: अच्छा, फैमिली में एक इंसान जरूर होता है जो हर किसी की मदद के लिए आगे आता है। उसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, नहीं चाहे अपनी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन दूसरे की जिंदगी में मुश्किल आते ही वो इंसान अपना हाथ जरूर आगे बढ़ा देता है। अगर हम सब इसी नजरिए से जिंदगी को देखें और सीखें समझें कि किसी ना किसी को किसी ना किसी की जरूरत तो होती है, एक सहारे की, कुछ शब्दों की। और फिर देखिए साहब, जिंदगी में आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, लेकिन कदम भी बढ़ता है अपनी मंजिल की तरफ।

0: RM2 Radio Musti.
1: जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो आपको एक मोटिवेशन देता है, या फिर आपको लगता है कि इससे एक्साइटमेंट पैदा होती है, फिर चाहे वो सुबह उठकर आपका रूटीन वॉक करने का, या फिर वापस घर पर आकर ब्रेकफास्ट करने का, या फिर अपने चुने हुए कपड़े वो कॉम्बिनेशन पहनकर ऑफिस जाने का, कलीग्स को हेलो हाय कहने का, जो भी हो, अरे साहब उसके अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट जरूर रखें, क्योंकि इसके बिना जिंदगी बड़ी सी ब्लैक एंड वाइट सी हो जाती है, लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। इसलिए रंग भरना तो आपका काम है, म्यूजिक के जरिए हमें देना इस कार्यक्रम को अंजाम है।

0: चलिए साहब, ऐसी बातों बातों में कार्यक्रम अपने एंड तक जरूर पहुंच गया। कुछ खट्टी मीठी बातें हुई, बड़ा मजा आया और साथ साथ में गानों के साथ जुड़कर वक्त बिताने में भी एक अलग ही आनंद था। वैसे जिंदगी के अंदर ये जो आनंद है ना, यूं ही लेते जाइए और टेंशन को बाहर का रास्ता दिखाते जाइए। हेल्थ इज वेल्थ। बस ये सोचिए कि एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर ये टेंशन एंग्जाइटी को पालकर फायदा किसी का नहीं होगा, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा और आप सोल्यूशन ढूंढते रह जाएंगे। इसे जरूरी है जिंदगी जियो जी भर के और अपना पार्टनर बना लो, म्यूजिकल पार्टनर RM2 को। जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिए, नमस्कार।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: संजना,
3: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
4: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है, हाँ यही तो है सब निशानियां।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
1: RM2 Radio Musti.

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: है मेरा।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.